0: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बनें। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
1: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
2: समय 9:30 और 48 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। यह है कार्यक्रम का अगला गीत, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी। शब्द है मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत आर डी बर्मन का है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ये स्वाति, कमलेश अवस्थी, अनवर, सुमन कल्याणपुर और साथियों की फिल्म का नाम था नसीब। गीत था आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, आवाज़ किशोर कुमार की, फिल्म का नाम ब्लैकमेल।

0: आपकी परछाइयाँ, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत। आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीत था राजा मेहंदी अली खां का और संगीत मदन मोहन का था।
1: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
2: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
1: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
2: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
1: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
1: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
0: ये संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, फिल्म का नाम पत्थर की सनम।

0: श्रोताओं, इसी के साथ सदाबहार फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप जयवीर सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत पर जांच और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा, 8 जून से घर घर जाकर फॉर्म वितरण और एकत्रीकरण का काम करेंगे BLO। प्रदेश भर में 79 लाख से अधिक मतदाताओं को दिए जाएंगे फॉर्म। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फ्लोरेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन लॉन्च किया। मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय और मैदानी जिलों के कई हिस्सों में आज बारिश की आशंका जताई है। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में तेज अंधड़ और ओले गिरने की आशंका है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने नई टिहरी स्थित सभागार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। राज्य सरकार ने स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देहरादून की 90 साल पुरानी पेयजल लाइनों को बदलने के लिए 42 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। उत्तराखंड में पहली बार झरनों गाढ़ गदेरों का सर्वेक्षण कर डेटाबेस तैयार किया जाएगा। लघु सिंचाई विभाग 1 माह के लक्ष्य के साथ काम करेगा और उत्तराखंड विद्युत नियामक बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सोलर प्रोजेक्ट BESS के लिए टैरिफ आदेश जारी करते हुए कहा, सोलर प्रोजेक्ट से बनी बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 10:02 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

I doubt that the imagination can be suppressed if you truly eradicated it in a child. He would grow up to be an eggplant. मुझे संदेह है कि कल्पना को दबाया जा सकता है. अगर आप सचमुच इसे एक बच्चे के भीतर से निकाल दे तो वो बड़ा होकर एक बैंगन बन जाता है. इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, सेज अल्बर्ट आइंस्टाइन. चेतन विल स्पीक अबाउट द बेनिफिट्स एंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन इन टुडेज लम्हे प्रोग्राम. द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति पहचाने. कुछ लोग ऐसे हैं जिसे ये पता नहीं होगा कि व्हाट इज विजुअलाइजेशन, कल्पना क्या है. सबसे पहले मैं उसे बता दूं कि विजुअलाइजेशन होता क्या है. जब हम कुछ सोचते हैं तब हम जो भी सोचते हैं उसका पूरा चित्र हमारे दिमाग में बन जाता है. जैसे कि हमने अभी सोचा कि कल हमने थिएटर में बैठकर मूवी देखी थी, तुरंत हमारे दिमाग में थिएटर की सारी छवियां आ जाती है. हमें वह सभी कुछ दिखने लगते हैं जो हमने किया था. वह सब एक के बाद एक हमारे दिमाग में पिक्चर के रूप में प्रकाशित होता है. उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन. अगर किसी को मेरी तरह समझ में नहीं आया है तो डोंट वरी, आगे सुनते सुनते सब समझ में आ जाएगा. दोस्तों बने रहिए चेतन के साथ, लेकिन उसके लिए पूरा ये प्रोग्राम आपको सुनना पड़ेगा.

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। हमारा दिमाग सिर्फ चित्र को समझता है, शब्दों को नहीं। हम जो कुछ भी सुनते हैं उन सारे शब्दों की तस्वीर हमारे दिमाग में बनती है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि एक इंसान पेड़ के नीचे बैठकर आम खा रहा था। अब आपका दिमाग में तस्वीर बन गई होगी, क्योंकि हमारे दिमाग के पास इन सारे शब्दों की तस्वीर है। लोग पढ़ाई में अच्छा इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि पढ़ाई के दौरान जो शब्द हम सुनते हैं उसमें से 50% शब्द की तस्वीर हमारे दिमाग के पास नहीं होता, और हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। सोच दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। अब आपके सामने एक सवाल आ गया कि किसे पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं और किसे नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं। एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, आपका कोई दोस्त यानी मैं आपको कहता हूँ कि आने वाले सब एग्जाम्स में मेरे रैंक बहुत खराब होंगे, और आप कहते हैं कि मैं तो जहाँ जितना भी पढ़ाई करूँ मुझे अच्छे रैंक आएंगे। इसमें से आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है और मेरी नेगेटिव। फाइनल रिजल्ट आएगा, आप सच में अच्छे रैंक के साथ पास हो गए होंगे और मैं फेल। आप ध्यान से सुनना और समझ में न आए तो अपने आप को दोष नहीं देना, मुझे ही कुछ कहने में प्रॉब्लम हुआ होगा। विजुअलाइजेशन के साथ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का क्या संबंध है? हमारी ये सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम कोई काम लिए नेगेटिव सोच रखते हैं तब हमारे दिमाग में जो पिक्चर बनती है वो भी नेगेटिव ही बनती है, जिस वजह से हम कभी उस काम को सफल नहीं बना सकते हैं। आप परीक्षा में अच्छे रैंक के साथ पास हुए इसलिए नहीं कि उसके पास नॉलेज थी, इसीलिए कि उसके पास पॉजिटिव थिंकिंग थी जो उसके दिमाग में ऐसे पिक्चर बना रही थी जो उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। रास्ते पर चलते गाड़ियां, हवा में उड़ते हुए प्लेन। अभी आप रेडियो के माध्यम से चेतन का ये लम्हे प्रोग्राम सुन रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? ये सब टेक्नोलॉजी है दोस्तों। सब कुछ तभी बना तब किसी ने ये सब अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन किया हो, लेकिन अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ प्रयास भी किया तब जाकर आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। हमारा दिमाग वह सब कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आज के इस जमाने में हमारे पास सोफिया जैसी एक रोबोट है। किस वजह से दोस्तों? इसीलिए कि जिस किसी ने उसे बनाया था महान था, नहीं वह भी एक आम इंसान। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसके पास सोच है। तो तुरंत अपनी नेगेटिव थिंकिंग को बदलिए दोस्तों। जिस वजह से हमारी विजुअलाइजेशन की क्रिया हमें सब नेगेटिव ऑप्शंस देती है, वी बिकम फेलियर्स। पूरी लाइफ सिर्फ आई कैन एंड आई कैनॉट पर निर्भर है। आप क्या सोचते हैं पर आपका जीवन निर्भर है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ्स।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जिसका यह सवाल होगा कि मूवी की कहानी पूरी याद रह जाती है, लेकिन सब्जेक्ट के लेसन्स क्यों याद नहीं रहते। मूवी के सॉन्ग्स भी याद रह जाते हैं, लेकिन कविताएं क्यों याद नहीं रहती। इसका कारण यह है कि मूवी देखते समय उस पर दिखाए गए चलचित्र हमारे दिमाग में बस जाते हैं और पढ़ते समय हमारा ध्यान कहीं और हो जाता है। अगर आप पढ़ते समय दिए गए पाठ को कल्पना के रूप में दिमाग में कैद करें तो 110% आप वह कभी नहीं भूल पाएंगे। पढ़ाई करते समय उसमें दिए गए शब्दों को अपने दिमाग में चित्र, छवियां और भावनाओं के साथ कनेक्ट करें और सोचो कि आप एक मूवी देख रहे हो, पर पाठ की मूवी के रूप में स्टडी करो। तब आपके द्वारा किए गए स्टडी आप कभी भूल नहीं पाएंगे। कभी कभी हम ऐसा कुछ स्टडी करते हैं जिसमें हमें रुचि नहीं, जिस वजह से हमारे दिमाग में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए अपनी पसंद को हमेशा महत्व दें। यदि आप अपनी छवि को आधे मिनट तक पकड़कर रख सकते हैं तब आपकी विजुअलाइजेशन क्षमता अच्छी है। और भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपके लक्ष्य को पाने से रोकते हैं, जिसके बारे में मैंने कई बार अपने प्रोग्राम्स में आपके साथ शेयर किया है। विजुअलाइजेशन को शक्तिशाली बनाने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले प्रोग्राम में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएगा आपका दोस्त होस्ट और आरजे चेतन। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे थे। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

0: ये थे अरिजीत सिंह, प्रीतम और साथी। फिल्म का नाम था ए दिले मुश्किल। गीत को संगीत दिया था प्रीतम ने।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

यह है फिल्म संगीत के अगला गीत आवाजें ही हिमेश और सुनिधि चौहान की फिल्म का नाम अक्सर। गीतकार है समीर और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

0: ये सौरथी अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की फिल्म का नाम था तेरे नाम। गीत था समीर का और संगीत हिमेश रेशमिया का था। श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी देहरादून है, अब आप जयवीर सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देहरादून में जिला प्रशासन की ओर से बालिकाओं की शिक्षा के लिए चलाए जा रहे नंदा सुनंदा कार्यक्रम से अब ड्रॉप आउट बालिकाओं को जोड़ते हुए उन्हें भी शिक्षा के अवसर दिए जाएंगे। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जिले में सर्वे कर ड्रॉप आउट बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को बालिकाओं की शिक्षा को पुनर्जीवित करने और स्कूल छोड़ चुकी छात्राओं को एक बार फिर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ठोस कार्य योजना पर काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी बालिका की शिक्षा आर्थिक, सामाजिक या पारिवारिक कारणों से बाधित नहीं होनी चाहिए। प्रशासन का प्रयास होगा कि प्रत्येक बालिका को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जाए। श्री चौहान ने कहा कि जरूरतमंद छात्राओं को शासकीय योजनाओं, छात्रवृत्तियों और अन्य उपलब्ध संसाधनों से लाभान्वित कर उनकी शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा। देहरादून के सहस्त्रधारा स्थित कारलीगाड़ आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत, पुनर्वास और संरक्षण कार्यों को तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रशासन ने आपदा प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, मलबा हटाने और जोखिम कम करने के लिए मशीनरी, मैन पावर और अन्य संसाधनों में बढ़ोतरी की है। क्षेत्र की लगातार निगरानी की जा रही है और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में जिलाधिकारी ने स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री के साथ कालीघाट क्षेत्र का निरीक्षण कर राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने अगले 15 दिनों के भीतर क्षेत्र से मलबा हटाने, नदी के चैनलाइजेशन और पुनर्वास संबंधी कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मलबा हटाने के कार्यों में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त मशीनें लगाई जाएंगी। वहीं सिंचाई विभाग द्वारा नदी के चैनलाइजेशन के लिए अतिरिक्त मशीनें तैनात की गई हैं, जिससे राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी आई है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिगंबर सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट की और भारतीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में लाइटवेट विश्व चैंपियन बनने पर उन्हें बधाई दी। श्री धामी ने कहा कि दिगंबर

सिंह रावत ने अपनी प्रतिभा, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया। दिगंबर सिंह रावत ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुई MFN18 प्रतियोगिता में पहले ही राउंड में तकनीकी नॉकआउट के माध्यम से शानदार जीत दर्ज कर विश्व खिताब अपने नाम किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में फ्लोरेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन लॉन्च किया। इस दौरान श्री पुरी ने घोषणा की कि E85 ईंधन की कीमत सामान्य E20 मिश्रित ईंधन से लगभग 20 रुपये प्रति लीटर कम होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने E85 के लाभ के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को भी घटाकर महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल आधारित ईंधन किसानों को भी लाभ पहुंचाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने भीमताल नगर पालिका को 5 नए कूड़ा वाहनों की सौगात दी। भीमताल भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भीमताल पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ की झीलें और प्राकृतिक सुंदरता बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। उन्होंने कहा कि नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुविधाओं और व्यवस्थाओं का होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से नगर पालिका को नए कूड़ा वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि कूड़े के संग्रहण और निस्तारण का कार्य बेहतर ढंग से किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर की स्वच्छता बनाए रखने के साथ साथ कूड़े का समय पर निस्तारण भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार नगर निकायों को स्वच्छता अभियान को मजबूत करने के लिए कूड़ा वाहनों के साथ अन्य आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध करा रही है, जिससे शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शरण पाल की गाई ये रागिणी। आपके साथ संगत कर रहे हैं ढोलक पर अश्विन कुमार, नक्काड़ा पर मोतीराम और हारमोनियम पर तेलुराम। तो आइए सुनते हैं शरण पाल की गाई रागिणी।
1: बात बना के

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: प्यास लगी हो तो बस पानी चाहिए, कैसा भी हो, पैक्ड, अनसेफ, कुछ नहीं देखते, बस पानी चाहिए। बट
4: इट्स डेंजरस, मे बी इट कॉजेज हेल्थ इश्यूज, सो अब जब भी पानी पियो तो पहले चेक करें कि उसपे ISI मार्क है या नहीं। ऑलवेज ड्रिंक ISI मार्क्ड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। बी अवेयर एंड बी सेफ।

0: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
1: नाड़ी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर और अल्सराइटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
0: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
1: व्हाट्सएप 7895372936।
0: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नाड़ी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद, पुराना शिव मंदिर, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी। शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।
2: लोक संगीत के कार्यक्रम में आप इस समय सुन रहे हैं शरण पाल की गायी रागिणी।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शरण पाल की गाई रागिणी। आपके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर अश्विन कुमार, नक्काड़ा पर मोतीराम और हारमोनियम पर तेलुराम।
1: ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पे ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोता हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। तो आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, शामिल करते हैं आपके मैसेज को और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद के गीत। तो शामिल करते हैं कार्यक्रम में ये पहला मैसेज जो हमें लिख भेजा है तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। आप हैं गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयु श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आयुषी श्रीवास। और बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर जो हमें लिख भेजी है गोकुल चौक गंगाजल सहरसा बिहार से। भेजने वाले आप हमारे श्रोता हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी अच्छे लाय बुल्की वाली और फलना चाह। अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हमें मिली है गांव फ्रांसी हिसार से। आप हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। ये अगला मैसेज हमें लिख भेजा है शेरवानी स्कूल गंजडुडवार उत्तर प्रदेश से। आप हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। करीमगढ़ नगर से आप हैं लक्ष्मी नारायण और विजय अभिनय साई किरण। ये अगला मैसेज हमें मिला है ग्राम उमेड़ा निजामाबाद तेलंगाना से मोहम्मद जैनुद्दीन, अबीदा आयशा और स्नेहा भानु जैनुद्दीन। ये फरमाइश मिली है मजनू का टीला से। भेजने वाले हमारे श्रोते हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से आप हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। भारतीय अगली फरमाइश की ओर जो लिख भेजी है भोपालगढ़ राजस्थान से। आप हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। खालापार मुजफ्फरनगर से आप हैं शाहीना परवीन, फातिमा खुशबू, आयजा मोहम्मद अदीब और मसरूर अली। ये अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हमें भेजी है किसी भी गीत में शामिल होने की फरमाइश इन्होंने हमसे की है। एमएलबी रोड ग्वालियर से आप है सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्य, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू और एस के पप्पी खुराना। तो चलिए श्रोताओं, सुनवाते हैं आप सभी की पसंद पे कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म शागिर से। और गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। तो सुनिए ये गीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलों से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़।

0: के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
3: इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
2: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
3: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
4: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
5: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
6: नाड़ी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथरल स्ट्रक्चर और अल्सराइटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
5: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
6: व्हाट्सएप 7895372936।
5: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नाड़ी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद, पुराना शिव मंदिर, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी। शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।
0: FM 100.5 MHz पे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्रीय श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है व्हाट्सएप फरमाइश। आइए शामिल करते हैं कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश को, जो हमें लिख भेजी है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं फैसल इमाम मोहम्मद, अफजल मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो लिख भेजी है फ्यूचर सिटी हैदराबाद से आप हैं गोपाल नाई और उमा माहेश्वरी। ये अगला मैसेज हमें मिला है, मॉडल टाउन करनाल से आप हैं सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा। ये अगला मैसेज मिला है, जय जिनेंद्र श्रोता संघ पर भड़ी महाराष्ट्र से आप हैं रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा ही संघई परिवार। करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से आप हैं कानूगुला गोपाल, माहेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन और साथ में है विघ्नेश। ये मैसेज मिला है गणेश भारद्वाज बिजवार, दरबान सिंह नेगी, राजेंद्र सिंह नेगी, राजू भाई, सुरेंद्र मुंडे पी, कुलदीप रापत, लियाकत रजाई वाले। ये मैसेज हमें मिला है बालावाला देहरादून उत्तराखंड से। ये अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं, जो मिला है मोताला बाजार से आप हैं बबलू ठेकेदार, शेख शगी, शेख वजीर, सोहिल शेख, सैयद तहमूर, शामिर खान और अजलान। ये अगला मैसेज मिला है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से आप हैं उमा सिंह, श्रीमती माहेश्वरी देवी जी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य और साथ में हैं दिनेश। लेवाई छत्तीसगढ़ से आप हैं गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। ये मैसेज लिख भेजा है, शिवपुर नगर निगम वार्ड 18 कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से आप हैं एस के नेगी, अंजना नेगी, डॉक्टर आकांक्षा नेगी, सुधांशु नेगी और समस्त नेगी परिवार। ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल और दीवाना रेडियो लिसनर क्लब जामिया जिला गाजीपुर से आप हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल और गमहरिया जमशेदपुर से आप हैं बिपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल। ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से आप हैं सतवीर सिंह बिजानिया, देवेंद्र सिंह बिजानिया, राजपाल सिंह बिजानिया, अभिषेक सिंह बिजानिया, योगेश सिंह बिजानिया, पूजा सिंह बिजानिया, आरजू सिंह बिजानिया और साथ में है नव्या बिजानिया। बढ़ते अगली फरमाइश की और जो लिख भेजी है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से आप हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोनाना और सुदामा नगर खंडवा से आप हैं लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। ये अगली फरमाइश शामिल कर रहे हैं जो मिली है गमहरिया जमशेदपुर से आप हैं रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से आप हैं विजय सवाल, सरोज जायसवाल और रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल और चकिया बाजार चंदौली से आप हैं सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। ये मैसेज मिला है जिला अमरोह नई पस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद शिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बेटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और साथ में हैं सुदेश चौहान। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से आप हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, आशिक हुसैन और मुन्ना अंसारी। तो चलिए श्रोताओ सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाज है लता मंगेशकर और साथी की, फिल्म का नाम है नसीब।

आकाश वाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

FM 100.5 MHz पे श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश, और लगातार बहुत सारे श्रोताओं के मैसेज भी हमें मिल रहे हैं और हमारा प्रयास रहता है कि हम आप सभी के मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करके आपके पसंद के गीत आपको सुनवा सके। तो चलिए अब ज़्यादा देरी ना करते हुए शामिल करते हैं अगली फरमाइश को जो हमें लिख भेजी है। धूलिया महाराष्ट्र से आप हैं अशोक कवाड़े, आदित्य कवाड़े। दरियापुर भावली महाराष्ट्र से आप हैं गजानन येले और मधुकर येले। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से ये मैसेज हमें लिख भेजा है जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख। और करूला मुरादाबाद से आप हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान। शामिल करते हैं अगले मैसेज को जो मिला है जलालाबाद वेस्ट से, आप हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। रेलवे रोड गंज डोडवारा से आप हैं मोहम्मद खलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवर, नाजमा बेगम नाज और भाभी सरिता गौतम। ये मैसेज मिला है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही और महराज जहां। गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से आप है गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाशदीप अनहद और पोतरा गुरशब्द। जसपुर उत्तराखंड से आप है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। शाहूनगर यवतमाल से आप हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। ये मैसेज मिला है ग्राम चांदूर बिस्वा, जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से आप हैं किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े, विशाल वानखेड़े। और ग्राम राजूर तहसील मोताला महाराष्ट्र से आप हैं राज गवई और राजवीर गवई। ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हमें लिख भेजा है चकला बाजार सवाना शहर पंजाब से आप हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बट्टी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार। ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हमें लिख भेजा है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। और ये मैसेज मिला है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर। शामिल करते हैं अगली फरमाइश को जो मिली है अहमदपुर खैगांव खंडवा से आप हैं कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वैदिका फूलमाली। ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं किसी भी गीत में इन्होंने शामिल होने की फरमाइश हमें लिख भेजी है नई बस्ती गंज डुडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौशीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। चलिए श्रोताओं सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की खूबसूरत आवाज़ में फिल्म नील कमल से।

गीत के बाद स्वागत है आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। श्रोताओं, FM 100.5 MHz पे यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। तो आइए श्रोताओं, शामिल करते हैं कार्यक्रम में अगली मैसेज को जो हमें लिख भेजा है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। यहाँ पे तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से यहाँ पे राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना। ये अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से। यहाँ पे विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लुमा व डॉक्टर ईशानी। ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो मिला है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और साथ में हैं लड्डू। पूना जंक्शन मस्तानपुरा से आप हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना

भगत। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से ये मैसेज हमें लिख भेजा है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द और राहुल। ये मैसेज मिला है वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से। आप हैं जयराम सिंघड़कर, दिशांत कुमार सिंघड़कर और साथ में हैं अर्पिता जी। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से आप हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। और जिला किशनगंज बिहार से आप हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और वर्षा सुमन। ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो मिला है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन रात से। आप हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। ये अगला मैसेज मिला है जलालाबाद शामली यूपी से। आप हैं राशिद मंसूरी, अयान मंसूरी और साथ में है जिशान मंसूरी। और ये मैसेज हमें मिला है मुरादाबाद यूपी से। आप हैं आमिर अंसारी, आदिल अंसारी, आरिफ अंसारी, आफरीन अंसारी, अदनान अंसारी। और ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं पटेल नगर मलोट से। आप हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीतारानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया और आरजू जजोरिया। साथ में हैं गुड्डू। शाहजी नगर देगलर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से आप हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। शामिल करते हैं अगले मैसेज को जो मिला है नजीबाबाद से। आप हैं आरजे मनोज वर्मा। ये मैसेज कर रहे हैं हम शामिल जो मिला है खैल बाजार पानीपत से भावना मल्होत्रा, नलिश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से आप है प्योर सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू, भाविक सिक्का। ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हमें मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और साथ में है नरगिस खातून। गांधी रोड गंजडू द्वारा से आप हैं मोहम्मद आसिफ शेख, मोहम्मद अजीम शेख, मोहम्मद जावेद शेख, फातिमा गाजी शेख, मुन्नस सलमानी और मोहम्मद कलीम मोहम्मदी। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से आप हैं सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर और वर्ण सिंगी। बुलढाणा से आप हैं अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, श्लोक और दीपाली। आई श्रोताओं, सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में फिल्म सच्चा झूठा से।

ये अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हमें मिला है बक्सर बिहार से। शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खानडोर अंसारी और सुरीत रमेश शाहू और डुमराव बिहार से आप हैं। डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से आप हैं शदानंद आर्य, अभिनंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से आप हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। ये मैसेज शामिल कर रहे हैं गाँव कुमार हेड़ा सहारनपुर से आप हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सर नाजिया, आफिया इब्राहिम सद्दाम और अदीब हसन। ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हमें लिख भेजा है आप हैं। फरमाइश करते हैं नयापारा भिराई जिला बालोद से आप है बसंत कुमार ठाकुर, सरोज बाई ठाकुर, ईश्वर राज और साथ में है पप्पू ठाकुर। ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हमें लिख भेजा है सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से आप है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पी चौहान और बेबी गर्वी। छत्तीसगढ़ पलारी से आप है प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। और सहारनपुर से आप हैं सोनाली, आशा नारंग और सुरेश नारंग। मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजा रानी और हीना कौसर ने यह मैसेज हमें लिख भेजा है मोहल्ला हलवाइया शेरकोट जिला बिजनौर से। बढ़ते अगली फरमाइश की ओर जो हमें लिख भेजिए गांव लोहरगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से आप हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविरा सिंह और शुभदीप सिंह। ये मैसेज लिख के भेजा है मोहल्ला बरादरी महमूद खान रामपुर से आप है भाई रफत साहब, भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान, अफजर अली और नगमा नाज मंसूरी। और जय जिनेन श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से आप हैं रुपेश संगई, महेश संगई, प्रगेश संगई, प्रीतेश संगई और पूरा ही संगई परिवार। किसी भी गीत में शामिल होने की अगली फरमाइश हमें लिख भेजिए भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बनी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, बेबी वैदेही जोशी और बेबी अंशिका जोशी। देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला निवासी आप हैं सुनील चावला, मीना चावला, साक्षी चावला, चोपड़ा, दिनेश चोपड़ा, तनु नानू, राधिका रानी गुप्ता, अंशुल गुप्ता, स्मिता रानी गुप्ता, दीक्षा चावला, कृतिका, कविता आहूजा, आर एस आहूजा, रजत आहूजा और सोनिया आहूजा, तनिषा आहूजा और सीमा द्वार से आप हैं सभी चावला के फैमिली नंबर्स। ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय और कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय। शामिल करते हैं अगले मैसेज को जो मिला है नलेश्वर नगर नरविल महाराष्ट्र से पी एस नुहाकर, निर्मला नुहाकर, विशाल नुहाकर, सोपान ताइडे और मलकापुर से आप हैं नारायण इंगले, राजकुमार खर्ची और साथ में हैं आशीष मुहेरकर। निमांडी बाय और निमांडी गर्ल ने ये मैसेज हमें लिख भेजा है सप्तृंगी रेडियो लिसनर क्लब से। बढ़ते अगली फरमाइश की ओर जो मिली है मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, राजकोट से आप हैं जैमिन कुमार जैन और हेतल जैन, कृष्णा जैन और साथ में हैं राकेश जैन। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से आप हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी। हम शामिल कर रहे हैं अगले मैसेज को जो मिला है गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। तो चलिए श्रोताओं सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में फिल्म साजन से।

परी महल कासगंज से ये अगला मैसेज हमें लिख भेजा है आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, मोहम्मद असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आप हैं आफरीन खान और जमीर खान। ये अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हमें लिख भेजा है। गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी और साथ में हैं सीता और गीता। ये मैसेज लिख भेजा है आप हैं रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से, किशन वंजानी, नीलम, स्वाति, संगीता, सरिता, सुमन और महाजन और साथ में हैं किशोर। शामिल करते हैं अगले मैसेज को जो मिला है गांव झगोड़ी जिला यमुनानगर से रणधीर बागर, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम और वीरेन। ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं झज्जर हरियाणा से। भेजने वाले में श्रोता हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। वीरम काम गुजरात से आप हैं जीत भावसार, प्रमिला भावसार और भावेश कुमार भावसार और सनी भावसार। फुलाई नगर बीट महाराष्ट्र से आप हैं बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा। ग्राम हिंगड़ी अलोट जिला रतलाम एमपी मध्य प्रदेश से हैं जगदीश धाकर नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकर, युवराज सिंह धाकर और शिवांगी धाकर। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। ये मैसेज मिला है ग्राम पीपलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। गांव जखोद राजस्थान से आप हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हमें मिला है गुन्नौर से आप हैं आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से आप हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनवीत, मनविंदर सिंह पांधा और जी एस राम गढ़िया। शामिल करते हैं अगले मैसेज को जो मिला है तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह।

बख्श बेगम राबिया शेख, रहीमुन्ना दानिफ आसिफ शेख। उत्तम नगर दिल्ली से आप हैं कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। श्रोता आपसे विनम्र निवेदन है कि जिन श्रोताओं के मैसेज हमारे कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं, कृपया आप दोबारा ना भेजें। इससे हमारे और श्रोताओं के मैसेज भी रह जाते हैं, तो आपसे उम्मीद है कि आप दोबारा मैसेज ना भेजें। चलिए बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर, जो हमें लिख भेजा है शांति निवास लेह गांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से। यहाँ पे कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े और दीपक कुरहाड़े। धारी नांदूरा महाराष्ट्र से यहाँ पे श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। सब्जी मंडी बुल्ढाना से बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजानम और मुदस्सिर हुसैन। आई श्रोताओं, सुनाते हैं आपको मुकेश की आवाज में कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म संगम से।

श्रोता मुकेश की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म उपकार से। FM 100.5 MHz पे ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमें लिख भेजा है अधिकारी निवास मिलन विहार GMS रोड देहरादून से भेजने वाली हमारी श्रोता हैं राजेश्वरी सागर। ये अगला मैसेज मिला है यलंदो काठगोदाम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से राजेश खन्ना सुनीता राज खन्ना भानु राज खन्ना अमित खन्ना इनकी अम्मी और प्यारा बिल्लू। मलियाना सरदना मेरठ से आप हैं अनिल जैन जैन साहब संयम जैन और मुस्कान जैन। शामिल करते अगले मैसेज को जो मिला है हैदराबाद

और कृष्णा घुड़की शामिल करते हैं अगले मैसेज को जो मिला है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छनुलाल शिवाश, अनीता पुष्पा शिवाश, अंजू योगिता शिवाश, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी और एलएम, ये मैसेज मिला है। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजे नासिर, साजिद और शाहिद। गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से आप हैं लक्ष्मणराव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्ननी लोखंडे और रक्षिता लोखंडे। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से ही आप हैं सिद्धार्थ नगर गोड़ाने, अर्चना ताई गोड़ाने, हीरामन शिंदे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गुन्हा में। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से आप हैं बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, जय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री गुप्ता और पेहरा बाजार झुमरे तिलैया से आप हैं अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जिया टूसी, आयुषी अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शाह, जयप्रकाश साव, वसंत लाल साव, हीरा मोती और पन्ना लाल साव। आयुषो तो सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत मुकेश की आवाज़ में फिल्म संगम से।

बंजारन, ये अगला मैसेज हमें मिला है ओल्ड लिसनर्स राजनगर से। आप हैं कोशेश्वर कांति गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, रुद्र गुप्ता, ऐशबाग लखनऊ, पीली कॉलोनी से आप हैं रानी मुकेश गुप्ता, रश्मि, नीलम, कुसुम और साथ में है रूपा इलाहाबादी। ये अगला मैसेज हमें मिला है नाभा जिला पटियाला पंजाब से। आप हैं सोमदत्त, कैरव, ज्योति, रानी, गुरमंत और मनु। शामिल करते हैं अगले मैसेज को जो लिख भेजा है गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयत और मोहम्मद इंतज़ार। शामिल करते हैं अगले मैसेज को जो लिख भेजा है चंडीगढ़ से। आप हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा और ये मैसेज मिला है नैनीताल से। आप हैं राजेश कुमार। हैदराबाद कीसरा मंडल से आप हैं सदानंद गौड़ और सत्यमा और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। हिंदराज रेडियो श्रोता संघ तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से आप हैं बंडू लोहार पोपलगढ़, चंद्रकला पोपलगढ़, देवी दास पोपलगढ़। और शामिल कर रहे हैं ये अगले मैसेज को जो मिला है सहारनपुर से। आप हैं एस के नारंग, शेख अल्लाबख्श, अरविंद कुमार, संदीप मक्कर और सोनाली आशु पथेक। बढ़ते अगले फरमाइश की और जो मिला है मेन रोड तेलहारा से यहाँ पे प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से आप हैं रज़ाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और साथ में हैं इरफान खान। शाही मार्केट स्योहारा ज़िला बिजनौर से आप हैं आसिफ चौधरी बेगम, रिहाना अरफात अदीब और साथ में हैं कादिर चौधरी। बीरशाह महाराष्ट्र से आप हैं नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जैशी महत्री, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा और रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टवुल और साथ में हैं पीबी खुलते। दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से आप हैं भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल बड़वाल, लखवीर बड़वाल, रानो कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल और प्यारे बेटे चटको मटको। अगले पसंद करता है दत्तरे की भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। राजमाता नगर बुल्ढाना महाराष्ट्र से आप हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और साथ में हैं आकाश कुमार। और ये अंतिम मैसेज मिला है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और साथ में हैं सोनम वर्मा। शामिल करते हैं ये अंतिम मैसेज नेहरू चौक पैटर्न से जो मिला है डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव और जालना शहर से आप हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। तो चलिए श्रोता सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अंतिम गीत किशोर कुमार की खूबसूरत आवाज़ में फिल्म सफ़र से। और श्रोताओं इसी गीत के साथ कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं पर सम्पन्न करने की दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, वर्षे फरमाइश, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के आधिकारिक बयान में यह घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानस उधार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. The revised directions have come into effect immediately. Central Board of Secondary Education or CBSE has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In a social media post, the board said, students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was 6th of this month. Delhi police has arrested a hotel cook named Keshav Negi in connection with the Malviya Nagar fire incident. The fire broke out at a hotel in Malviya Nagar on the 3rd of this month and claimed the lives of 21 people while injuring 40 others. Earlier, the police had also arrested the hotel owner under charges of culpable homicide and other relevant sections. The police stated that further interrogation and investigation is underway. The 29th edition of the India-US Army to Army Staff Talks was held in Hawaii, co-chaired by Lieutenant General Rajiv Ghai, Deputy Chief of the Army Staff Strategy and Lieutenant General Joel Vowell, and Deputy Commanding General of the US Army Pacific. The discussions focused on strengthening bilateral defense cooperation, enhancing interoperability, expanding professional exchanges, and deepening military collaboration in support of shared security interests. Mauritius has imposed a temporary entry ban on foreign nationals who have traveled to, transited through, or stayed in Congo, Uganda, or South Sudan over the past 21 days following the latest outbreak of the Ebola virus. Mauritian citizens and foreign residents holding valid work, residence, occupation, business or student permits will still be allowed to enter the country but will be subject to a mandatory 21-day quarantine if they have visited any of the three countries within the previous 3 weeks. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today congratulated the newly appointed Foreign Minister of Slovenia, Tone Kaiser, and expressed his desire to work together. Tony Kaiser, a former diplomat with more than 30 years of experience, was officially sworn in under the newly endorsed right-wing coalition led by Prime Minister Janez Janša in Slovenia. In Andhra Pradesh, Jan Sena Party President Pavan Kalyan has announced Lingamaneni Ramesh as the party's candidate for the upcoming Rajya Sabha election. The announcement was made through an official statement issued by the party. L. Ramesh is scheduled to file his nomination papers today. According to party, Ramesh has been associated with Jan Sena and its leadership since 2015. India Meteorological Department or IMD has issued a red alert for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Keralam and Mahi today. Heavy to very heavy rainfall conditions are also expected over parts of northeast India, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the day. Similar conditions have been predicted over sub-Himalayan West Bengal, Telangana, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Rayalaseema

0: Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. The weather agency predicted thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, East Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand and Jammu and Kashmir today. Indian wicketkeeper and batter K.S. Bharat has announced his retirement from international cricket. He represented India at test level on 7 occasions, with his last appearance coming against England at Vishakhapatnam in February 2024. India will face Bangladesh in the final of the SAF Football Women's Championship at Madgaon in Goa today. The match will be held at 6:30 p.m. onwards. And in hockey, India will face host Japan in the final of the Men's Under-18 Asia Cup 2026 in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. Earlier, India beat its arch rival Pakistan 5-3 in the second semi-final in a high-scoring contest. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप अखिलेश चंद्र गैरोला से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। उत्तराखंड को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की चार श्रेणियों में प्रथम स्थान के लिए चुना गया। वर्तमान में राज्य में 308 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। सरकार का 433 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है। भारतीय हॉकी टीम ने जापान में आयोजित अंडर 18 पुरुष एशिया हॉकी के फाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर जगह बना ली है। आज खिताब के लिए भारत का मुकाबला जापान के साथ होगा। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा करते हुए सरकारी अस्पतालों में रेफरल सिस्टम की जांच करने के निर्देश दिए। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस वार्ता कर कहा, प्रदेश भर में 8 जून से 7 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर गणना फॉर्म का वितरण कर उनका संकलन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना अंतिम चरण में है, इससे नकली नोट, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगेगी। राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जीप 2026 की तारीख घोषित कर दी है। सोमवार से 3 पालियों में प्रवेश परीक्षा आयोजित होंगी। देहरादून जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने ड्रॉपआउट बालिकाओं को नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट से जोड़कर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के निर्देश दिए। और उत्तराखंड सरकार और पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल परिषद के सहयोग से केदार घाटी में नेचुरलिस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। केदारनाथ से जुड़ी रोचक लोक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं और कम चर्चित पर्यटन स्थलों के बारे में युवा जानकारी जुटाएंगे। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे साजन बाबू कव्वाल और साथी के आवाज में कव्वाली।

श्रोता, FM 100.5 MHz पे सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं साजन बाबू कव्वाल और साथी की आवाज़ में कव्वाली।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे साजन बाबू कव्वाल और साथी की आवाज़ में कव्वाली। FM 100.5 MHz पे ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार बहनों, महिला जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी सखी सुमन बगासी। बहनों, जीवन को जीने का तरीका सबका अलग अलग होता है, मगर व्यवस्थित जीवन जीने के लिए हमारे जीवन में नियमों का होना बेहद ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में नियम नहीं होंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ सा लगता है, क्योंकि नियमों से जीवन में अनुशासन आता है। अगर हम अपनी दिनचर्या के कुछ नियम बना लें तो अपना हर काम सही समय पर और सही तरीके से कर सकते हैं। बहनों, अगर हम अपने सोने का, जागने का और खाने पीने का एक निश्चित समय बनाते हैं तो इससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। और अगर हम सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित कर लें तो काम के आखिरी समय में कोई हड़बड़ी भी नहीं होती है और हमें तनाव भी नहीं होता है। फिर धीरे धीरे काम करने का तरीका और भी बेहतर और काम करने की हमारी जो स्पीड है वो और भी तेज होती जाती है। बहनों, समाज में शांति व्यवस्था और सहयोग को बनाए रखने के लिए सामाजिक नियम बनाए जाते हैं, जैसे कि घर परिवार में, समाज में अपने से बड़ों का आदर करना, सच बोलना, ईमानदारी। नियमों का पालन करने से हम अपने और दूसरों के जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, जैसे यातायात के नियम। अगर हम बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएं या फिर हम रेड लाइट को जंप करते हैं या रॉन्ग साइड से गाड़ी निकालते हैं तो इनसे यातायात के नियम भंग होते हैं और जिनका हर्जाना हमें चालान के रूप में देना पड़ता है। बहनों, ये नियम हमारी ही सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सोचिए कितनी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, है ना? ठीक इसी तरह हर खेल के भी अलग अलग नियम होते हैं। अगर नियम गेम में नहीं होंगे तो सोचिए खेल में हार और जीत का पता कैसे चलेगा। बहनों, नियमों के बिना दुनिया का कोई भी काम सफल नहीं होता है और सफलता के लिए अनुशासन का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अनुशासन के बिना हम खुश नहीं रह सकते हैं। हमें चिंताएं, परेशानियां घेर लेती हैं। और बहनों, प्रकृति भी तो नियम से ही चलती है ना। जिस तरह सूरज, चांद अपने एक निश्चित समय पर उदय होते हैं और अस्त होते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन के सभी कार्यों के नियम बनाने चाहिए। और बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं आजकल, तो ऐसे में हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि हर काम टाइम से करें, हर काम का एक रूल बनाएं और उसे फॉलो करना बच्चों को सिखाएं, ताकि बच्चे भी नियमों का महत्व समझ सकें और समय की कद्र करना भी सीखें। बहनों, एक खुशहाल और सफल जीवन के लिए अनुशासन और सकारात्मक सोच का होना बेहद ज़रूरी होता है, जिससे हमें जीवन में सफलताएँ मिलती हैं और हम प्रगति करते हैं। तो बहनों, कार्यक्रम में अब लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: कार्यक्रम में अब सुनते हैं काव्य पाठ श्रीमती नियामिका वर्मा जी से।
1: पहली कविता का शीर्षक है जोया। जब तुमने नन्हे हाथों से मेरी नब्ज टटोली, कलेजा हथेली में फिसला, करुणा के इस स्पंदन को दिग दिंकत पर अंकित कर लो, हर जन्म इसका विस्तार करूं, हे गोरैया मेरे आंगन की किस तरह तुम्हारा आभार करूं। दूसरी कविता का शीर्षक है माँ। जब उम्र की इस धूप से तुम्हारा सिका हुआ चेहरा दिखा माँ, मन हुआ तुम्हारे सिकुड़े आवरण को गले लगा लूं, जैसे कितनी बार तुमने छुपाया होगा मुझे हर मौसम में, मन की कोई दिशा नहीं, आंखें मूंद कितनी बार घूम आती हूँ बचपन के गलियारे में, सपनों और संभावनाओं की हवेली में तुम्हारा हाथ पकड़ के माँ, मेरे होने में तुम्हारा होना हर पल शामिल है, यही तो रिवाज है सदियों से शाश्वत तक। अब अगली कविता का शीर्षक है आंकलन। बचपन में सुना था चील आई घर पर मंडराई, किसी अपने के जाने की खबर आई, कल शाम चीलों का झुंड परिक्रमा कर रहा था, कोई याद कौंध गई मन थिर हुआ, देखा झुंड पड़ोसी के छत पर रुक गया, विपत्ति उन पर आ रही तो फिर वो निपटे। मेरी अगली कविता का शीर्षक है कुम्हार। पथिक असमंजस में था, कौतूहल से देख रहा था, भोर में जहां मिट्टी का ढेर था, सांझ में मूरत खड़ी थी, कच्ची सी सोंधी सी सकुचाई सी, कुछ प्रश्न बुदबुदाए मन में कुछ भेद छटपटाए, मैं ही जानती थी मिट्टी का वो ढेर कुम्हार ले गया था, पसरी हुई मिट्टी को आकृति दे गया था, मंत्र माथे पर फेर गया था, सपनों से नैनों को गढ़ गया था, अंजलि कस वक्षों को कढ़ गया था, आंख से नख तक जीवन का रस भर गया था, मिट्टी का भेद मूरत में जड़ गया था, पथिक असमंजस में ही चला गया, मैं असमंजस में देखती रही। अगली कविता का शीर्षक है तुम्हारी हंसी। तुम्हारी हंसी छू जाती है मुझे, वैसे नहीं छू जाती है धूप जड़ों को पत्तियों से छनते हुए आधे अधूरे, वैसे नहीं जैसे छू जाती है ओस की बूंदे फूलों के सतह पर सिमट कर आधे अधूरे, तुम्हारी हंसी छूती है मुझे पूरे साथ छुअन लिए, जैसे छूते हैं बादल धरा को हर बूंद समर्पित करते, भूल जाते हैं अस्तित्व छोड़ कण कण में पूरे के पूरे। मेरी अगली कविता का शीर्षक है प्रतीक्षा। तुम आ गई कब से प्रतीक्षा में देख रही होते हुए बंटवारा, रंगों का गुलाबी तुम रख लो नीला उसको दे देते, खिलौने का गुड़िया तुम रख लो गाड़ी उसको दे देते, बुद्धि और काया का काया तुमको देते हैं बुद्धि उसकी होने दो, और पता है सुनिश्चित हुआ बुद्धि हमेशा श्रेष्ठतर रहेगी, काया खुद को सुंदर बनाए बुद्धि का मुकुट बहन इतराए, सुना है अनवरत दासी बनी काया ने काया पलट कर दिया है, नीले आकाश को गुलाबी रंग दिया है, अब अंबर भी कभी नीला कभी गुलाबी दिखेगा, आने में बहुत देर हुई लेकिन तुम आ गई। अगली कविता का शीर्षक है मेरा होना। मैं उड़ रही हूँ खुले आकाश में, न रंग न रूप न आकार, न लाज न द्वेष न कोई पुकार, कभी अंजुरी में कभी सागर में निराकार, न भय न लेखा जोखा का भार, कभी ताप कभी बुझता अंगार, न शब्दों के तीर न सुर की टंकार, हवा में घुल जाना कभी इस पार कभी उस पार, न पिछले न अगले जन्म के संस्कार, बस क्षण में विहित उड़ना साकार। अगली कविता का शीर्षक है राम की आस। मोह भंग हुआ है राम का आना भ्रम हुआ है, अपने को छलते रहे आस में अयोध्या बनते रहे, राम के लौटने की प्रतीक्षा क्यों वो तो कण कण में है, राम ही को प्रतीक्षा है कि सब अपने अपने नगर लौट नहीं जाएंगे, कुछ आएंगे उन्हें खोजते हुए, क्योंकि वही एक राह है और वही खोज का अंत भी, जो जान न सका हे राम उसका आरंभ शेष है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है होना। होने के हैं तीन प्रकार, एक होना जो हो रहा है, एक होना जो होना चाहिए, एक होना जो वश में ना हो मेरे, होना जो हो रहा है मिल चुकी हूँ उससे कई बार, होना जो होना चाहिए यकीन नहीं इस होने में, होना जो वश में ना हो मेरे भाया है मुझको यही विचार, इस होने का है अलग अर्थ मैं हूँ ना हूँ तुम तो हो, तुम्हारे इस होने में मेरा होना हो जाता है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है डल लेक। शाम का सूरज सदियों की याद समेटे उतर रहा था धीरे धीरे डल को सिंदूर करते हुए, आंखों में लिए बादशाहों की ताजपोशी का जुलूस, बेगम व कनीजों की ठिठोली, चिनारों की कतार की पहरेदारी। यूं सर्द हवा की सरसराहट में कुदरत का मिजाज बदल गया, सुर्ख पत्तों का सिंहासन ढोल गया। मेरी अगली कविता का शीर्षक है पूर्ण विराम। मैं जन्मी अक्षर अकेली, पलते बढ़ते अन्य अक्षरों से मिली, शब्दों में परिणत हुई, फिर वाक्यों में, कविता में, उपन्यास में, महाकाव्यों में, इतिहास में चर्चित हो चुकी हूँ, अक्षरों के समुद्र में खो चुकी हूँ, क्या तुम मेरा पूर्ण विराम बनोगे। मेरी अगली कविता का शीर्षक है प्रेम। एक कथा है साथ चलने की, चेहरे की झुर्रियों में परत दर परत झांकते हैं मौन, एक दूसरे में लीन दो जन, कि मौन ही में उस कथा के अर्थ बंधने खुलने हैं, मौन फिर से मुकुलित होगा, कथा फिर खिलेगी। कुछ कथाएं अशेष की कथा होती है, कुछ कथाएं अशेष होती। मेरी अगली कविता का शीर्षक है अनुभव। वक्त के दरख्त में लम्हे सूखे पड़े हैं, मन के आसमान में सब हरा हरा सा है, आधे अनकहे सपने टंगे पड़े हैं शाखों पर, जाने उलट पाँव कौन बवंडल चल पड़ा है। ऐसा नहीं कि रात के सयाह में उभरती है तस्वीर तुम्हारी, उस अक्स से लुकना छुपना सालों से चल रहा है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मित्र। उम्र के इस पड़ाव पर जब नए रिश्ते बनते नहीं, जो है वो निपते नहीं, आंख बंजर हो जाती है, सपने रात को उड़ जाते, बचपन से सीखा धीरे धीरे अनपढ़ा करते गए, ऐसे मोड़ पर सालों बाद तुम्हारा दस्तक ईश्वरोक्ति सा हो गया, मन कृष्ण सुदामा हो गया, आस्था की ईंट मजबूत हुई, एक पारी और खेलने को आश्वस्त हुआ। मेरे मित्र मेरे सखा, तुम्हारा आना एक संदेश है, मन के कोने में गौरांग प्रदेश है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है चांद तारे। चांद तारों का ठंडा मौन, खिड़की से रोज उतर चमकता है बालों में वरक बनकर, माथों के सलवटों में बीते हुए पलों की जरदोजी, छोटी होती हुई आंखों में आज भी चमकते उम्मीद के हीरे, यही हैं धरोहर मेरे। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बच्चों को क्या दूं विरासत में। क्या दूं बच्चों को विरासत में, चमकीले रंग लेप का मकान, जिन पर छिपकलियों की दौड़ होती अब न झिंगुरू की कवि गोष्ठी, अब तो दीवारों पर चींटियों का जुलूस भी नसीब नहीं होता, गले मिले बिना मजाल की आगे बढ़ जाती, बंधुत्व तो उन्हीं से सीखा, उसको भी कैसे भूल जाऊं जो रास्ता रोक लेते, अपने जाल मेरे बालों में बुनकर, आंगन के धूप में आंख मिचौली करती गौरैया, कौवे के कौर से छुपती वह रोटी जो गाय के रंभाने पर निकलती, सब छोड़ गए मेरी दुनिया, अब बच्चों को मिलेगी चिकनी खुशबूदार ठंडी दीवारें। मेरी अगली कविता का शीर्षक है औरत। वह मौन में चलती है, सूखे पत्तों की चरमराहट, जंगल में हवा की फुसफुसाहट, ध्यान से सुनती है वह मौन में चलती है, वह रूपिया बन कितना ही हो घन मन, साध लेती है वह मौन में चलती है, चांद तारों की गपशप लहरों की आपाधापी भाप लेती है वह मौन में चलती है, मौन में चलना उसने चुना नहीं, मौन में आना और चले जाना उसकी नियति है, इसलिए वह मौन में चलती है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बुद्धत्व। मन दौड़ रहा है बेलगाम, सब छूट रहा हाथ साथ, बेचैनी अनदेखी, अंधकार आगे पीछे धुंधला आकार, क्या यह बुद्ध होने का द्वंद है या अनंत की पुकार। मेरी अगली कविता का शीर्षक है प्रायश्चित। अपने प्रतिबिंब को देखकर क्यों चौंक रहे, ये तो वही है जिन्हें छुपाया था राजाओं ने तोते में, एवं असुरों ने चमगादड़ों में, तोते मरते गए चमगादड़ बढ़ते गए, सृष्टि के प्रतिपात्र तुम छल बल के परचम लहरा रहे, पेड़ पौधों को कुचल रहे, नदी जंगल निगल रहे, इन सब के प्राण भी चमगादड़ में धर रहे, असुर प्राण से भर दिया दुनिया का कोना कोना, संभव नहीं लगता अब तोते का वापस होना, सर्वश्रेष्ठ सब नष्ट कर किस ग्रह की सैर तुम सोच रहे, अपने प्रतिबिंब को देखकर फिर आज तुम क्यों चौंक रहे। मेरी अगली कविता का शीर्षक है विश्वास। नदी के दोनों छोर को बांधते हुए पुल पर जब रेल द्रोणते

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
3: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
4: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
5: बहनों, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। महिलाएं घर में सबकी ज़रूरतों का, सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं, मगर बात महिलाओं के स्वास्थ्य व सुरक्षा की जाए तो इसी से संबंधित भारत सरकार ने स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख सुरक्षित मातृत्व योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना। ये योजना 12 अप्रैल 2005 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना को शुरू करने का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सरकारी अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देना है। बहनों, ताकि मातृ और नवजात शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके, इस योजना के अंतर्गत केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाएं ही शामिल हो सकती हैं। इस योजना की पात्रता के लिए महिलाओं की आयु न्यूनतम 19 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना का लाभ उठाने के लिए आप नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर सकती हैं। बहनों, आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना के लिए आपको किन किन दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी आवश्यक है और BPL राशन कार्ड और आपके बैंक खाते की पासबुक। और हाँ, आपका खाता आधार से लिंक जरूर होना चाहिए ताकि सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे आपके खाते में आ सके। इसके लिए आपको अस्पताल का डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य कार्ड व जननी सुरक्षा योजना कार्ड की जरूरत पड़ेगी। बहनों, प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसव के दौरान मुफ्त दवाएं, जांच और निदान शामिल है। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान मुफ्त भोजन की व्यवस्था की जाती है और महिलाओं को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर तक पहुंचाने के लिए मुफ्त परिवहन यानी एम्बुलेंस की सुविधा मिलती है। बहनों, जननी सुरक्षा योजना ने भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवा के लिए महत्वपूर्ण लाभ और सकारात्मक परिणाम को साकार कर दिखाया है। बहनों, माँ हर कष्टों को सहकर बच्चे को जन्म देती है और बच्चे की मुस्कान के लिए हर दुख सहन कर लेती है। सच में माँ के जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। माँ हमारे जीवन में हमेशा खास होती है और कहते हैं ना कि अगर सिर पर हो माँ का हाथ तो इससे अच्छी क्या हो बात।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों, कार्यक्रम में अब वक्त है ब्यूटी टिप्स का। अपनी त्वचा को फ्रेश और ग्लोइंग बनाने के लिए 1 कप गुलाबी मसूर की दाल लें। आप इसे पीस लें। इसमें 2 चम्मच मुलेठी पाउडर, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर, 1 चम्मच चावल का आटा और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर इसे रख लें। जब भी लगाना हो तो आप इसका 1 चम्मच लीजिए। इसमें दही और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिलाकर अच्छे से पेस्ट बना लें। आप इसे अपने चेहरे पे, गर्दन पे लगाएं और 15-20 मिनट लगाने के बाद इसे धो लें। इससे आपके

0: रैपिड स्किन निकल जाएगी और आपकी स्किन स्मूथ और फेयर होगी। तो बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अब मुझे कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: शो तो महिला जगत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अब आप समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमरीका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी।

0: आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। यह मुकाबला जापान के काकामेगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कार्यालयों और विभागों में संबद्ध सभी शिक्षा कर्मियों की संबद्धता समाप्त करने के निर्देश दिए। शासन ने पुलिस विभाग में फेरबदल करते हुए 9 पुलिस महानिरीक्षक समेत कुल 13 आईपीएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया। भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए में 13 जून को होने वाली पासिंग आउट परेड के लिए देहरादून पुलिस ने विशेष यातायात डायवर्जन प्लान जारी किया। और उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी के 196 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला और अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों, कार्यालयों और विभागों में संबद्ध सभी शिक्षक कर्मियों को वापस अपने विद्यालयों में भेजा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को 30 जून तक सभी प्रकार की संबद्धता समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दूसरे कार्यालयों में तैनात शिक्षणेतर कर्मचारियों के संबद्धीकरण आदेश भी निरस्त करने के निर्देश दिए। श्री रावत ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में अधिकारियों को शिक्षकों की संबद्धता तत्काल समाप्त कर उन्हें विद्यालयों में भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 30 जून तक जो शिक्षक अपने मूल तैनाती स्थल पर नहीं लौटेंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डॉ. रावत ने कहा कि अधिकांश संबद्धता केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए थी, लेकिन कई शिक्षक एवं कर्मचारी वर्षों से अपने मूल विद्यालयों से दूर कार्यरत हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को शिक्षणेतर कार्मिकों के सभी संबद्धीकरण आदेश भी तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न स्थानों पर वन विभाग और 130 इको टास्क फोर्स के संयुक्त तत्वावधान में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत जिले के एक निजी स्कूल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का विषय नहीं बल्कि हर नागरिक की सतत जिम्मेदारी है। उन्होंने छात्रों से अधिक पौधारोपण, जल संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण कम करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के तहत पौधारोपण कर हरित और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया। वहीं जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैलियां निकाली और स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाया। कार्यक्रम में जैव विविधता, वन एवं जल संरक्षण और सतत विकास पर भी जानकारी दी गई।
3: के अंतर्गत कई जगहों पे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सभी से यही कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, साथ ही साथ प्लास्टिक से भी दूर रहना चाहिए, तो इसका भी संदेश है वो प्रसारित किया जा रहा है और सबको मिलकर काम किया जाना चाहिए, सब करना चाहिए और आसपास अपना जो एनवायरनमेंट है उसमें स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, तो यही संदेश दिया जा रहा है। इसी के क्रम में जनपद मुख्यालय में भी कार्यक्रम जो है फॉरेस्ट के द्वारा, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा और इको टास्क फोर्स जो कार्यरत है पिथौरागढ़ में उनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें मेरे द्वारा भी प्रतिभाग किया।
2: वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर नैनीताल प्राणी उद्यान में पौधारोपण, भाषण तथा नृत्य नाटिका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित एक कंपनी के स्टोर में भीषण आग लगने से स्टोर में मौजूद 2 कर्मचारियों की जलकर मृत्यु हो गई। देर रात तक मौके पर दमकल और पुलिस फोर्स तैनात रही। जानकारी के अनुसार कल देर रात करीब 11:30 बजे स्टोर में आग लग गई। इसके बाद पास ही सटे एक अन्य स्टोर के कर्मचारियों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर दमकल के साथ ही एसपी सिटी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाई गई। आग से वहां सो रहे 2 कर्मचारियों की जलकर और दम घुटने से मृत्यु हो गई। शासन ने पुलिस विभाग में फेरबदल करते हुए 9 पुलिस महानिरीक्षक समेत कुल 13 आईपीएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया है, जबकि 5 पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आईपीएस निवेदिता कुकरेती को कुमाऊं रेंज का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। आईपीएस जितेंद्र चौधरी को देहरादून का यातायात पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

0: है। वहीं कुमाऊं की आईजी रिद्धि अग्रवाल को आईजी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। आईजी विम्मी को पुलिस दूरसंचार व फायर सर्विस का प्रभार दिया गया है। आईजी कृष्ण कुमार वीके आईजी यातायात व जीआरपी बनाया गया है। वहीं पुलिस महानिरीक्षक अनंत शंकर ताकवाले को आईजी प्रशिक्षण के साथ साथ आईजी सीआईडी बनाया गया है।
1: आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए में 13 जून को आयोजित होने वाली पासिंग आउट परेड को देखते हुए देहरादून पुलिस ने 6, 9 और 11 जून के लिए विशेष यातायात डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। परेड के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। एसपी ट्रैफिक के अनुसार 6 जून और 9 जून को सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और 11 जून को सुबह 5 बजे से 11:30 तक डायवर्जन प्लान लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि परेड के दौरान आईएमए क्षेत्र को जीरो जोन घोषित किया जाएगा। किसी भी प्रकार के सामान्य यातायात को आईएमए की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। बल्लूपुर से प्रेमनगर जाने वाले वाहनों को रांगड़वाला तिराहे से मिट्टीबेरी मार्ग होते हुए भेजा जाएगा। वहीं प्रेमनगर से शहर की ओर आने वाले वाहनों को दरू चौक, मिट्टीबेरी और शिमला बाईपास के रास्ते निरंजनपुर मंडी होते हुए शहर की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। सेलाकुई और भाऊवाला क्षेत्र से आने वाले सभी भारी वाहनों को धूलकोट तिराहे से सिंगनीवाला और नया गांव मार्ग के जरिए शहर की ओर भेजा जाएगा। इसके अलावा देहरादून से विकासनगर जाने वाले भारी वाहनों को शिमला बाईपास से डाइवर्ट कर धर्मावाला मार्ग की ओर रवाना किया जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग देहरादून के मुताबिक 7 जून तक प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
2: के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा मिल सकती है। 7 तारीख से एक्टिविटी कम होने की संभावना है, तो 7, 8, 9 में जो है उत्तराखंड में रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, यहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की और इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम वर्षा भी मिल सकती है। तो जैसे मेन एक्टिविटी आज है 5 तारीख, तो इसके लिए जो है चेतावनी भी जारी की गई है, जिसमें जो उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी या नैनीताल या फिर पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही इन जनपदों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है।
0: आगामी मॉनसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं एवं आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यानी यूकाडा ने महत्वपूर्ण पहल की है। प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए संचालित प्रत्येक हेली कंपनी द्वारा यूकाडा को 10-10 घंटे के निःशुल्क फ्लाइंग आवर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनका उपयोग आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव कार्यों में किया जा रहा है। वर्तमान में चारधाम यात्रा में संचालित 8 हेली कंपनियों द्वारा कुल 80 घंटे के निशुल्क फ्लाइंग आवर उपलब्ध कराए गए हैं। इन घंटों का उपयोग मेडिकल इमरजेंसी, एयर रेस्क्यू तथा दुर्गम क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी के 196 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों के लिए 12 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। बोर्ड की ओर से जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार नर्सिंग अधिकारी के कुल 196 पदों में अनुसूचित जाति के 21, अनुसूचित जनजाति के 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के 11, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 7 और सामान्य वर्ग के 153 पदों पर भर्ती होगी। सेवा चयन बोर्ड स्वास्थ्य विभाग ने आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो 2 जुलाई निर्धारित की है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सोलर प्रोजेक्ट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए टैरिफ आदेश जारी कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद की पीठ ने बाजार के उतार चढ़ाव और हितधारकों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया है। अब वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी पिछले वर्ष की दर यानी 4 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट का लाभ मिलता रहेगा। वहीं आयोग ने कहा कि एमएसएमई नीति के तहत मिलने वाली सब्सिडी को सोलर टैरिफ से नहीं घटाया जाएगा। यह लाभ सीधे तौर पर प्रोजेक्ट लगाने वाले युवाओं और उद्यमियों को ही मिलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कार्यालयों और विभागों में संबद्ध सभी शिक्षक कर्मियों की संबद्धता समाप्त करने के निर्देश दिए। शासन ने पुलिस विभाग में फेरबदल करते हुए 9 पुलिस महानिरीक्षक समेत कुल 13 आईपीएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया। भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए में 13 जून को होने वाली पासिंग आउट परेड के लिए देहरादून पुलिस ने विशेष यातायात डायवर्जन प्लान जारी किया। और उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी के 196 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.5 MHz भी हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। तो श्रोता, फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की खूबसूरत आवाज में फिल्म सत्यमेव जयते से। गीत है मनोज मुंतशिर का और संगीत निर्देशन है रोचक कोहली का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। आई श्रोताओं, गीतों के क्रम को और आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत अमिता भट्टाचार्य की खूबसूरत आवाज में, फिल्म लुटेरा से। संगीत निर्देशन है अमित त्रिवेदी का।

FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आई श्रोताओं, हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। सोहम चक्रवर्ती की खूबसूरत आवाज़ में फिल्म लाइफ इन मेट्रो से गीत है सईद कादरी का और धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे FM 100.5 MHz पे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति।
1: आकाशवाणी समाचार देहरादून के उत्तराखंड विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं जयवीर सिंह। देश में विकास, सुशासन और जनकल्याण को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA सरकार ने अपने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में देश ने आधारभूत संरचना, डिजिटल सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच रहा है और विकास की मुख्यधारा में अंतिम व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते वर्षों में उत्तराखंड भी विकास की नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है। सीमांत और पर्वतीय राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड ने सड़क, रेल, हवाई संपर्क, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। चारधाम यात्रा से जुड़े बुनियादी ढांचे का विस्तार, ऑल वेदर रोड परियोजना, रेल और रोपवे परियोजनाओं का विकास तथा सीमांत क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के प्रयास राज्य की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी अनेक महत्वपूर्ण फैसले लेकर उत्तराखंड के विकास को नई दिशा देने का प्रयास किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। नकल विरोधी कानून लागू कर प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। निवेश को प्रोत्साहन देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने और युवाओं के लिए नई संभावनाएं तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के साथ साथ राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास, कृषि, बागवानी, स्वरोजगार और पलायन रोकने के लिए भी अनेक पहलें की हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, खेल सुविधाओं के विकास तथा आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने की दिशा में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आयोजित निवेश सम्मेलनों के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के बीच संतुलन स्थापित करते हुए राज्य को विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास निरंतर जारी है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा की मनीष बाजपेयी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। आइए सुनते हैं।
2: एक व्यक्ति कैसे व्यक्तित्व बन जाता है, कैसे कोई नेता समाज को नेतृत्व प्रदान करता है और समाज का विश्वास जीतता है, वो भी लगातार, कैसे एक राज्य के मुखिया होने के नाते जिम्मेदारी इकोलॉजी की भी है और जिम्मेदारी इकोनॉमी की भी है। इकोलॉजी को बचाते हुए इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है, कैसे राज्य का पर्यटन भी बढ़ाना है लेकिन राज्य में पर्यावरण का भी ख्याल करना है, और कैसे एक कमजोर राज्य से उसको मजबूत और देश का नंबर वन राज्य बनाना है। इन तमाम बाधाओं और चुनौतियों के बीच से होते हुए निकलते हुए अगर कोई शख्स राज्य को देश में शीर्ष राज्यों में लेकर आ रहा है, कोई व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, जो आज इस खास मुलाकात में हमारे साथ उपस्थित हैं। धामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।
2: बहुत एक संयोग कह सकते हैं, एक तरफ तो माननीय मोदी जी की सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम देखें तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, चार धाम की यात्रा चल रही है, इतने सारे संयोगों के बीच में हमारी आपकी आज ये भेंट हो रही है। तो ये जो आबो हवा है, जो वर्तमान की स्थितियां परिस्थितियां, खासतौर से मोदी जी के जो 12 साल पूरे हो रहे हैं देश का नेतृत्व संभालते हुए, आपकी क्या प्रतिक्रिया?
3: 2014

0: मैं आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और उस समय देश जो है बहुत बड़े निराशा के दौर में था। पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की जो छवि है वो एक दब्बू देश के रूप में, एक पिछलग्गू देश, ऐसा देश जो अपने हितों की बात भी वैश्विक मंचों पर नहीं कर
1: नहीं कर
0: पाता
1: पा
0: है,
1: रहा।
0: और निराशा का वातावरण था, चाहे वो आमजन हो, युवा हो, सभी में। उससे बाहर निकालने का काम, लोगों के अंदर एक उत्साह भरने का काम, ऊर्जा लाने का काम, ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम, और 12 वर्षों की जो अनवरत यात्रा है वो एक कर्मयोगी की साधना है। मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ये साधना है जो एक एक पल और एक एक क्षण उन्होंने देश के लिए लगाया है। और इतना परिश्रम, मैं समझता हूँ कि परिश्रम की पराकाष्ठा, उनके कामों को देखने के बाद, उनकी दिनचर्या को देखने के बाद,
1: जी,
0: कार्य व्यवहार को देखने के बाद, मतलब उसमें कहने के लिए कुछ नहीं बचता है।
1: आपके मन मस्तिष्क में कुछ ऐसी योजनाएं जरूर मुझे आप बताएं जिसको लगता है कि मनीष जी इन योजनाओं ने समाज में परिवर्तन का काम किया है, जमीनी स्तर पर, चाहे किसान को लेकर हो, चाहे गांव में किसी बेरोजगार युवा को लेकर हो, या जिसको रोजगार नहीं मिला तो उसने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप, ऐसी कुछ योजनाएं जिसने परिवर्तन किया हो
0: नहीं
1: उसके
0: देखिए,
1: बारे
0: ये
1: में
0: तो
1: बताएं।
0: मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपने पहले कार्यकाल से युवाओं को बहुत विशेष फोकस रखा, और स्किल डेवलपमेंट का जो मंत्रालय है वो पहली बार बना, 30,000 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान किया गया, युवाओं को एंटरप्रेन्योर्स के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, छोटे छोटे रोजगार, स्वरोजगार, इन सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया गया। क्योंकि देखिए, एक बात हमको बहुत माननी पड़ेगी, वो केवल उसको थोड़ा राजनीति से भी हटके अगर हम उस पर चर्चा करें तो बड़ा अच्छा होगा कि सरकारी नौकरियों का एक एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं, और सभी को मिलना संभव भी नहीं होता है। जिस प्रकार से परिदृश्य बदला है, लोग बड़ी संख्या में आज रोजगार से जुड़े हैं, स्वरोजगार से जुड़े हैं, जिनके पास अपने संसाधन नहीं थे, जिनके पास कैपेसिटी थी, स्किल था, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं थे, उनको सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का अवसर मिला। महिलाओं को हर तरह से आगे बढ़ने का अवसर मिला, चाहे आज मैं कहूँ कि जो सम्मान घर बनाए गए 12 करोड़ से अधिक, या लखपति दीदी योजना के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर में गैस पहुंची। और हमने देखा है, चूंकि मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ तो बहुत मुश्किल होता है, पहाड़ों में जंगल जाना, लकड़ी काट के लाना, फिर चूल्हा जलाना, बच्चों की भी देखभाल करना, घर में गाय भैंस है तो उनको भी देखना, परिवार चलाना, खेती बाड़ी का भी काम देखना, ये सब महिलाओं को बहुत चुनौती है। तो यहाँ पर उनका जीवन बहुत आसान हुआ उज्ज्वला योजना के माध्यम से। कुछ योजनाएं मैं जो आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने युवाओं की बात करी आपसे, मैं अब महिलाओं की बात कर रहा हूँ, तो इससे महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जो रेशियो था लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, वो
1: उसमें
0: उसमें बड़ा
1: भी
0: परिवर्तन आया। जो बेटी
1: राइट
0: बढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान शुरू हुआ, आज लखपति दीदी योजना इतनी शानदार तरीके से चल रही है, स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं और जो वोकल फॉर लोकल है, तो वो अपने आप में आज बड़ा परिवर्तन एक तरह से हो रही है। किसानों को हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, हर तरह से आगे बढ़ने का मिल रहा है, किसान सम्मान निधि के तहत उनका प्रोत्साहन हो रहा है और उनके काम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, अन्नदाता की, उसकी हमारे जीवन में, हमारे सरकार
1: भूमिका
0: की
1: रहती है
0: सोच में क्या उसकी महत्ता है।
1: निश्चित।
0: आखिर आखिर सरकारें तो बहुत पहले से रही हैं, देश आजादी के बाद से कई सरकारें आई, किसी सरकार ने सोचा। और गरीब के बारे में मैं कहूँ तो देखिए, एक आयुष्मान भारत योजना, इसको आसानी से हम कहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई, आयुष्मान भारत योजना लागू हो
1: इसके
0: गई,
1: पीछे श्रेय
0: लेकिन
1: किसे
0: अगर
1: जाता
0: आप
1: है?
0: इसके पीछे आप देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन इस आयुष्मान भारत योजना ने कराया है। मतलब 5 लाख रुपया एक तरह से उसके सुरक्षा की गारंटी है स्वास्थ्य की। और अस्पतालों में जो अपना
1: स्थिति
0: इलाज
1: है
0: करवाने जाते थे पहले, जब उनको अपनी जेब से पैसा देना पड़ता था या अपना उधार लेकर जाना पड़ता था, घर के जेवर गिरवी रख के जाने पड़ते थे, कर्ज जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, तब जाकर वो अपना इलाज कराता था, तो उसके मन में, उसके दिमाग में, उसके दिल में क्या गुजरती होगी उस समय।
1: ये सही है। आप जिस भावनात्मक अंदाज में बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं, वो चीज हम तक संप्रेषित हो रही है कि ये चीजें इमोशन से ज्यादा जुड़ी हुई।

0: हैं, चाहे वो बहनों की बात हो, किसानों की बात हो, सारी बातें हैं। लेकिन कहते ना, हम लोकतांत्रिक देश में हमारा पक्ष भी, हमारा विपक्ष भी है, और हमें विपक्ष की भी बात सुननी पड़ती है लोकतंत्र के चौथे प्रहरी होने के नाते। और मैं ये देख रहा हूं कि अभी वर्तमान समय में आप देखिए तो बहुत आलोचना के स्वर हैं हॉर्मुज संकट को लेकर। वो कह रहे हैं भाई विदेश नीति हमारी फेल हो गई, वो कह रहे हैं डॉलर, आप रुपए की स्थिति आप देखिए, तो इस तरह की महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, ये सारी चीजें चल रही हैं, इस पर कोई आपकी प्रतिक्रिया?
1: देश के अंदर कई बार बड़े बड़े चुनौतियां देश के सामने आई, और उस समय जो भी सरकार होती थी उस समय पक्ष विपक्ष नहीं होता था, उस समय राष्ट्र प्रथम होता था कि सबसे पहले मेरा देश है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद मैं हूं। अटल जी से लेकर अगर हम
0: हाँ, ये देश रहना चाहिए, सरकारें आती जाती रहेंगी उनके हमेशा,
1: चाहे वो युद्ध की स्थिति हो, कोई भी स्थिति देश के अंदर चुनौती की हो, तो सारे लोग सरकारों के साथ खड़े रहे। और अब विपक्ष ऐसा है, उनको खुद ही नहीं पता जी, उनकी गंभीरता नहीं है कब क्या बोल जाएंगे। मैं सैनिक प्रदेश में एक सैनिक का बेटा हूं मैं खुद। श्रीमान राहुल गांधी जी जब हमारी सेना पराक्रम करती है, शौर्य करती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों के जो उनके केंद्र हैं उन केंद्रों को नेस्तनाबूत करती है, वो सेना की खिल्ली उड़ाते हैं, सेना से सबूत मांगते हैं, उपहास उड़ाते हैं, विदेशों में जाकर भारत की गरिमा को गिराते हैं, वहां भी जो है मजाक बनाने का काम करते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? वैश्विक संकट है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया उसका सामना कर रही है, कि ये कोई एक देश की बात नहीं है, कि कोई भारत के द्वारा ये समस्या नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है या भारत की सरकार ने बनाई है।
0: मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब ये रुपए गिर रहा है तो आप इस समय विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? मतलब
1: देखिए, विपक्ष को चाहिए कि इस समय ये ऐसी क्षुद्र राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी उनकी इन्हीं राजनीति के कारण से देश की जनता लगातार उनको बार बार उनको देखे सही रास्ता दिखा रही है, बार बार उनको बता रही है कि आप गलत रास्ते पर है, क्योंकि जनता को अब वो भरमाने का समय चला गया। जब आप 6 दशकों तक आपने सरकार में रहकर यहाँ की हुकूमत को चलाया है और देखा है कि ये जो योजनाएं जो मैंने अभी आपके सामने जिनका जिक्र किया, ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये प्रश्न आम व्यक्ति का है, आम जनता का है, देश की जनता का है, कि आखिर ये सारे फैसले पहले भी तो हो सकते थे, या आयुष्मान भारत योजना पहले भी तो आ सकती थी, ये उज्ज्वला योजना पहले भी लग सकती थी, ये लखपति दीदी पहले भी आ सकती थी, ये स्टार्टअप का इकोसिस्टम भारत पहले भी बन सकता था, जो हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कारों से जुड़े हुए विषय हैं, वो पहले भी हो सकते थे। इच्छा शक्ति नहीं रही देश की, देश के अंदर जो लोगों ने इतने लंबे समय तक हुकूमत करी उनके अंदर इच्छा शक्ति का अभाव रहा, और उनके मन में था ही नहीं कि कुछ करना है, और ये उसी व्यक्ति के अंदर हो सकता है जिसने इन सब चीजों का सामना किया हो। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन सब गरीबी को देखा है, नजदीक से उसको जिया है, इसलिए उन्होंने सरकारों में आने के बाद सबसे पहले जो है इन कामों को प्राथमिकता दी और इन कामों को हल किया, जिससे कि आम व्यक्ति के जीवन में एक खुशहाली आए, परिवर्तन आए, उसको आगे बढ़ने का मौका मिले।
0: तो 12 साल के कार्यकाल को माननीय मोदी जी के 10 में से कितने नंबर देंगे आप?
1: अरे पूरे नंबर भाई, उससे भी ज्यादा नंबर होते तो वो भी मिलते उनको, वो मैं नहीं दे रहा, पूरे देश की जनता दे रही है। इसीलिए देखिए, आप जहां चुनाव हो रहे हैं लोग उनको जो है हर जगह जिता रहे हैं, हर जगह लोग समर्थन कर रहे हैं, और लोग मोदी जी को केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री के अलावा लोग कोई उनको अपना बेटा समझता है, कोई भाई समझता है, कोई परिवार का अभिभावक समझता है, हर तरीके से उनका कोई भाई समझता है अपना।
0: वैश्विक संकट के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे?
1: नहीं देखिए, ये वैश्विक संकट है, और चाहे वो मिडिल ईस्ट का हो या यूक्रेन रशिया का हो, उसके कारण से चुनौती पूरे विश्व भर के अंदर आई है, हमारी भी चुनौती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को जिस प्रकार के आह्वान किए हैं कि वे ईंधन बचाना है, लोगों को संयम से रहना है, और विदेशी मुद्रा हमारे भंडार खाली ना हो, हमें ज़्यादा चीज़ों को इम्पोर्ट न करना पड़े, और जो हमारे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, भारत में सब कुछ है, सालों तक हम इसका सामना कर सकते हैं, लेकिन हमारा जनजीवन नहीं रुक सकता है। इसलिए सब लोगों को देश प्रथम मानते हुए, और विपक्ष के लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे समय में जब देश के ऊपर कोई चुनौती हो तो सबको उस चुनौती का सामना करना चाहिए,
0: संकट के समय में हमें एक साथ रहना चाहिए, ये आप आह्वान कर रहे हैं और ये विपक्ष को आप कहना चाहते हैं। और अब हम बात करते हैं, चूंकि ये तो चर्चा हो रही है मोदी सरकार के 12 साल को लेकर चिंतन, लेकिन इस बात को लेकर भी चल रहा है कि उत्तराखंड सरकार को भी अब अगले वर्ष चुनाव में जाना है, 27 में चुनाव है, और जाहिर सी बात है चुनौतियां तो आपके भी समक्ष होंगी। क्या लगता है आपको, क्या चुनौती क्या लगती है 27 के चुनावों को लेकर, क्योंकि समय कम ही रह गया, अगर मशीनरी के हिसाब से देखो तो 6 महीने तो तैयारी में शुरू ही होने वाला है।
1: देखिए ऐसा है कि चुनाव जब भी आएगा अपने समय से आएगा, चुनाव होगा, 1 महीने आचार संहिता भी लगेगी, लेकिन हमारा प्रयास है कि अंतिम दिन तक, जिस दिन तक आचार संहिता नहीं लग जाती है, तो उस दिन तक हम पूरे प्राणोप्रण के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हाँ, चुनौतियां बहुत हैं हमारे यहाँ पर।
0: विपक्ष आपको बहुत घेरता रहता है, ये हम देखते हैं, कभी कानून व्यवस्था को लेकर घेरता है, कभी प्लान को लेकर घेरता है, मतलब आवाजें बहुत उठ रही हैं यहाँ पर आपके राज्य में, ये है बहुत बड़ा, ये मैं देख रहा हूँ, ऐसा क्यों?
1: हिमालय है, आप लोगों को यहाँ की आवाज जल्दी वहां नीचे आ जाती है। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने भरपूर आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हमेशा दिया है, और जितने भी चुनाव हुए हैं सभी चुनाव में भाजपा जीती है, क्योंकि हमने अनवरत रूप से विकास का संकल्प लिया है
0: जी।
1: चुनौतियां बहुत थी, चुनौतियां बहुत हैं, विकास बहुत हुआ है, विकास अभी बहुत कुछ होना है, बहुत होना है,
0: ये एक सतत प्रक्रिया है। तो
1: ये आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 सालों में उत्तराखंड राज्य ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां भी दर्ज की। मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड की जनता का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमने उनके सामने ये संकल्प रखा, आपने हमने वचन दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून यहाँ लागू करेंगे। और उत्तराखंड में एक परिपाटी थी मनीष जी, यहाँ पर क्या था कि हर चुनाव में सरकार बदल जाती थी, ये पहली बार ये परिपाटी टूटी, और एक मिथक भी था, लोगों को लगता ही नहीं था कि दोबारा सरकार आएगी। उत्तराखंड की जनता ने एक नया इतिहास बना दिया, और हमने भी इसमें कोई कोर कसर नहीं रखी, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो वचन दिया था वो हमने पूरा कर दिया। और उसी समय हमने कहा था कि ये गंगा, ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है वो देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है, आने वाले समय में सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा, और उसका राज मिलना शुरू हो गया। गुजरात में भी समान नागरिक संहिता लागू हो गई, वहाँ कानून बन गया। आसाम में हिमंता बिस्व शर्मा जी को और उनकी पूरे मंत्रिमंडल को, सहयोगियों को, सबको मैं बधाई देता हूँ कि वहाँ भी समान नागरिक संहिता का कानून पास हो गया है, जल्दी ही वहाँ भी जो है यथार्थवत हो जाएगा। अन्य देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
0: ये चीजें सामने आती रहती हैं कि भाई पलायन को लेकर एक लंबे अरसे से चला है, आपने जो भी योजनाएं चलाई, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार ने पलायन को रोकने के लिए जो भी कार्यक्रम बनाए, जो भी योजनाएं बनाई, उनका जमीनी धरातल पे कितना असर आपको दिखा है, और आपको लगता है कि नहीं मनीष जी अभी कुछ कमियां बाकी हो सकती है, हमें और करना है?
1: बहुत बड़ी संख्या में रिवर्स पलायन हो गया है इन सालों में, और पिछले 4 सालों में 23 करोड़ पर्यटक, श्रद्धालु, यात्री उत्तराखंड में आए हैं, और हजारों हजार की संख्या में आज होम स्टे हमारे, जहां पर 50-60 की संख्या में जो है होम स्टे होते थे, एकदम से उसकी संख्या 550 से ऊपर पहुंच गई है, इतने रजिस्टर्ड हो गए हैं। छोटा क्षेत्र है पुरोला के पास साकरी, अभी दिसंबर माह में मैं वहां गया था, एक दिन में 2500 पर्यटक उस छोटे से गांव में थे। आदि कैलाश में प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद प्रत्येक दिन 1 से 1.5 हजार लोग आदि कैलाश पहुंच रहे हैं, हाँ, हाई एल्टीट्यूड में, और न्यू लिपु लेक से कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर रहे हैं, वहां से शानदार चित्र वहां से दिखाई दे रहा है। हेमकुंड साहब यात्रा चल रही है, पहले दिन ही 7 हजार लोगों ने हेमकुंड साहब के दर्शन किए हैं। चार धाम में 25 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो गया है एक महीने में, ये आस्था और सनातन का विश्वास है लोगों में।
0: लेकिन चुनौतियां भी बढ़ रही होंगी सर?
1: चुनौतियां हैं बहुत ज्यादा संख्या में, जब लोग आ जाते हैं तो ट्रैफिक व्यवस्थित करना है, चूंकि धामों की अपनी एक कैपेसिटी है, उनके सबके दर्शन हो जाएं, इतनी दूर से आते हैं लोग, और आपको और हमें यहाँ बैठकर उस बात का एहसास तब तक नहीं होगा जब तक हम पद यात्री के रूप में जब हम दर्शन करने जाएंगे, तब हमें एहसास होगा कि यात्रा वास्तव में कितने भौगोलिक कठिन क्षेत्र में ये यात्रा होती है। तो इसलिए उनको दर्शन हो, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है।
0: आपने कहा कि हिमालय से आवाज नीचे बहुत जल्दी पहुंच जाती है, तो हम उसकी आवाज की कुछ अंतरध्वनियां हैं, कुछ उनकी प्रतिध्वनियां हैं जो कि मेरे कान में है, तो मैं सोच रहा हूं कि इसको मैं निकालूं तो मैं थोड़ा सा हल्का हो जाऊं। भाई आप बहुत वो कहते हैं भाई बहुत ये सरकार बहुत पक्षपात करती, बहुत कहते हैं चयनित होकर अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो इनका हटाया जा रहा है, इनका नहीं हटाया जा रहा, ऐसा किया जा रहा वैसा नहीं किया, इसको लेकर कई आवाजें यहाँ पे भी हैं।

0: क्या ये सही है? और जब इसको हटाया जाता है तो ये क्या किसी वर्ग विशेष को टारगेट करना जैसा है?
1: नहीं, मैं ये कहूंगा नहीं। हाँ, बिल्कुल सीधी बात है।
0: और यहां पर देखिए, उत्तराखंड में ऐसी कोई बात नहीं है, यहां पर सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत मेलजोल से रहते हैं, बड़े प्रेम प्यार के साथ रहते हैं, बहुत लोगों में आपस में संबंध है, और हमारा बड़ा शांत प्रदेश है, यहाँ पर इस प्रकार की चीज नहीं है। लेकिन देवभूमि का देवत्व तो बचा रहना चाहिए, देवभूमि के अंदर अवैध कब्जे नहीं होने चाहिए, देवभूमि के अंदर लैंड जिहाद नहीं होना चाहिए, देवभूमि में लव जिहाद नहीं होना चाहिए, थूक जिहाद नहीं चलना चाहिए, और यहाँ का मूल अस्तित्व
1: वो बना रहना
0: वो
1: चाहिए,
0: बना रहना चाहिए।
1: वो
0: पूरे
1: परंपराएं,
0: पूरे
1: वो आस्थाएं, वो
0: पूरे देश और
1: मान्यताएं।
0: दुनिया के लोग देवभूमि के प्रति एक आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं,
1: जी
0: उसका नुकसान ना हो, ये
1: बिल्कुल सही
0: हमारा
1: कह रहे
0: मेरा
1: हैं।
0: संकल्प
1: ये
0: है,
1: सभी का
0: मेरा
1: उत्तरदायित्व, हर एक
0: संकल्प है
1: नागरिक
0: और
1: का भी
0: मेरा नहीं,
1: उत्तरदायित्व है ये
0: हर एक का
1: कि
0: संकल्प है।
1: हरेक, अगर आप अपनी सरकार को स्वयं को ही नंबर देना हो, मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जानता मैं अच्छा हूं बुरा हूं कहता हूं, ऐसे आप भी अगर आप स्वयं को नंबर देना चाहें अपनी सरकार के बारे में, तो आप क्या कहेंगे?
0: मेरे मन में 1% की भी कहीं पर इस बात की न्यूनता नहीं है, संकोच नहीं है, संकुचन नहीं है कि मैं जो काम कर सकता था मैंने वो काम नहीं किया है। अब नंबर आप दे दीजिए।
1: आपकी अंतरात्मा ये कह रही कि हमें जो करना चाहिए था वो हमने किया, और हम जो कर सकते थे वो हमने किया,
0: हमने एक पल भी रुके बिना, एक क्षण भी रुके बिना अनवरत रूप
1: तो
0: से जो
1: नंबर तो
0: राज्य के
1: 100% है।
0: अनवरत रूप से राज्य के लिए काम किया है, और उत्तराखंड की जनता को दिखता है सामने, उनको महसूस होता है, वो देखते हैं कि चाहे कोई आपदा का समय हो, कोई क्राइसिस हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, हमेशा हम उनके साथ खड़े रहे हैं, और उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, सभी उत्तराखंड वासियों का संकल्प है। SDG इंडेक्स में आज जो है हमारा पूरे देश में पहला स्थान आता है, पूरे देश में, हिमालयी राज्यों में नहीं, पूरे देश के अंदर उस इंडेक्स में हमारा पहला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में है, हमारा प्रिपेयर्डनेस जो तैयारी है वो एक्सपोर्ट की, उसमें हमारा पहला स्थान है, फिल्म के क्षेत्र में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का हमको
1: अब
0: पुरस्कार
1: बहुत सारी
0: मिला है,
1: फिल्में, हाँ, आ रही हैं शो
0: पर्यटन
1: को
0: के
1: लेकर।
0: क्षेत्र में हमको पुरस्कार मिला है।
1: जब मैं सोचता हूँ ये सारी बातें, तो मैं ये सोचता हूँ जब आप कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि भाई इस क्षेत्र को बढ़ाना भी है, डेवलपमेंट भी करना, और वहीं पर कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान भी पहुंच रहा होता होगा, कहीं ना कहीं वनों को नुकसान पहुंच रहा होता, जब आप डेवलपमेंट के कार्य कर रहे हैं, जब आपका ऑल वेदर रोड चल रही बहुत सारी, तो कैसे रिएक्शन रहता है, कैसे आप तय करते हैं भाई साहब ये चीज ठीक है या ये चीज ठीक है, एक पैमाना क्या रहता है आपका?
0: नहीं देखिए, एक इसके लिए हमारा मॉडल है इकोलॉजी और इकोनॉमी, और साथ में टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी इकोनॉमी में बैलेंस हो, साथ में टेक्नोलॉजी भी जुड़े, इसका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के, अच्छा बैलेंस बना के, समन्वय बना के हम विकास योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारी विरासत भी बची रहे और विकास भी आगे बढ़े।
1: चार धाम यात्रा को एक भारत श्रेष्ठ भारत से आप कैसे जोड़ेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ये भावना है, दूरदर्शी कार्यक्रम जो है?
0: चार धाम यात्रा तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की श्रेष्ठ प्रस्तुति है, श्रद्धा का संगम है, यहाँ पर आस्था का संगम है, सनातन का संगम है, यहाँ पर केरल से भी दर्शनार्थी पहुँचते हैं, श्रद्धालु पहुँचते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बद्रीनाथ धाम के जो रावल होते हैं वो वहीं से आते हैं, हमेशा वो उन्हीं के उसमें पूजा अर्चना सारा विधि विधान चलता है, और देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ से लोग चार धाम ना आते हों।
1: केदारनाथ धाम पे जो सरकार की तरफ जो कार्य किए गए हैं, खासतौर से हम रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में आपसे जरूर जानना चाहेंगे।
0: जितने भी दुनिया के अंदर रोपवे प्रोजेक्ट होंगे उनमें सबसे कठिन रोपवे प्रोजेक्ट एक केदारनाथ धाम का और हेमकुंड साहब का होगा, इतनी कठिन टेरेन पर जो चलेगा, तो उस पर काम चल रहा है, उसके लिए धनराशि भारत सरकार ने स्वीकृत कर दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके शिलान्यास हो गए, तो जल्दी ही बनेंगे, तो केदारनाथ जाने वाले लोगों को, हेमकुंड साहब जाने वालों को बहुत सुविधा होगी।
1: चलिए, बहुत आपको बहुत शुभकामनाएं इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए। अंत में जो आपको देख रहे हैं, जो आपका इंतजार कर रहे हैं कि अगले चुनाव में आप फिर आएं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
0: नहीं, मैं यही कहूँगा कि देवभूमि उत्तराखंड है, और यहाँ से देवभूमि उत्तराखंड से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत लगाव है, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद आज लगभग 3 लाख करोड़ की योजनाएं राज्य के अंदर
1: संचालित
0: संचालित हो रही हैं, अलग अलग विभागों में, अलग अलग क्षेत्रों में हेली सेवाएं अच्छी हुई हैं, हमारी हवाई सेवाएं अच्छी हुई हैं, रेल सेवा अच्छी हुई है, रेलवे स्टेशन उनके नवीनीकरण सुधारीकरण, नई ट्रेनों का संचालन हुआ है, रोपवे बने हैं, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी बनी हैं, एक एम्स हमारा ऋषिकेश में संचालित है, दूसरा एम्स हमारा किच्छा में इसी साल वो भी प्रारंभ होने वाला है, खुरपिया में स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बनने जा रही है, उसका भी शिलान्यास हो चुका है, लोकार वो काम उसका आगे बढ़ गया है, पंत

0: अगर हवाई अड्डा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन रहा है, हमारी दो हवाई पट्टियां हैं चिन्यालीसौड़ और गौचर, उसको भी भविष्य में हम छोटे प्लेन वहां भी संचालित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पिथौरागढ़ की हवाई सेवा शुरू हुई है। सीमांत से सीमांत क्षेत्रों में आज जो है हमने शीतकाल में भी लोगों को पूरे 12 महीने उनका काम चलता रहे, पर्यटन मिले, लोग आए, कारोबार हो, होटल चलें, ढाबे चलें, गाड़ियां चलें, टैक्सियां चलें, उन सब पर अनवरत रूप से काम किया है। और हिंदुस्तान का ये श्रेष्ठ राज्य बनने की सभी संभावनाएं हमारे अंदर हैं। तो मैदानी क्षेत्र हमारा है जहाँ पर हम बड़े उद्योग भी स्थापित कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ की अभी हमने जो इन्वेस्टर ग्लोबल सबमिट किया था उसमें जो है उसकी 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग पर काम प्रारंभ हो गया है। 32,000 से ज़्यादा युवाओं को हमने अभी तक सरकारी नौकरियाँ यहाँ
1: दे
0: पर, हाँ मतलब उनको सफलता प्राप्त हुई है पारदर्शिता के आधार पर, बिल्कुल निष्पक्षता के आधार पर, बिना किसी भ्रष्टाचार के। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर मिली है। तो ये बहुत सारे काम बढ़ाए हैं। मैं इसको बोलूंगा तो मनीष जी बहुत समय लग
1: नहीं, वो तो
0: जाएगा।
1: मैं भी समझ रहा हूँ। समय वो तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो तो जितना आप कहें।
0: केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा भाव क्या है, और बाहर कुछ हो अंदर कुछ हो ऐसा नहीं है जो हम
1: नहीं,
0: कह
1: ये
0: रहे
1: मैं
0: हैं।
1: देख भी पा रहा हूँ, ये मुझे महसूस, जिस तरीके से आपके मुखारविंद से जो निकल रहे हैं शब्द उच्चारित हो रहे हैं, वो यूं ही बस आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, उसमें कोई दिमाग नहीं लगा रहे हैं आप, बस खाली बोलते चले जा रहे हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है।
0: घंटों की
1: सामने
0: चर्चा भी करेंगे तो उसमें समय
1: कम
0: कम
1: पड़ जाएगा,
0: पड़ेगा।
1: बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें समय दिया और निश्चित तौर पर अपने व्यस्त समय में हमें थोड़ा समय दिया, हमें कृतार्थ किया। और मेरी ये तमाम शुभकामनाएं कि जिस इच्छा से, जिस भाव से, जिस परमात्मा को आत्मसात करके आप जो कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है आप उसको सफल करें, सफलता प्राप्त करें, ऐसी तमाम शुभकामनाएं।
0: नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्री, बहुत धन्यवाद आपका।
1: तो फिलहाल खास मुलाकात में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी ने अपनी बातों को बहुत सहजता से रखा, सरलता से रखा। और जब मैं बात कर रहा तो उनके साथ, तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति से बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगा एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व्यक्ति से बात कर रहा हूं, जो शासन के शीर्ष पर बैठा हुआ बागडोर संभाले जरूर है, लेकिन उसके चित्त में, उसके मन में, उसके हृदय में कहीं ना कहीं परमात्मा का वह स्वरूप है, जिसके आधार पर, जिसकी प्रेरणा स्वरूप वो यहां पर कार्य कर रहा है और इस राज्य को नेतृत्व प्रदान कर रहा है। मुलाकातें होती रहेंगी, बात होती रहेगी। फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति। FM 100.5 MHz पे ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: एफ एम 100.5 मेगाहर्ट्ज पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Sai.

0: One, the release of frozen Iranian assets is a test that America must pass and the path will be opened. Mauritius has imposed a temporary entry ban on foreign nationals who have travelled to, transited through, or stayed in Congo, Uganda, or South Sudan over the past 21 days following the latest outbreak of the Ebola virus. Mauritian citizens and foreign residents holding valid work, residence, occupation, business, or student permits will still be allowed to enter the country but will be subject to a mandatory 21-day quarantine if they have visited any of the three countries within the previous 3 weeks. India Meteorological Department or IMD has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Keralam and Mahi till tomorrow. Very heavy to heavy rainfall conditions are also expected over parts of northeast India, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. The weather agency predicted thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, East UP, Madhya Pradesh, Jharkhand and Jammu and Kashmir today. The Met Department further said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, remaining parts of Goa, Tamil Nadu, southwest Bay of Bengal and parts of northeastern states during the next 2 to 3 days. The weather has remained clear across most parts of Himachal Pradesh today, bringing relief to people. After the recent spell of hot weather, the pleasant change in weather has significantly eased daily life. A report.
1: In Himachal Pradesh, light snowfall was recorded yesterday at Rohtang and Kunjam passes in the tribal district of Lahul Spiti, while some areas also witnessed light rainfall. This change has made the weather pleasant, attracting a large number of tourists to various destinations across the state to enjoy the scenic conditions. Meanwhile, the Meteorological Department has issued a yellow alert for today for the districts of Chamba, Kangra and Kullu, warning of possible thunderstorms, hailstorms, rainfall and lightning. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: The Board of Control for Cricket in India, BCCI, today announced Team India's 16-member T20 international squad for the tours of England and Ireland. Shreyas Iyer has been appointed as India's new T20I captain, replacing Surya Kumar Yadav. Moreover, Tilak Verma has been named as vice-captain. BCCI has also included young sensation Vaibhav Suryavanshi in the squad for the first time, following his great IPL 2026 season scoring highest runs. Prince Yadav has also been added to the squad. The team was announced after a meeting of Team India's Men's Selection Committee led by Chief Selector Ajit Agarkar and BCCI Secretary Devajit Sekhia for deciding the squad for the tours of Ireland and England and the Asian Games in Japan, as well as India A's tour of Sri Lanka multi-day games at the BCCI headquarters in Mumbai today. India will face Bangladesh in the final of the SAF Football Women's Championship at Madgaon, Goa today. The match will be held at 6:30 p.m. Earlier, India secured its place in the final by defeating Bhutan 1-0 in the semi-finals. India has won this title 5 times so far. In hockey, India will face host Japan in the final of the Men's Under-18 Asia Cup 2026 in Takamigahara in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. Earlier, India beat its arch rival Pakistan 5-3 in the second semi-final in a high-scoring contest. An Indian benchmark indices extended their losing streak into the second consecutive week, weighed down by persistent global headwinds. The Reserve Bank of India's supportive liquidity measures and currency stability initiatives provided some support to market sentiment, but a downward revision in growth projections dampened investor confidence. During the week, the 30 share Sensex at BSE lost 533 points to close at 74,243. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi holds meeting with his Economic Advisory Council to further boost India's economic growth. RBI simplifies rules for FPIs in government securities to make investment in India easier. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur Fazilka Road this morning. IMD issues red alert for heavy rainfall over Keralam and Mahi till tomorrow. And in cricket, Shreyas Iyer replaces Surya Kumar Yadav as India's new T20I captain, Vaibhav Suryavanshi included in squad for first time. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
4: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
5: With Nepal, we have an expansive agenda.
6: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है. इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं. इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी. हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं.
5: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल.
2: भारत के तीन दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल से मुलाकात की. भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है. इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है. सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे. इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी. सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है. पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए. सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया. दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है. इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए. इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था. जांच जारी है. संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है. श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है. कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी. श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं. रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की.
7: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे. नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी. वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा.
2: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे. स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए. श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं. ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जलटमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
8: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
9: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
2: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। भारत हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
1: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरत ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.0।

जय हिंद सैनिक साथियों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सैनिकों के लिए में। ना इंतज़ार करो इनका ए आज़ादारो, ना इंतज़ार करा इनका ए आज़ादारो, शहीद जाते हैं जन्नत को घर नहीं जाते। जी हां साथियों, भारत की धरती वीरों की धरती है। इस देश ने ऐसे अनेक सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने साहस, पराक्रम और बलिदान से इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर अपना नाम अंकित किया। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मांगेश सिंह की, जिनकी वीरता आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पे। साथियों, सूबेदार मांगे सिंह उन वीर सैनिकों में शामिल थे जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बगैर कर्तव्य का पालन किया। नायब सूबेदार मांगे सिंह का जन्म 3 अक्टूबर 1958 को राजस्थान के नागौर जिले के हरनावा गाँव में हुआ था। ये 8 नवंबर 1977 को भारतीय सेना में शामिल हुए और भारतीय सेना के 11वीं बटालियन राजपूताना राइफल्स के एक जांबाज सैनिक बने। कारगिल युद्ध के दौरान 6 जून 1999 को तुरतुक सेक्टर में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए इन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।

नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है माँ, मुझे नाचना जरूर है माँ, मेरी देखेगी नाचना जरूर है।

FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है सैनिकों के लिए। साथियों, आज हम याद कर रहे हैं मांगे सिंह को। 6 जून 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान नायब सूबेदार मांगे सिंह उस गश्ती का दल का हिस्सा थे जिसे तुरतुक सेक्टर के पॉइंट 5590 पर मोर्चा स्थापित करने का काम सौंपा गया था। उन्हें गोलाबारी सहायता के लिए मीडियम मशीन गन टुकड़ी की कमान दी गई थी। जब गश्ती दल अपने लक्ष्य से केवल 50 मीटर दूर था, तब पाकिस्तानी सैनिकों ने भारी स्वचालित गोलीबारी शुरू कर दी। सूबेदार मांगे सिंह ने बिना किसी सुरक्षा आड़ के खुले में डटकर मीडियम मशीन गन संभाली और फायर एंड मूव रणनीति अपनाते हुए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया।

साथियों, इस भीषण गोलीबारी में उनके सीने में गोलियां लग गई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने व्यक्तिगत सुरक्षा की कोई परवाह नहीं की। जब तक उनके साथी सुरक्षित पीछे नहीं हट गए, तब तक वे लगातार दुश्मन पर गोलियां बरसाते रहे और आखिर में राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हो गए। और उनकी इस अदम्य बहादुरी, कर्तव्यनिष्ठा और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया।

FM 100.5 MHz पे यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है सैनिकों के लिए, और श्रोताओं आज हम याद कर रहे हैं सूबेदार मांगे सिंह को। साथियों, जब देश की सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा था, तब सूबेदार मांगे सिंह ने अपने साथियों के साथ मोर्चा संभाला। दुश्मन की भारी गोलीबारी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़कर मुकाबला किया। उनके साहस और नेतृत्व ने न केवल उनके साथियों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि दुश्मन को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सूबेदार मांगे सिंह का जीवन हमें ये सिखाता है कि देश सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। सेना में रहते हुए उन्होंने हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया, और युद्ध के कठिन हालातों में भी उन्होंने असाधारण वीरता का परिचय दिया। तो आइए हम सभी उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।

जुबा पर भारत माँ का नाम और दिल में हिंदुस्तान है, सरहद पर तैनात हर एक फौजी को मेरा सलाम है। तो सैनिक साथियों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम सैनिकों के लिए अब रेशमा को दीजिएगा अनुमति। जय हिंद।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। आइए अब आपको सुनवाते हैं देशगान।

श्रोताओं, देशगान अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्मी गीतों पर आधारित गाने नए तराने। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म वेलकम से। ये एक बेहद लोकप्रिय गीत है। इस बेहतरीन गाने को आनंद राज आनंद और श्वेता पंडित ने अपनी आवाज दी है और इसका संगीत भी आनंद राज आनंद ने ही तैयार किया है। तो सुनिए ये गीत और जुड़े रहिए हमारे साथ।

श्रोता बाबुल सुप्रियो और श्रेया घोषाल की मधुर आवाज को आप सुन रहे थे फिल्म विवाह से। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। FM 100.5 MHz पे आप सुन रहे हैं फिल्मी गीत गाने नए तराने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म ड्रीम गर्ल से आवाज है मीत ब्रोज नक्श अजीज और जोनिता गांधी की।

श्रोतों, ऐशकिंग और सुनिधि चौहान की खूबसूरत आवाज़ को आप सुन रहे थे फिल्म दम मारो दम से। FM 100.5 MHz पे आप सुन रहे हैं फिल्मी गीत गाने नई तरहानी। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में फिल्म वॉर से।

श्रुतों के और पलक मुछल के मधुर स्वर को आप सुन रहे थे फिल्म एक था टाइगर से। फिल्मी गीत गाने नए तराने प्रसारित किया जा रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। आई श्रोतों, आपको सुनवाते हैं मस्ती खुशी और बेफिक्र अंदाज से भरा कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म रॉय से। आवाज़ है कनिका कपूर और मीत ब्रोज और साथी की, तो सुनिए ये गीत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: श्रोताओं, सचिन जिगर के संगीत निर्देशन में यह गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो से। गीतबद्ध था प्रिया सराय का और आवाज़ थी शिल्पा राव और साकेत टंडन की। FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से, आवाज़ है सोनू निगम की।

श्रोताओं, फिल्म संगीत गाने नए तराने प्रसारित किए जा रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। श्रोताओं, ये गीत प्यार, अपनापन और जीवन की मधुर भावनाओं को खूबसूरती से व्यक्त करता है। गीत लिखा है समीर ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम सिर्फ तुम और आवाज़ है उदित नारायण की। तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ गाने नए तराने फिल्मी गीत अब यहीं पर संपन्न हुआ।

0: श्रोताओं, फिल्मी गीत गाने नए तराने आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। आइए अब सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप अखिलेश चंद्र गैरोला से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त दो दिवसीय भ्रमण पर मुनस्यारी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन लॉन्च किया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हुई। ग्राम्य विकास पंचायती राज मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग में एक पेड़ गुरु के नाम अभियान का शुभारंभ किया। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कंडोलिया में इंडोर स्टेडियम एवं खेल कार्यालय का निरीक्षण कर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। भारतीय सैन्य अकादमी IMA के आर्मी कैडेट कॉलेज ACC विंग के ए

0: इसी 126 कोर्स के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर चमोली जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को योग दिवस के प्रति जागरूक किया जा रहा। चंपावत के लोहाघाट में महिला स्वयं सहायता समूह ने छात्र छात्राओं के पढ़ने के लिए सुरक्षित और बेहतर माहौल तैयार करने के लिए वान्या लाइब्रेरी स्थापित की। 7 जून से 28 जून तक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में नंदा देवी दशकीय जैव निगरानी अभियान का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी पौड़ी ने जिला मुख्यालय में नवांकुर नाट्य समूह द्वारा आयोजित 4 दिवसीय नाट्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित एक कंपनी के स्टोर में कल देर रात भीषण आग लगने से 2 कर्मचारियों की मृत्यु। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने विशेष गहन पुनरीक्षण और जनगणना संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी। और गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे अभिजीत चट्टोपाध्याय का तबला वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं झपताल और तीन ताल, और सुनते हैं पहले झपताल।

श्रुतों, शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत चट्टोपाध्याय का तबला वादन, आप प्रस्तुत कर रहे थे झपताल। आइए अब सुनते हैं तीन ताल।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत चट्टोपाध्याय का तबला वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे तीन ताल। FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एक कलाकार फिल्म संगीत।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करते हैं आप सभी का कार्यक्रम एक कलाकार फिल्म संगीत में। श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता को जिनकी पहचान केवल एक कलाकार के रूप में ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान, समाजसेवी और जन नेता के रूप में भी की जा रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाने माने अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त की, जिनका असली नाम बलराज दत्त था। तो ये श्रोताओं, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। इन पर फिल्माया इस गीत के साथ, फिल्म का नाम है हमराज।

श्रोताओं, एक कलाकार फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। और श्रोताओं, हमारे आज के कलाकार हैं जाने माने अभिनेता निर्माता सुनील दत्त। साथियों, सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पाकिस्तान के झेलम जिले में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया, लेकिन संघर्षों से भरे जीवन में उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत की। क्या आप जानते हैं, फिल्मों में आने से पहले सुनील दत्त रेडियो उद्घोषक के रूप में भी कार्य कर चुके थे और उनकी प्रभावशाली आवाज और व्यक्तित्व ने उन्हें जल्द ही लोकप्रिय बना दिया था। और फिल्मी सफर की शुरुआत 1955 में फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा।

साथियों, रेलवे प्लेटफॉर्म सुनील दत्त की पहली फिल्म थी, पर उन्हें पहचान दिलाई 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया ने। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड का स्टार बना दिया और डकैतों के जीवन पर बनी उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म मुझे जीने दो ने वर्ष 1964 का फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता और उसके दो ही वर्ष बाद 1966 में खानदान फिल्म के लिए उन्हें फिर से फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार प्राप्त हुआ।

श्रोताओं, एक कलाकार फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। और श्रोताओं, हमारे आज के कलाकार हैं जाने माने अभिनेता निर्माता सुनील दत्त। श्रोताओं, फिल्म मुझे जीने दो में उनके बेहतरीन अभिनय ने उन्हें बहुत लोकप्रिय स्टार बना दिया और 1950 की आखिरी वर्षों से लेकर 1960 और 1970 के दशक में सुनील दत्त ने कई यादगार फिल्मों में काम किया। उन्होंने हिंदी फिल्म जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें साधना, सुजाता, गुमराह, वक्त, खानदान, हमराज और परोसन प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। और फिल्म परोसन में भोले भाले भोलाराम के रूप में उनका अभिनय आज भी दर्शकों के दिल में बसा हुआ है। तो श्रोताओं, सुनते हैं परोसन फिल्म से इन पर फिल्माया ये गीत।

श्रुता और सुनील दत्त ने फिल्म रेशमा और शेरा का निर्माण और निर्देशन भी किया था। ये फिल्म राजस्थान की प्रस्टिम भूमि पर आधारित थी और अपने विषय तथा प्रस्तुति के लिए सराही गई। हालांकि व्यावसायिक रूप से फिल्म बहुत बड़ी सफलता तो नहीं बन सकी, लेकिन इसकी कलात्मक गुणवत्ता की काफ़ी प्रशंसा हुई। श्रोता, अगर बात करें इनके सम्मान और उपलब्धियाँ की, तो सुनील दत्त को उनके योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। इन्हें फिल्म मुझे जीने दो और खानदान के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया। 1967 में बंगाल

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, सुनील दत्त साहब आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनका सामाजिक कार्य और उनकी जिंदा दिली हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। वो एक ऐसे असली हीरो थे जिन्होंने रील और रियल दोनों जिंदगी में ही अपनी अलग अमिट छाप छोड़ी। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और घड़ी भी अब हमें इशारा कर रही कि हमें अब आपसे ले लेनी चाहिए विदा। तो श्रोताओं, अब दीजिए इजाज़त कार्यक्रम को संपन्न करने की, लेकिन चलते चलते सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अंतिम गीत तलत महमूद की आवाज़ में फिल्म छाया से।

0: श्रोतों, एक कलाकार फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे FM 100.5 MHz पे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। और हमारे आज के कलाकार थे जाने माने अभिनेता सुनील दत्त। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कोई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। RBI ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे। वे ब्यास नदी में अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 85 ओवर में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। KL राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी स्थिति बनी रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारी आज की सभा और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

फिल्म संगीत का समय रहेगा रात्रि 7:40 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

शाम 5:10 का समय रहेगा युवा साथियों के दैनिक कार्यक्रम युववाणी का। पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत का समय रहेगा 5:45 पर।

श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब नजर डालते हैं कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे शैल संगीत के अंतर्गत विविध कलाकारों के गाए गढ़वाली लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा 8:30 पर।

व्हाट्सएप फरमाइश का समय रहेगा सुबह 11 बजे। बालमंडल आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का समय रहेगा 2:30 पर। शाम 4:02 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पीयूष कश्यप का राग मधुवंती पर ख्याल गायन।

एक कलाकार का समय रहेगा शाम 4:30 पर। हमारे दैनिक कार्यक्रमों का समय वही युववाणी 5:10, पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का कार्यक्रम 5:45 और कृषि जगत शाम 7:00। श्रोताओं, इसी के साथ हमारे आज के शेष और कल के तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। दोस्तों, ये वो शो है जहां हर शब्द दिल से निकलता है और हर पल एक एहसास बन जाता है। दोस्तों, मैं हूं अंशिका शर्मा और आज के इस खूबसूरत सफ़र में हम आपके साथ चलेंगे कुछ बातों को समझने के लिए, कुछ भावनाओं को महसूस करने के लिए और थोड़ा सा खुद से मिलने के लिए। और आज के सफ़र में मेरे साथ है मेरी साथी।
1: हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूँ अतुल्य रावत। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे, है ना? दोस्तों, कभी आपने सोचा है हम इतने परेशान क्यों रहते हैं और मुस्कुराने के मौके इतने कम क्यों ढूंढते हैं? दोस्तों, आज का शो थोड़ा सा दिल को हल्का करने के लिए है और थोड़ा सा खुद को समझने के लिए भी है।
0: और अतुल्या, तुम्हारी इस बात से ना मुझे एक शायरी याद आ रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कहो, इरशाद करूं?
1: हाँ बिल्कुल।
0: दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह है कि भीड़ में खुद को कहीं खो दिया है हमने, हर दिन किसी और सा हो लिया है हमने। थोड़ा रुक कर खुद को भी सुन लो, थोड़ा रुक कर खुद को भी सुन लो, शायद भीतर बहुत कुछ छुपा लिया है हमने। तो दोस्तों, अपने भीतर जो कुछ भी छुपाया है ना, या तो उसे अपने किसी खास को बता दीजिए या किसी डायरी में लिख लीजिए, और यकीन मानिए आप बहुत लाइट फील करेंगे। और अगर कुछ नहीं छुपाए तो मौज कीजिए, मस्ती कीजिए और सुनिए कार्यक्रम की पहली पेशकश फ्रॉम द फिल्म ब्रदर्स, नीति मोहन और सोनू निगम के युगल स्वर में।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी मेरे यानी अंशिका शर्मा
4: और मेरे यानी अतुल्या रावत के साथ। दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए और तुम भी इमेजिन करो अंशिका, एक 16 साल का लड़का सोचो, ना कोई बड़ी सेना ना कोई विशाल राज्य, लेकिन उसके पास था एक सपना। दोस्तों ऐसा सपना जिसने पूरे भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी।
3: बिल्कुल
4: अंशिका, तुम बता सकती हो कि उस लड़के का नाम क्या था?
3: बिल्कुल अतुल्या। दोस्तों आज हम जिनकी कहानी के पन्ने खोल रहे हैं ना, उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों शिवाजी महाराज का जन्म सन 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। बचपन में जब एक दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, तब शिवाजी अपनी माता जीजाबाई से वीरता और धर्म की कहानियाँ सुना करते थे। कहा जाता है कि जीजाबाई अक्सर अपने बेटे से कहती थी कि बेटा, अन्याय को सहना भी एक प्रकार का अपराध है।
4: और शायद यही शब्द शिवाजी महाराज के जीवन का लक्ष्य बन गए दोस्तों। और अब सोचिए, अगर आपके सामने बहुत बड़ी ताकत हो और आप अकेले हों तो क्या करेंगे? अधिकतर लोग हार मान लेते हैं और हार मान भी लेंगे, लेकिन शिवाजी महाराज ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया।
3: दोस्तों सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला किला तोरणा किला जीत लिया और यहीं से शुरू हुई उनके स्वराज्य की लड़ाई।
4: और फिर एक एक करके कई किले उनके अधिकार में आने लगे। लेकिन दोस्तों शिवाजी महाराज की असली ताकत सिर्फ उनकी तलवार नहीं थी, बल्कि उनकी बुद्धिमानी भी थी।
3: उन्होंने एक नई युद्ध शैली अपनाई दोस्तों, जिसका नाम था गुरीला युद्ध। दोस्तों गुरीला युद्ध यानी अचानक हमला करो और दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना वापस लौटाओ। आज की भाषा में अगर कहें तो शिवाजी महाराज युद्ध के मास्टर स्ट्रेटजिस्ट थे।
4: बिल्कुल, और दोस्तों आपको उनकी जिंदगी का सबसे रोमांचक किस्सा बताती हूँ। बीजापुर का शक्तिशाली सेनापति अफजल खान शिवाजी को खत्म करने के लिए निकला था। और अफजल खान शारीरिक रूप से बहुत विशाल और ताकतवर तो था ही। फिर एक बार शिवाजी महाराज और अफजल की मुलाकात तय हुई और दोनों आमने सामने आए, और फिर क्या हुआ?
3: और फिर ये हुआ अतुल्या कि अफजल खान ने गले मिलने के बहाने शिवाजी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी तो पहले से तैयार थे। उन्होंने अपनी सूझबूझ और साहस से खुद को बचाया और अफजल खान को परास्त कर दिया। और इस घटना के बाद पूरे देश में शिवाजी का नाम गूंजने लगा।
4: लेकिन दोस्तों शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक ऐसे राजा थे जो महिलाओं का सम्मान करते थे, सभी धर्मों का आदर करते थे और अपनी प्रजा और परिवार को सब परिवार की तरह मानते थे।
3: बिल्कुल दोस्तों, शिवाजी महाराज की कहानी हमें सिखाती है कि युद्ध जीतना आसान हो सकता है, लेकिन लोगों के दिलों को जीतना बहुत मुश्किल होता है, और शिवाजी महाराज ने दोनों काम किए।
4: बिल्कुल, और 1674 में रायगढ़ किले में उनका राज्य अभिषेक हुआ दोस्तों, और वो बने छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों आज सैकड़ों साल बाद भी शिवाजी महाराज को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी कितनी भी कठिन हो, आगे अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो इतिहास बिल्कुल बदला जा सकता है।
3: बिल्कुल अतुल्या। तो दोस्तों जब भी आपको लगे कि आपके सामने मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, तो एक बार शिवाजी महाराज को याद करिएगा। वो 16 साल का लड़का जिसके सपने देखने की हिम्मत ने उसको आगे बढ़ाया और फिर उसने अपने सपनों को सच करके दिखाया।
4: बिल्कुल,
3: और दोस्तों याद रखिए, हौसलों की ऊंचाई ही इंसान की असली पहचान होती है।
4: बिल्कुल सही कहा अंशिका ये बात तुमने। और इसी नोट के साथ दोस्तों हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको ये खूबसूरत म्यूजिकल ब्रेक, जिसे लिया है मूवी संजू से और जिसे आवाज दी है श्रेया घोषाल एंड सुखविंदर सिंह ने।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जी हाँ, वो है एप्टीट्यूड और एटीट्यूड।
4: दोस्तों, एप्टीट्यूड का अर्थ है किसी कार्य को करने की क्षमता, योग्यता या प्रतिभा। ये बताता है कि हम किसी काम को कितनी अच्छी तरह सीख सकते हैं और कर सकते हैं।
3: और वही एटीट्यूड का अर्थ है हमारा दृष्टिकोण, सोच और व्यवहार। ये तय करता है कि हम परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे।
4: बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए किसी छात्र में गणित की बहुत अच्छी क्षमता है, लेकिन वो मेहनत नहीं करता या चुनौतियों से घबरा जाता है,
3: तो उसकी प्रतिभा होने के बावजूद भी वो अपेक्षित सफलता नहीं पा सकेगा। दूसरी ओर, यदि किसी छात्र की क्षमता सामान्य है दोस्तों, लेकिन उसका दृष्टिकोण सकारात्मक है और वो लगातार प्रयास करता ही रहता है, तो वो बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है।
4: और दोस्तों, जीवन में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां अत्यधिक प्रतिभाशाली लोग भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि उनमें धैर्य, अनुशासन या सकारात्मक सोच की कमी थी। और दूसरी ओर, कई सामान्य क्षमताओं वाले लोग अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण ऊंचाइयों तक पहुंचे।
3: और दोस्तों, यही कारण है कि केवल एप्टीट्यूड या केवल एटीट्यूड पर्याप्त नहीं है। एप्टीट्यूड हमें दिशा देता है, जबकि एटीट्यूड हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है।
4: यदि किसी व्यक्ति के पास एप्टीट्यूड है तो वो समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास अच्छा एटीट्यूड नहीं है तो वो सफलताओं से निराश हो सकता है। वहीं अच्छा एटीट्यूड व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करने, गलतियों से सीखने और लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
3: और दोस्तों, एक व्यक्ति की योग्यता उसे अवसर तो दिला सकती है, लेकिन उसका व्यवहार और सोच ही उसे उन अवसरों का सही लाभ उठाने में मदद करती है।
4: बिल्कुल। और अतुल्य, आज के प्रतिस्पर्धी युग में हमें अपनी क्षमताओं को विकसित करने के साथ साथ सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, अनुशासन और धैर्य भी अपनाना चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: जब एप्टीट्यूड और एटीट्यूड एक साथ मिलते हैं तब सफलता की राह और भी आसान हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बात पसंद आई होगी और समझ आई होगी, और उम्मीद करते हैं कि अभी से आप भी पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, गब्बर इज बैक फिल्म से अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाज़ में।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: अच्छा अंशिका, क्या तुम जानती हो कि इंस्पायर स्कॉलरशिप में इंस्पायर क्या होता है?
3: बिल्कुल अतुल्या। दोस्तों, इंस्पायर का पूरा नाम है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने। दोस्तों, ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य विज्ञान विषयों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना और उन्हें शोध एवं नवाचार की ओर प्रेरित करना है।
3: और दोस्तों, इंस्पायर स्कॉलरशिप विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो और आगे विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या जिन्होंने JEE और NEET में टॉप रैंक प्राप्त की हो, BSc, BS, MCE, MS में नेचुरल एंड बेसिक साइंस कर रहे हों।
2: बिल्कुल, और चयनित छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति और समर प्रोजेक्ट फीस भी दिए जाती हैं। दोस्तों, ये छात्रवृत्ति BSc से लेकर MSc तक अधिकतम 5 वर्षों तक प्रदान की जाती है। इसमें छात्र की आयु 17 से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3: दोस्तों, जिन छात्रों ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी से पढ़ाई की हो और वे अपने संबंधित बोर्ड जैसे CBSE या स्टेट बोर्ड की टॉप 1% मेरिट लिस्ट में शामिल हैं, और जो छात्र IISER, NISER, IIT या KVPY जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के माध्यम से विज्ञान विषयों में प्रवेश लेते हैं, वे भी सीधे इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र होते हैं। दोस्तों, ये स्कॉलरशिप प्योर बेसिक साइंस पढ़ने वाले छात्रों को ही दी जाती है और ये विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वो अपनी पढ़ाई बिना किसी वित्तीय बाधा के जारी रख सकें।
2: बिल्कुल, और उच्च शिक्षा के अलावा इस योजना में 2 अन्य महत्वपूर्ण हिस्से भी शामिल है दोस्तों, जिसमें है इंस्पायर अवार्ड मानक। कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों को विज्ञान के प्रोजेक्ट और नवाचारी विचारों के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है।
3: और दूसरा, इंस्पायर फेलोशिप। दोस्तों, मास्टर्स डिग्री पूरी कर चुके छात्रों को PhD करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगर आप विज्ञान, गणित या टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो इंस्पायर स्कॉलरशिप आपके लिए एक शानदार शुरुआत हो सकती है। यह न सिर्फ आर्थिक मदद देती है बल्कि शोध की दुनिया में कदम रखने के लिए मार्ग भी बनाता है।
2: बिल्कुल, और इसी के साथ दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं गीत फिल्म सिटी लाइट्स से, जिसे आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने।

0: दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम युववाणी कैसा लगा आप हमें खत लिखकर बता सकते हैं। हमारा खत लिखने का पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून, और हमारा पिन कोड है 248001।
1: दोस्तों, आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा भी मैसेज भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। दोस्तों, हमें आपके पत्रों का और विचारों का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। मुझे अतुल्य अरावत और मेरे साथ
0: अंशिका शर्मा को
1: दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युववाणी FM 100.5 MHz पर, या आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम सुनधारा सभी भाई बंधु थे नमस्कार विनय ध्यान छोड़ बेटे
1: जी हाँ और डगरमा में छू ममता पांडे मैं अर्थर बठीली नमस्कार प्रणाम पहला दाजू आपके लिए प्रणाम
0: आप भी बहुत बहुत और शुभकामना भी दे दूंगा आप ते कि अब मौसम बदल गए और भलो लगन च
1: जी
0: अफार मौसम विभाग वाला बना छन की मानसून आ गया बल अफार
1: जी
0: केरला छोड़
1: समाचार मल्ले सुने ने ले रहते वो गुण छ बल ब्याह के फिर बरक होने की संभावना छ
0: और 11 जून तक बल इन रहन कुजान कुजान तब पर चला ठीक छ फसल पातक वे सकत भल हुआ वे सकत नुकसान वाल भी हुआ केला जी कृषि वैज्ञानिक बताला ना हम तो पता नहीं हूं पर फिर भी लोको गुण राहत छ गर्म से और मट मट के की अब जो हमारा घुमक्कड़ लोग छन
1: जी
0: ओ भाई ना दौड़ना छन की बात छुट्टी हुई दौड़ो दौड़ो दौड़ो
1: जी
0: आपने दौड़ना छन कही
1: दौड़ा लो ध्यान जी मैं
0: अच्छा वही कहा
1: घूम भी रहे थे हम
0: कख
1: पार ओ पिथौरागढ़ तरफ अब वाले छुड़े भीड़ लगी छे ध्यान जी आदि कैलाश की तरफ
0: हाँ आजकल वो अखी देखना छो वहाँ कि जी तभी देखो वो आदि कैलाश
1: जी
0: और वो अफारू सोशल मीडिया पर तो ना बिल क्या छो लोग
1: ना
0: कि बस मिथा देखो पहल अफार छो वो और अफार छो पंचा चुली और फलानो पता नहीं क्या
1: बस बस
0: तो अच्छी बात छे क्या एक सुंदर यात्रा करी का पाना छे और हम अपना पर्यटक होता है जरे सलाह जरूर दियोला कि आप भी अगर गावला तो एक पर्यटक का तौर पर ही गावला ना
1: जी
0: लेकिन हमारे एक देखा कि जो एक से एक घटना होना चाहिए कि चार छावल और वो एक गिन
1: जी, और एक गाड़ी में अगर चार जन उनन ना तो वो लोग पांच पांच छह छह दस दस ले बिठा देना
0: दूसरी चीज यह होनी चाहिए सड़क दुर्घटना कि 200 मीटर खाई में लमड़ गया है ना तो ये जो घटनाएं छन यूं ते हम ते रोकन होलू और सतर्कता रखनी होली इतना ही ना जो लोग ट्रैकिंग पर जाना छन वे से जुड़ी एक घटना ये बात आप सब लोग जानना होला
1: जी।
0: कि दयारा बुग्याल पर अगर हम जाना छुआ अपना दगड़ियों का दगड़ी अरे पोर्टर ले जाए लो दे
1: जी
0: कगे ऊ पोर्टर ऊ था पता रहनी बाटा घाटा कखम टेंट लगान कखम नि लगान ऊ था सब पता रहन कखम पैन छ और हम बिना के सूचना का ये जो नियम छन ना पर्यटन का
1: उनके तोड़ बेर
0: ऊ तो तोड़ देना छो हम वक नो कुछ हो रही कखी कुछ हो रही आदम कद छो इधर और बोली फीस बचा दूंगा जरे
1: जी जी
0: तो भाई जब एक पर्यटन नीति बनी छ वे की कुछ आचार संहिता भी होंगे और उनको पालन करना बहुत जरूरी है नथर दुखद से दुखद घटना कत्ते सालों बटक हम सुनना छुआ कि फलन पर्वतारोहण पर गया लोग
1: वापस नहीं आया
0: वापस नहीं आया लापता हुए गिन तो ये घटना नहीं होना चाहिए अगर हम पूरा नियम कानून से चलना छुआ भाई प्रकृति का दगड़ भी नियम कानून चलना चाहिए और नथर प्रकृति अपन कानून दिखा
1: ध्यानी जी एक बात है चुना जैन जी चलना छे ना आजकल तो वो सोचना ना कि हमन बराबर होशियार कोई ना
0: हाँ ये बात में गलत
1: जी
0: बिंडी चंट हुन बिल भी बल नहीं होना
1: जी जो जाग में आप जाना चाह पहली वीक बावत पत्त कर लियो कस वहाँ मौसम छे कस बाट छे कस जाग में आप बल रोन छे ना हमन के सब पत्ते छे और मोबाइल में वहाँ जो सिग्नल नहीं उनन ना
0: बिल्कुल नहीं होना
1: तो ध्यान पहली बटे धरण पड़ो
0: हम तो कत्ते दा दयारा बुग्याल चल गयो हां लेकिन हम तक कखिम भी इन लाग वे पूरो ट्रैक मा कि कखिम हरचण जुगा बात हो कखिम लापता होण जुगा बात हो छोट छोट बच्चा चल जन पहाड़
1: पर सो नहीं हो जे तरीके ला जान
0: ला अब उन तो पता बिच कि इना जान छ कि नहीं जान है ना लेकिन अभी नए जमाना का नए छोली का हमारा नौजवान जो कुणा जैन जी बना
1: जी।
0: तो यूं था जरे से समझान भी पड़ल कि ना भाई चित्ते जो पहाड़ चु वो एक अपन एक प्रवृत्ति च वो एक हिसाब से ही हम तो चलन होल कते दा हम ही देख दा कि जो हमारा पर्यटक छन पथारोही छन ये क्या करते रात भी चलना रहे दिन
1: रात भी
0: और मीन छन बड़ी बल टॉर्च चलो जी। ना बिल्कुल सिद्ध ना
1: जंगली जानवर ले छन बाट कहीं टूटी छु उले दिखन पड़ल ना
0: हम बहुत सारा ट्रैक हमन करी तो बिल्कुल एक नियम छ कि 5 किलो से ज्यादा आप वजन नहीं होना चाहिए और दूसरी बात ये जो सामान छन टॉर्च हो गया चतुल हो गया ये बहुत जरूरी छ तीसरी बात कि एक दिन मा अगर बहुत ज्यादा कठिन राह छ तो 10 किलोमीटर बस वैसे है जखिम आप जगना छन 10 किलोमीटर हो गया ढूंढ डांडे की आपका जो पोर्टर दगड़े छन वो आप तक गाइड कर दे कि अखम करो जी अपन डिकन डिसान और रात में भी देखो है ना चार चौबंद रहना अपन भी तो ये कुछ नियम कानून छन पर्यटन का यूं कुन पालन आप जरूर करा न इन घटना फिर भी हो सकते है ना। आज कार्यक्रम में क्या छे हमन बताई नहीं चो दूर तक आ गयो
1: ध्यानी जी पानी को जो छो समस्या उणवाल छे ना और पानी के बारे में ही आज हमारा जो विषय छे जलागम और गौ को समेकित विकास
0: ये विषय पर हम बात कर ला। ये विभाग में संयुक्त निदेशक छन डॉक्टर अनुज डिमरी संयुक्त निदेशक छन। और आप तो ये भी बतौला कि सिर्फ ये विभाग जलागम की ही बात ना सिर्फ जल की ही बात ना बल्कि एक समेकित विकास की बात करे तो गांव को जो संपूर्ण विकास हो करना तो ये बातचीत बाद में पहले जरा गीत सुनाओ थी।
1: बिल्कुल ध्यानी जी बखत होना चाहिए ब्यावक तो एक ब्यावक गीत सुना देना अपन सुन दे भानु राम सुकोटी को गायो कुमाऊनी गीत

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें BIS.gov.in पर।

0: के सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
3: नारी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथरल स्ट्रक्चर और अल्सराइटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
2: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
3: व्हाट्सएप 7895372936।
2: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नारी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद पुराना शिव मंदिर मुखानी चौराहा हल्द्वानी, शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।
4: श्रोताओं, भानु राम सुकोटी को गायो कुमाऊनी गीत और रैबारक बाद एक बार फिर स्वागत आप सभी जानेनु को कार्यक्रम ग्राम जगत में।
5: और अब हम स्वागत करला अपन आज को मेहमान को।
4: जी,
5: हमारा मेहमान छन डॉक्टर अनोज डिमरी और आपसे बातचीत को विषय छ जलागम और गों को समेकित विकास।
4: जी
5: श्रोताओं नमस्कार, मैं छो विनय ध्यानी और म्यार दगड़ आज मेहमान छन डॉक्टर अनोज डिमरी जो कि संयुक्त निदेशक छन जलागम और पशुपालन विभाग से भी उनको संबद्ध छ। आज आपक और हमर बातचीत को विषय छ कि गौ को समेकित विकास और जलागम कनके कि हम एक दूसरे का पूरक बन सकना, ये बाबत हम बात करला। डॉक्टर डिमरी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।
6: हाँ नमस्कार ध्यानी जी और धन्यवाद।
5: हम जलागम तक कई रूप में समझा क्या छ, यो वही की कार्य योजनाएं क्या छन, उद्देश्य क्या छन, क्या कर दियो विभाग?
6: हाँ ध्यानी जी, जन आप जान दौला कि करीब 3 दशक बे जलागम विभाग निरंतर उत्तराखंड में काम करनु छ। और जलागम को अर्थ यू छ कि हम हमारा जो भी एक गधेरा या नदी निकलनी तो वे जे एरिया बेटी जे क्षेत्र बेटी वो पानी होंदू तो पूरा क्षेत्र जल समेट क्षेत्र या जलागम क्षेत्र मानी जान। वे जलागम क्षेत्रों को पूरा कनके विकास करी जो कि वहाँ पानी की निरंतरता हमारा गदेरों में नालों में धारों में बनी रहो और गांव को समेकित विकास भी हो कि पूर्ण विकास तो और गांव वाला वे इससे जुड़ा भी रहो। ये वास्ता जलागम में विभिन्न योजनाएं कई बार विश्व बैंक की योजनाएं, भारत सरकार की योजना और उत्तराखंड सरकार भी अभी जनाब सुनी बोलो सारा एक नई अथॉरिटी बनाई प्राधिकरण कि ये मां जो ची स्टेट रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी यो नदियों को पानी जो कम होनू वे को विकास करना का वास्ता सारा एक अथॉरिटी बढ़ेगी। और ये सारा की अथॉरिटी समस्त जितया विभाग भी उत्तराखंड में नदी नालों को विकास करना रहना तो वो सब सारा गांडर में अब एक अम्ब्रेला या छतरी का नीचे काम करके और वो विकास कर रहा।
5: डॉक्टर डिमरी आप के जलागम में छन और एक शीर्ष पद पर छन, क्या मानना छन कि हमारा जो गार्ड गदेरा छन ऊँक पैण सुखण के लच और वैसे जो जनता पर सीधा ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ना वो क्या छ?
6: हाँ ध्यानी जी, जन आप सुनी बोलो कि लगातार वातावरण या क्लाइमेट चेंज होना वातावरण में परिवर्तन हो आप देख लो बीच में अचानक गर्मी बढ़ गई फिर अचानक गर्मी का मौसम में बरखा हो जानी ये अनियमित जो ये बीच में हमारे जंगलों को विनाश हुई और बीच में विकास की निरंतर प्रक्रिया में जो सड़क निर्माण उत्तराखंड में लगातार चरणों ची तो माँ क्या होने की बीच बीच में जो हमारा धारा गदेरा रहना ये नो पानी जंगल बेटियों और जंगल बे अंडरग्राउंड मतलब जमीन तौला तौला ये नारा एक्विफर बनावनु वो एक्विफर रहना तो जब सड़क कटनी रास्ता कटना जंगल और कटान होनु तो ये माँ एक्विफर और रिचार्ज जो ची वो खत्म हो जाना कई एक्विफर कट जाना तो वन वो दिशा बदल देना अपने पानी की तो पानी जो हमारा गाड़ गदेरों में होनु जो वो कम होते जानू और वर्षों को जो पानी ची वे भी हम रोक नहीं पाना क्योंकि भूक्षरण लगातार आप देखी वो लोग होनु ची स्लाइडिंग होनी तो उस पानी हमारो रुक नहीं पानो तो गदेरों में पानी निरे पानो।
5: आपन बहुत ठीक बात बोलेगी कि ना कहीं जलवायु परिवर्तन को और हमारे जो मानवीय भूल छन चाहे हम प्रदूषण बढ़ाना छुआ प्लास्टिक कचरा डालना छुआ वैसे हमारा गाड़ गदेरों को जो पानी को संकट छ होना चाहिए चला आप गाड़गर रोबोटिक की इंच गों तक पहुंचता तो जलागम जो समेकित विकास की अवधारणा ले गई हूँ जखमा की बहुत छोटी छोटी योजनाएं छन वो क्या क्या छन जन के कि हम पैणी से अलग हटे के गांव को विकास कर सकते
6: जी जन ध्यानी जी मैं बता आप कि हम हमारा मुख्य उद्देश्य वो पूरा क्षेत्र जो ची वो क्षेत्रों विकास से समेकित विकास तो मेन तो हम पानी तो केंद्र में रखते हुए वो मां हम करना और पानी की उपलब्धता गांव में बढ़ाई जो जैसे पानी उपलब्धता बढ़ ली तो हॉर्टिकल्चर उद्यानीकरण और कृषि खेती अधिक से अधिक कला खेती अधिक कला तो वे वास्ता हम खेती वास्ता उन्नत बीज और खेती की नई नई तकनीकी उद्यानीकरण की नई तकनीकी जो आजकल की विश्व स्तरीय तकनीकी थी हम विश्व स्तरीय संस्थानों दगड़ी वार्ता करके वन उसे गांव ट्रेनिंग देना अपना कर्मचारियों भी ट्रेनिंग देना और वैसे वन और समेकित विकास जैसे वो जन वर्तमान में हमारी जो इस अभ्यारे चल रही उत्तराखंड जलवायु अनुकूलन वर्षा आधारित प्रोजेक्ट हम और कृषि क्षेत्रों के प्रोजेक्ट चलो ये माँ हम क्या कहना कि एक तो जो ग्रीन हाउस गैस आप सुनी वाली जो हानिकारक गैस रनी जो कि वातावरण में जाके हमारे ओजोन लेयर तय नुकसान करनी तो वे गैसों को उत्सर्जन कन के कम हो लो खासतौर से हम जन जब हम साठी और धाने की खेती करना तो वक जब रोपाई करना तो रोपाई में फर्टिलाइजर रासायनिक खाद डालना तो वे भी दिन भी वे को वाष्पीकरण जब वन तो ओजोन लेयर हम और नुकसान पहुंचाना जैसे जलवायु परिवर्तन हो तो विश्व बैंक और ये का वास्ता उत्तराखंड वास्ता एक अलग से स्पेशल प्रोजेक्ट जो कि यूनिक अपना माची वो प्रोजेक्ट उत्तराखंड दीनी और जलागम ये कार्यान्वित करूँ वे जलागम क्षेत्र में हम क्या कि जो धाने की खेती थी वे हूं अल्टरनेट करके एक रोपाई से खत्म करके कन के वे को उत्पादन भी बनी रखी जो और पानी को ज्यादा उपयोग न करी जो जैसे वाष्पीकरण नहीं होलो तो उत्सर्जन भी नहीं होलो तो वे का वास्ता वर्ल्ड बैंक की नई योजना थी और ये माँ हम नई नई तकनीकी से विश्व स्तरीय संस्थानों से मिल के कृषि उद्यानीकरण पशुपालन ये कन के करी जो ये की ट्रेनिंग हम अपना कर्मचारी दोनों और हमारा कर्मचारी गांव वालों से मिल के लाभार्थियों को चयन करना और फिर वनो प्रशिक्षण देना जी
5: बहुत सुंदर समेकित विकास एक उन्हें बोल दिन कि भाई हम कृषि औद्यानिकीकरण या बाकी और चीज़ों पर ध्यान दिया लेकिन जब जब हम गांव में रिटदा ना घूमना खुण जाना या रिकॉर्डिंग खाते जाना तो हम तो एक चीज दिखें कि स्वच्छता पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान चाहे वो शौचालय निर्माण की बात करे जा चाहे जल संरक्षण की बात करे जा चाहे जल संवर्धन की बात करे जा चाहे ग्राम्यजन एक परियोजना भी संचालित हुए ये कब आप बता दें
6: अच्छा बोले आप लोग ग्राम्य भी एक वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक की योजना छे जो पहली 2021 तक चली और ग्राम्य को भी उद्देश्य यही जो कि ग्रामीण रोजगारों का अगिन बढ़ाई जो और हमारा जलागा जो स्रोत ची वनु भी नियंत्रित रखी जो और उनसे वनुमा पानी की मात्रा निरंतर बढ़ाई जो तो वेगा वास्ता सेम चीज हम अबेरी ये माँ विश्व बैंक की नई योजना में भी करना अगर आप देखिए लोग पानी की उपलब्धता रहनी तो स्वच्छता गांव में अपना आप है जानी और हम ये माँ अभी सोलर वाटर लिफ्टिंग पंप मतलब जो सौर ऊर्जा से पंप लगाना चाहिए जैसे कि गदरों पे सीधा माथी अगर गांव का तौला गदरा चाहिए गांव में पानी नहीं तो वे को लिफ्ट करके वे सोलर पंप से और फिर एलडीपी टैंक या और वाटर पर टैंक बढ़ा के और गांव वालों उपलब्ध हो जैसे स्वच्छता भी हो खेती भी हो और गांव को विकास भी हो
5: एक शब्द आपन बोली रोजगार रोजगार से जुड़ी जलागाम की वो कोई योजना छे ने जो कि ग्रामीणों तक रोजगार उपलब्ध कराना
6: जी हम ये जो हमारे विश्व बैंक के या अन्य योजना भी होनी हम गांव वालों की यू भी देखना कि वे गांव वालों में क्या योग्यता थी क्या स्किल थी वे माँ कई लोग लोहार होना कई लोग आपका कारपेंटर थी तो वनु हम सेम वही रोजगार को अगिन बढ़ाना वास्ता
5: कौशल
6: वनु कौशल विकास भी करना और वनु आर्थिक सहायता भी प्रदान की जानी
5: अच्छा।
6: जैसे कि वो अपना रोजगार निरंतर बढ़ाए
5: अगर ग्रामीण महिलाओं तक हम केंद्रित करें तो उखमा जो हमारे जलागम छ वो एक विभिन्न योजनाएं होली के लेके घर गो माँ जब तक महिलाओं से जुड़ी योजना नहीं होली तब तक मैं जहाँ लगुद नीच के यहाँ कुछ काम हो
6: जी बिल्कुल
5: क्या छन वो योजना
6: ये बहुत अच्छा बताया आप लोग हमारो जेंडर बजटिंग होनी हम आया हो कि मेन चीज़ जो चीज़ कि हम महिलाओं के वास्ता स्पेशल अलग से सोच करके बजटिंग करना कि जिससे अब कुछ हमारा या तुम जय महिला उत्प्रेरक तो वो मां केवल महिला ही हम रखना सोशल कोऑर्डिनेटर जो सामाजिक कोऑर्डिनेशन करना गौ माला दौड़ी तो महिला ज्यादा अच्छी तरीके से गौ क्योंकि गौ मां हमारा उत्तराखंड में ज्यादातर कार्य गौ की महिलाएं करनी पुरुष कम करना तो वो मां महिला उत्प्रेरक और महिला सामाजिक कार्यकर्ता हम धना और वो मां 100% महिलाओं रखी जान तो महिलाओं का संबंध में ज्यादा से ज्यादा बात कर सकना और दूसरा महिलाओं ज्यादा अच्छी तरीके से समझा के गौ को विकास ज्यादा अच्छी क्योंकि महिलाएं हमारा उत्तराखंड की रीढ़ थी तो महिला गौ वास्ता हम लोग स्पेशली हम लोग महिलाओं का वास्ता ध्यान रख के सारी योजना बढ़ाना।
5: आपन बताए विश्व बैंक द्वारा पोषित विभिन्न योजना जलागम चला ये कहीं सापेक्ष अगर हम बात कर ला कि राज्य सरकार की भी बहुत सारी ग्रामीण विकास के कार्यक्रम छन इतना ही न बल्कि पूर्व मंत्रालय ही ग्रामीण विकास को एक अलग वे का दगड़ी कनकेक सामंजस्य जलागम कर और कनकेक योजनाओं को संचालन कर
6: जी। ज्ञानी जी यू भी बहुत अच्छे बता जन आप बता कि ग्राम्य विकास विभाग जी तो भारत सरकार भी एक एक योजना चाहिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वे को जलागम विकास घटक वो केवल ग्राम्य विकास विभागों को ची जो भूमि संसाधन विकास मंत्रालय हमूल दी हूँ और हमारा यख तीन जिलों जनपदों में वो क्रियान्वित होनी थी अभी और वो मां जनरली ग्राम विकास को मद्देनजर रखते हुए और उन्नत कृषि और जो हमारी बंजर भूमि वेगी वह वे कृषि योग्य कन के बढ़ाई जो ये वास्ता हम काम करना चाहिए लगातार और भारत सरकार की जो मनरेगा योजना जो बीबी राम जी अब चलेगी ये योजना का हम वे तगड़ी सामंजस्य बैठा के कि आधा बजट हम ये लगा के और मनरेगा से ग्राम विकास वालों से बात करके मनरेगा से भी वो मां जो कार्य की जान लेबर वालों जो श्रमिक अंश थी वो से करना और जैसे कि उत्तरोत्तर वृद्धि हमारा ग्रामीण विकास दगड़ी हुए थे रहो
5: आने वाले समय में या वर्तमान में को इन्हें गतिशील योजनाएं चिन चुके व्यापक पैमाने पर आप लोग चलाना चिन जलागम द्वारा
6: जी। अभी जन मिल बता कि आप को भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तीन डिस्ट्रिक्टों में चलनी और अब क्योंकि हमारा राज्य में अच्छे से चलनी तो अब हम और वहां थर्ड फेज भी आनो ची वो भी मिलनो हम अगला साल तक मिल जुलो। सेकंड हमारो जो राज्य सरकार ची राज्य सरकार और जन मिल बता कि नदी नालों को संरक्षण करना का वास्ता सारा जो अथॉरिटी बड़ी वो सारा अथॉरिटी समस्त जनपदों में कार्य करनी ची वो सिंचाई विभाग दगड़ी और लघु सिंचाई दगड़ी और आप आगा ग्राम विकास जो सब यु काम करना नदी संरक्षण और नालों को संरक्षण और अब मेरी बल्कि एक चीज और ची कि सारा क्या करी कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम प्रथम चरण में लेना पांच जो हमारा धारा नौला ची कुमाऊं में हम नौला बोना गढ़वाल में धारा बोना तो ये नौरो जो हमारो प्राचीन बनो स्ट्रक्चर छो वना संरचना छे वो एक मेंटेन रखते हुए अब वनोरो कन के पानी को उत्सर्जन बढ़ाई जो पानी की मात्राओं में बढ़ाई जो ये पर काम करूँ हम एक व्यापक योजना अभी लेना
5: गांव का विकास का खातिर ग्रामीणों की जो भूमिका च और ये के अलावा जब हम देखदा कि जलागम की विभिन्न योजनाएं परियोजनाएं संचालित होना चन तो विभाग का एक मुख्य मुखिया होने का नाता क्या रैबार च गांव का लोगों का खातिर क्या अपना विभाग का लोगों का खातिर कि कनके हम शत प्रतिशत जो वे को फायदा च योजनाओं को दिलाए सका क्या बोलना चाहना चन
6: जी। ध्यानी जी अभी तो जलागम केवल कुछ ही जनपदों में और कुछ ही ब्लॉकों में विकासखंडों में काम करूँ क्योंकि हम सीमित संसाधन होना और सीमित कार्य तो ये केवल एक मॉडल अगर रूप में लेके हम एक मॉडल की यन की खेती की जो कि उन्नत खेती कन के की जो उन्नत उद्यानीकरण और गाड़ गदेरों में पानी कन बढ़ाई जो यूँ हम वन दिखाना चाहिए गाँव वाला तो अन्य क्षेत्र का किसान भी वन क्षेत्रों में जय के हमारा वे जलागम की योजनाओं देख करके अपना जो बने ग्राम प्रधानों बताए के अपनी ग्रामीण विकास योजना में रख सकता और स्वयं भी अपने आप वन तकनीकों को उपयोग करके अपना उत्तरोत्तर विकास और स्वरोजगार की योजना चला सकता।
5: निश्चित तौर पर मंशा भली च जलागम की और समेकित विकास का खातिर कई कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित करे जाना चाहिए। और जन के डॉक्टर डिमरीन ने बताया कि अगर आस पड़ोस का गोमा जलागम की कोई विभिन्न योजना संचालित होना चाहिए वही बाबत आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और वही बाबत आप संबंधित विभाग से संपर्क भी कर सकते हैं जन के कि आप तभी वे माँ आच्छादित करी जा सक। तो कुल मिला एक बात यह कि हाँ गांव का विकास का खातिर एक विभाग इंच की जो कि पानी से लेकी जंगल से लेकी रोजगार से लेकी पशुपालन से लेकी महिला विकास से लेकी और गांव को संपूर्ण विकास तय लेके एथर बढ़नु चाहिए। डॉक्टर डिमरी कार्यक्रम आप हैं और विभाग की महत्वपूर्ण चर्चा अपन हमर दगड़ साझा करी ये का खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
6: बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानी।
5: श्रोता भाई बंधु अभी हम चीन लगाना चाहे डॉक्टर अनुज डिमरी का दगड़ी विषय छा जलागम और कोंको समेकित विकास। तो पानी राखा तो जरूरी छे भाई लोगों आंदोलन चला दिया पानी राखा तो पानी की व्यवस्था आपन स्वयं भी करण आपका जो प्राकृतिक स्रोत छन उनका खातिर आप जल तलाई बना सकते है ना। बसगाल को जो पानी छो वो कहीं इनाम खराब नहीं हो वैसे आपका जो प्राकृतिक स्रोत छन वो बार बार के बोल देने अंग्रेजी में रिचार्ज
4: जी
5: रिचार्ज राला यानी
4: दो बार मैं लीजिए पिथौरागढ़ गई हूं ना ध्यानी जी मैं देखो जब तू नॉल छी ना आसपास सब सूख गई
5: करने सुकून था एक तो जलवायु परिवर्तन ब्याल की कार्यक्रम में हमने पर्यावरण दिवस मनाया और जो पर्यावरण विद छन पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी
4: जी
5: उनमें यही बात तो बोले कि साहब जो जलवायु परिवर्तन होनो छे ना तो जो धरती को तापमान छे
4: जी
5: वो लगातार बढ़नो छे और वे का कारण हमारा जो ये पानी का स्रोत छ जीव जगत छ जैव विविधता छ वो सब प्रभावित होने जी। तो भाई एक दिन हुई अभी हाँ तो जरा देखा कि अपन पर्यावरण का प्रति हम क्या कह सकता ये बात हम ही कह सकता कि आप था एक गढ़वाल गीत सुना सकता
4: तो आवाज सुन लो आयुष जोशी को गायो गढ़वाली गीत।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन के नए कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलों से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बनें। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
3: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओ, आयुष जोशी को गयो गढ़वाली गीत और रेबारनक बात फिर स्वागत कर लू एक बार आप सब न ग्राम जगत में।
5: और हम ये भी बोलला कि भाई आप अक चिट्ठी पत्र हम तक पहुंचने चंदन भोल एतवार दिन च श्रोताओं का अनुरोध पर कार्यक्रम होलू अपना अपना पसंद का गीत अभी बिट पाया देर था को दी और फटाफट अखरी लगन चाहिए भोल नहीं बैठा सकते आज बैठा
4: बिल्कुल और की अमल के लिए आसानी है जल ढूंढने में।
5: खास बात है कि कह के हर चीज नहीं तो चिट्ठी है ना कह बतीन उनके अगर हाथ तक लेके चिट्ठी चे या पोस्ट कार्ड चे तो वो क्या चे कि भेरी रह जान या खीसान दी रह जान। लेकिन यह हम तो ये चाहिए कंप्यूटर पर जो चीज आ गया से आ गया तो आप अभी बेटे के अपने पसंद को गीत का खातिर हम तो चिट्ठी लिख सकते हैं। और जो हमारे चिट्ठी पत्र को कार्यक्रम च भी प्यारा दिन वे मात आप लोगों की चिट्ठी हम तो चैनी चैनी चैनी
4: जी बिल्कुल पत्ते बता दी नू चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com
5: तो ये पता पर आपक चिट्ठी पत्रियों को सार लगिया छ वहां भरे टक लगा का अपन हम तो चिट्ठी भेजनी और हम आप अपन पैटाना छुआ एक जौनसारी लोकगीत कलाकार छन राहुल वर्मा और दगड़े।

0: श्रोताओं, राहुल वर्मा को गयो जो सारी गीत आप सुनो
1: और अब आप तो बताओ लगे 6 बजे के 50 मिनट तक आपन कखी नहीं जाना है
0: जी
1: तो भारे अजी और छुई लगो लापक दगड़ एक बार फिर
0: होए।
1: से दे लगा दूं लगी हम तो चिट्ठी पत्र भेजा। लेकिन ये भगत आप सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा जिले में फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए तारबाड़ योजना के तहत 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने कहा, महिला समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ग्राम्य विकास पंचायती राज मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग में एक पेड़ गुरु के नाम अभियान का शुभारंभ किया। और आईएमए एसीसी ग्रेजुएशन सेरेमनी में कैडेट्स की शैक्षणिक उत्कृष्टता

सैन्य दक्षता और अनुशासन को सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खेती के साथ साथ उसकी सेहत का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती का सामना कर रही है, ऐसे में किसानों को परिस्थितियों के अनुरूप खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाना होगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड हवालबाग में कृषि विभाग की ओर से आयोजित खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए उनके बैंक खातों में धनराशि भेज रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका

0: है और इसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। उन्होंने अल्मोड़ा जिले में फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए तारबाड़ योजना के तहत 6 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत करने के साथ किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने और फसलों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा।
1: पुरानी समय में विरासत के तौर पर जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया था उसको अपनाने की तरफ लोगों को प्रेरित करना इसका उद्देश्य है और सरकार के प्रयासों से आज ये काम पूरे देश के अंदर लोगों में बहुत बड़ी जागरूकता लाने का काम कर रहा है और उत्तराखंड में भी हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज यहाँ पर ये अभियान शुरू हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे और सच में चूंकि कम कीटनाशकों का उपयोग होगा, कम रसायनों का उपयोग होगा, यूरिया कम से कम जाएगी तो निश्चित रूप से जो अन्न उत्पादित होगा वो अपने आप में औषधिपूर्ण होगा। जैसे हमारे पुराने समय में हमारे पूर्वज जो खेती करते थे वो अन्न भी औषधि जैसा होता था, तो ये हमको नए समय में जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान बढ़ा है उसमें जो हमारे ये पुराने दिए हुए जो मंत्र हैं हमारी संस्कृति है दिशा में आगे बढ़ेगी।
0: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त आज 2 दिवसीय भ्रमण पर मुनस्यारी पहुंचे। इस दौरान पुलिस के जवानों ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध नंदा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर राज्यपाल ने मंदिर परिसर में लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। राज्यपाल ने महिलाओं द्वारा स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि महिला समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों का संरक्षण एवं प्रभावी विपणन ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ स्थानीय पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
2: ये अवसर मिला है मुनस्यारी आने का। मैं पहले भी मुनस्यारी में आया था और मुझे मुनस्यारी पूरे उत्तराखंड में सबसे सुंदर लगता है। एक तो जगह बहुत सुंदर है, प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहाड़ों से, हरियाली से बहुत ही सुंदर है और उसके अलावा जो मुनस्यारी के हर एक जो आत्मा यहाँ पर है वो अपने आप से अलग है। उनकी मेहनत, कार्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं उसमें बिल्कुल अलग है। मैं जब भी यहाँ मुनस्यारी के कोई भी IAS, IPS, लीगल जो अच्छा कर रहे हैं जब मैं उनको मिलता हूँ तो मुझे अत्यंत खुशी होती है। यहाँ पर कार्य करने का ढंग है वो मुनस्यारी का बिल्कुल अलग है। यहाँ की जो महिलाएं, नारी शक्ति है, यहाँ की बेटियां हैं अपने आप से अलग है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
0: प्रदेश के ग्राम्य विकास पंचायती राज मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग के तल्ला नागपुर क्षेत्र के क्वीली गांव में अपने गुरु पंडित पूर्णानंद पुरोहित की जन्मस्थली पर पहुंचकर एक पेड़ गुरु के नाम अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रारंभ हुआ यह अभियान प्रतिवर्ष हरेला पर्व की समाप्ति तक संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है बल्कि नई पीढ़ी को गुरुजनों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है। ग्राम्य विकास मंत्री ने प्रदेश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंगल दलों, स्वयं सहायता समूहों, स्वयंसेवी संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने और इसे देशव्यापी अभियान का स्वरूप देने का आह्वान किया। भारतीय सैन्य अकादमी IMA के आर्मी कैडेट कॉलेज ACC विंग के ACC 126 कोर्स के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया। समारोह में कोर्स की समग्र योग्यता सूची में पहला स्थान पाने वाले WCC नवीन को थल सेना प्रमुख स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। दूसरे स्थान पर रहे CCC अवनीश कुमार मिश्रा को थल सेना प्रमुख रजत पदक और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले WCQM हर्षराज को थल सेना प्रमुख कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। सेवा विषयों में सर्वोच्च प्रदर्शन करने पर CQMS अमनप्रीत सिंह को सेवा प्रशिक्षण में प्रथम सम्मान दिया गया। वहीं शैक्षणिक क्षेत्र में मानविकी संकाय में CCC अवनीश कुमार मिश्रा ने प्रथम स्थान पाया। समारोह के दौरान कमांडेंट ने कैडेट्स को शपथ दिलाई। उत्तरकाशी जिले में मुख्यमंत्री

0: निर्देश एवं जिलाधिकारी के कुशल मार्गदर्शन में संचालित हो रही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब तक 10,35,827 से अधिक श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि चारधाम यात्रा का संचालन सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग से लेकर गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम तक यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगमता के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
1: चारधाम यात्रा कई सैकड़ों सालों से चल रही है और अब प्रशासन में राज्य सरकार और प्रशासन इसको जिला प्रशासन अपने कंट्रोल में इसको हम लोग चाहते हैं कि जो भी सुविधाएं दे पा रहे हैं यात्रियों को वो एक समय पे मिले, उनकी यात्रा सुखद रहे, सुरक्षित रहे और किसी भी तरह का कोई मेजर कोई दिक्कत ना आए, वो हमारे ऑफिसर्स हमारी टीम बना के वो नज़र रखते हैं। तो वर्तमान में अभी किसी भी तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई तो, लेकिन यात्रियों ने और सभी जो श्रद्धालु हैं उन्होंने इसको सराहा भी है कि जो पहले भी आए थे पहले कभी इस यात्रा में, तो उनका ये कहना है कि इस बार व्यवस्थाएं थोड़ा व्यवस्थित थी और यात्रियों का आवागमन भी लगभग 60,000 से 65,000 पिछले साल इस अवधि में अधिक हो गए हैं। अभी भी बुकिंग के हिसाब से होटल एसोसिएशन से बात हुई थी तो उनका भी कहना है कि अभी है उनके पास बुकिंग, धीरे धीरे जून के मंथ में थोड़ा कम होना शुरू होता है लेकिन अभी व्यवस्थित तौर पर चल रहा है।
0: उत्तरकाशी जिले में मुख्यमंत्री के निर्देश एवं जिला अधिकारी के कुशल मार्गदर्शन में संचालित हो रही वहीं परियोजना इकाई के अधिकारी प्रताप मटूडा ने बताया कि दोनों धामों में स्वच्छता को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों में वृद्धि की गई है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने मेला प्रशासन को मॉनसून से पहले कुंभ कार्यों को वरीयता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कुंभ की तैयारियों को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने कहा कि कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां समय से पहले करनी होंगी। बैठक में हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल एवं टिहरी जिले के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेला प्रशासन, रेलवे, दूरसंचार विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा जिले में फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए तारबाड़ योजना के तहत 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने कहा, महिला समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ग्राम्य विकास पंचायती राज मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग में एक पेड़ गुरु के नाम अभियान का शुभारंभ किया। और आईएमए एसीसी ग्रेजुएशन सेरेमनी में कैडेट्स की शैक्षणिक उत्कृष्टता, सैन्य दक्षता और अनुशासन को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओ, उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार नगबाद एक बार आज स्वागत करनू आप सभी जानों को कार्यक्रम ग्राम जगत की दूसर पाली में। श्रोताओ, मैं छुआ पगदगढ़ ममता पांडे 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून केंद्र बठे आप सुनना चाह अपनी बोली भाषा को यो कार्यक्रम। श्रोताओ, बात करनू जी राम जी विकसित भारत की एक प्रमुख ग्रामीण रोजगार और आजीविका योजना के बारे में, जके मनरेगा बेहतर मानी जा और यह मैं अब सरकार कौन छे कि जो मजदूर भाई बहनी और श्रमिक छन उन्हें 100 दिनों के बजाय 125 दिनों की गारंटी रोजगार मिलल, और अगर कोई वजह उन्हें काम करूँ में सरकार असमर्थ रूँ या उन्हें काम नहीं मिलल तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता ले देने सुविधा प्रदान करी जाली, और दूसर समय पर उन्हें जो मजदूरी छे उन्हें खात में आ जल, उन्हें डिजिटली ये में जोड़न पड़ल। अपन जो पंजीकरण छ पूर अपन जो दस्तावेज छन वो सरकारी पोर्टल पे डालन पड़ल, और दूसर उन्हें जो बीच बीच में अगर उनके अवकाश चाहें तो उले वो ली सकनन, और दूसर बात यो छे कि अगर कोई की शारीरिक दक्षता छे कि ये काम मैं नहीं कर सकनूँ या मैं कोई परेशानी छे तो अपन हिसाब वो

काम ले चुन सकनन, यानी कि वे में काम में ले लचीलापन छे, वो जो काम करन चाहनन वो काम कर सकनन। तो श्रोताओ, ये सरकार की जी राम जी योजना छी। और अब आपके हम अघिन के कार्यक्रम के बढ़ावे ले जानू कुमाऊं तरफ, और सुनू दया शंकर फुलारकू गायू कुमाऊनी गीत।

श्रोताओ, दयाशंकर फुलारा को गयो कुमाऊनी गीत आप सब सुनना छा। और अब बात करनू जो हमार गीत छ, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। नांचना में अपूर्ण प्रार्थना सभा में यो गीत हम सब गाछी और 24 जनवरी 1950 के यो गीत के राष्ट्रीय गीतक रूप में दर्ज करी गयो। और यो का जो अर्थ छू छू माँ मुतमन के प्रणाम करूँ। बहुत भल गीत छू और आजकल हर स्कूल में प्रार्थना में यो गीत गाई जा। और सरकार ले बोनी छे कि कोई ले जो राष्ट्रीय पर्व हूँ मैं यो गीत के जरूर गाँच है कि लेकिन यह 150 साल पूरे गिन और यो गीत सुनन में एक मन में शांति और सुकून हमन के मिले। श्रोताओं, यो गीत का दगड़ ही हम बात करनू की भूल छ एतवार। और आपका अनुरोध माँ जो कार्यक्रम हूँ मैं हम आप थे अनुरोध करनू कि आप हमन के चिट्ठी लिखिया चिट्ठी gramjagat@gmail.com पर और हमन के ज़रूर आज चिट्ठी भेज दिया ताकि हम अपन स्टूडियो में खागा लूँ खा का वो गीत छिन। और जो गीत आपके पसंद छू कोशिश करूँ को गीत आपके जरूर सुनाई जाओ। श्रोताओ, हम बात छू कि आप हमन के चिट्ठी लिख सकता चिट्ठी gramjagat@gmail.com पर। श्रोताओ, ये का दगड़ ही अगर हम स्टूडियो की घड़ी में देखनू तो हमारे अब घर जाने का वक्त है गयो। और आज का जो कार्यक्रम छ ग्राम जगत यहीं पे संपन्न करने की ममता पांडे के दिया अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत FM 100.5 MHz पर या आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब प्रस्तुत है गढ़वाली प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटिन गढ़वाली मा प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मी संजना अवस्थी।

पहली मुख्य समाचार। ग्राम्य विकास पंचायती राज मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग में एक पेड़ गुरु के नाम अभियान को शुभारंभ करी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कार्यालयों और विभागों में संबंध सभी शिक्षक कर्मियों की संबंधता समाप्त करने का निर्देश दिए। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी का 196 पदों का वास्ता भर्ती प्रक्रिया शुरू करयाल। और मौसम विज्ञान केंद्र का अनुसार 11 जून तक प्रदेश भर में मौसम बदलियों रोलू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश का ग्राम्य विकास पंचायती राज मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग का तल्ला नागपुर क्षेत्र का कुइली गांव में अपड़ा गुरु पंडित पूर्णानंद पुरोहित की जन्मस्थली पर पहुंचते एक पेड़ गुरु के नाम अभियान को शुभारंभ करी। ये अवसर पर उन बॉयल की विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रारंभ हुए यु अभियान प्रतिवर्ष हरेला पर्व की समाप्ति

संचालित किए जालू। अभियान को उद्देश्य केवल पौधारोपण तक सीमित नीच, बल्कि नई पीड़ितें गुरुजनों का प्रति सम्मान, कृतज्ञता और पर्यावरण संरक्षण का प्रति जागरूक कनु भी छ। ग्राम्य विकास मंत्री ने प्रदेश का सभी पंचायत प्रतिनिधि, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं से ई मुहिम तय जन जन तक पहुंचाण और ये देशव्यापी अभियान को स्वरूप देना को आह्वान करी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बोयल की शिक्षा विभाग का अधीन विद्यालय, कार्यालय और विभाग मा संबंध सभी शिक्षक कर्मियों तय वापस अपना विद्यालयों मा भेजी जालू। उन अधिकारियों तय 30 जून तक सभी प्रकार की संबंधता समाप्त करने का निर्देश दिनी। उन दूसरा कार्यालयों मा तैनात शिक्षणेतर कर्मचारी का संबंधीकरण आदेश भी

0: यहां से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने लगी। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों तय शिक्षणेतर कर्मिकों का सभी संबंधीकरण आदेश भी तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्देश दिनी। आगामी मानसून सीजन का दौरान संभावित आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटण का वास्ता उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा ने महत्वपूर्ण पहल करी छ। प्रदेश में चारधाम यात्रा का वास्ता संचालित प्रत्येक हेली कंपनी का द्वारा यूकाडा तय 10-10 घंटा की निःशुल्क फ्लाइंग ओवर उपलब्ध कराया जाना छ, जोको उपयोग आपदा प्रबंधन राहत और बचाव कार्यों में किए जाणो। वर्तमान में चारधाम यात्रा में संचालित 8 हेली कंपनियों द्वारा कुल 80 घंटा को निशुल्क फ्लाइंग ओवर उपलब्ध करायो जाणो छ। यो घंटों को उपयोग मेडिकल इमरजेंसी, एयर रेस्क्यू और दुर्गम क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने का वास्ता होणो छ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्देशों का अनुरूप प्रदेश में सुरक्षित और प्रभावी आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में यूकाडा की यह पहल एक अभिनव मॉडल को रूप में उभरने छ। यूकाडा का मुख्य अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताई कि यह व्यवस्था आपदा प्रबंधन का साथ साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी अति प्रभावी सिद्ध होनी छ।
1: संबंध में हम लोगों ने अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में या जो बिड की गई थी उसमें एक क्लॉज रखा गया था जिसमें 10 आवर्स पर कंपनी हम लोग इस तरीके के मिसलेनियस जो टास्क होते हैं हमारे पास में या इमरजेंसी सिचुएशन होती है मेनली जिसमें अगर हम बात करें तो कार्डियक अरेस्ट होना है या किसी भी किस्म की हाई ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड इशूज़ या एज लोगों को कई बार मेडिकल इमरजेंसी में हमें वापस नीचे लाना होता है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से, तो इस संबंध में ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। और कहीं ना कहीं अभी भी अगर हम बात करें तो कई सारे लोगों की जान बचाने में इन आर्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है।
0: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शनिवार को 2 दिवसीय भ्रमण पर मुनस्यारी पहुंची। ये दौरान पुलिस का जवानों ने राज्यपाल तय गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करी। 2 दिवसीय प्रवास का दौरान राज्यपाल विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेला और क्षेत्र की विकास और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करला। साथ ही उन स्थानीय जनप्रतिनिधि अधिकारी व विभिन्न वर्गों का लोगों से संवाद कर क्षेत्रीय विकास जनकल्याण और सीमांत क्षेत्रों से जुड़िया विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त करला।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणे आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड ते फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी का 196 पदों का वास्ता भर्ती प्रक्रिया शुरू करियाल। यह पदों का वास्ता 12 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू होला। बोर्ड की ओर से जारी भर्ती विज्ञप्ति का अनुसार नर्सिंग अधिकारी का कुल 196 पदों में अनुसूचित जाति की 21, अनुसूचित जनजाति की 4, अन्य पिछड़ा वर्ग की 11, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 7 और सामान्य वर्ग की 153 पदों पर भर्ती होली। सेवा चयन बोर्ड स्वास्थ्य विभाग ने आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 जुलाई निर्धारित करी छ। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 3 दिन तय बरखा को अलर्ट जारी करया। मौसम विभाग देहरादून का मुताबिक 7 जून तय प्रदेश का पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में तेज बरखा हो सकती। मौसम विभाग का अनुसार ये दौरान 40-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा भी चली सकती। आने वाला दिनों की बात करनी तो मौसम विज्ञान केंद्र का अनुसार 11 जून तक प्रदेश भर में मौसम बदलू रोलू।
3: 6 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा मिल सकती है। 7 तारीख से एक्टिविटी कम होने की संभावना है, तो 7, 8, 9 में जो है उत्तराखंड में रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड के विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, यहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की और एक का दुका स्थानों पर मध्यम वर्षा भी मिल सकती है। तो जैसे मेन एक्टिविटी आज है 5 तारीख, तो इसके लिए जो है चेतावनी भी जारी की गई है, जिसमें जो उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी या नैनीताल या फिर पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही इन जनपदों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है।
0: शासन ने पुलिस विभाग में फेरबदल कर दी हुई

0: नौ पुलिस महानिरीक्षक समेत कुल 13 आईपीएस अधिकारियों का प्रभार मां बदलाव करियाल, जबकि 5 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किए गए। आईपीएस निवेदिता कुकरेती तय कुमाऊं रेंज का पुलिस महानिरीक्षक बनाई गई। आईपीएस जितेंद्र चौधरी तय देहरादून को यातायात पुलिस अधीक्षक बनाई। वकी कुमाऊं की आईजी रिद्धि अग्रवाल तय आईजी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दिनी। आईजी विमित तय पुलिस दूरसंचार व फायर सर्विस को प्रभार दिए गई। आईजी कृष्ण कुमार वी के आईजी यातायात व जीआरपी बनाई गई। वकी पुलिस महानिरीक्षक अनंत शंकर ताकवाले तय आईजी प्रशिक्षण का साथ साथ आईजी सीआईडी बनाई गई। पौड़ी जिला का राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार में बीएड प्रशिक्षुओं ने भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता को एक अद्भुत मेल को प्रदर्शन करी। ये दौरान छात्रों ने उत्तराखंडी भोज का साथ साथ पंजाबी मराठी दक्षिण भारतीय पकवान का साथ है विभिन्न राज्यों की परंपरागत परिधानों को प्रदर्शन कर विविध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शन करी। ये अवसर पर विद्यालय महाविद्यालय का प्राचार्य डॉक्टर डीएस नेगिन बॉयल की यन प्रकार का कार्यक्रमों से बच्चों में दूसरा राज्यों की संस्कृति वख की सभ्यता और रीति रिवाज का विषय में प्रयोगात्मक रूप से जानकारी मिली। उन बॉयल की यन प्रकार का कार्यक्रम भारतीय संस्कृति अनेकता की एकता मां प्रदर्शित कन वाली संस्कृति छ। भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए का आर्मी कैडेट कॉलेज एसीसी विंग का एसीसी 126 कोर्स का दीक्षांत समारोह को आयोजन हुए। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला कैडेटों तय सम्मानित किए गए। समारोह में कोर्स की समग्र योग्यता सूची में पहली स्थान पाणवाला डब्ल्यूसीसी नवीन तय थल सेना प्रमुख स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। दूसरा स्थान पर सीसीसी अवनीश कुमार मिश्रा तय थल सेना प्रमुख रजत पदक और तृतीय स्थान प्राप्त कनवाला डब्ल्यूसीक्यूएम हर्षराज तय थल सेना प्रमुख कांस्य पदक से सम्मानित किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक दा फिर। ग्राम्य विकास पंचायती राज मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग में एक पेड़ गुरु के नाम अभियान को शुभारंभ करी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कार्यालयों और विभागों में संबंध सभी शिक्षक कर्मियों की संबंधता समाप्त करने का निर्देश दिनी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी का 196 पदों का वास्ता भर्ती प्रक्रिया शुरू करयाल। और मौसम विज्ञान केंद्र का अनुसार 11 जून ते प्रदेश भर में मौसम बदलियों रोलू। ये का साथ है गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

नमस्कार श्रोताओं, आज है शनिवार और हर बार की तरह हम लेकर आए हैं आपके लिए आपका लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी। मैं हूं आपकी अपनी मित्र शिप्रा और अगले कुछ समय तक हम करेंगे आपसे बहुत सारी बातें और साझा करेंगे ग्रामीण जीवन और कृषि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। बात करेंगे आप ही में से कुछ श्रोताओं से और सुनेंगे आपके पसंदीदा लोकगीत और रागनियां। श्रोताओं, इन दिनों खेतों में नई फसलों की तैयारी का समय चल रहा है। किसान भाई बहन खरीफ की बुआई की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे एक ऐसी पारंपरिक फसल की जो हमारी पहाड़ी संस्कृति, स्वास्थ्य और कृषि अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है मंडुवे की खेती। मंडुवा, जिसे रागी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड सहित कई पर्वतीय क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण फसल है। यह कम पानी में आसानी से उग जाती है और कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि बदलते मौसम और जलवायु की चुनौतियों के बीच मंडुवे की खेती किसानों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनती जा रही है। श्रोताओं, हमारे बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि मंडुवा केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि सेहत का खजाना है। मंडुवे में कैल्शियम, आयरन, फाइबर और अनेक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आज के समय में

0: जब लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं, तब मंडुवे से बने उत्पादों की मांग शहरों में भी तेजी से बढ़ रही है। मंडुवे की रोटी, बिस्किट, कुकीज और अन्य खाद्य पदार्थ लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। इसके बारे में हम और बात करेंगे, पर उससे पहले लोकमंजरी के अंतर्गत बज रही है हमारी फोन की घंटी। आइए सुनते हैं हमारे पहले आज के कॉलर कौन है।
1: हेलो लोकमंजरी,
0: नमस्कार लोकमंजरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं सर?
1: उत्तर प्रदेश जिला फैमिली से गुलजार बात कर रहा हूँ जी।
0: गुलजार जी नमस्कार, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गुलजार जी क्या करते हैं आप?
1: मैं उर्दू की पढ़ाई करता हूँ। हाँ, उर्दू की पढ़ाई करता
0: अच्छा, आप
1: हूँ।
0: उर्दू की पढ़ाई करते हैं। अच्छा, और आपके परिवार में सब लोग क्या करते हैं? आपके कुछ खेती बाड़ी भी है आपकी कि आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं?
1: बस पौधे लगा रखे हैं, इन्हें पानी देते रहते हैं, उन्हीं की मलाई करते रहते हैं जी।
0: अच्छा, और किन चीजों के पौधे लगा रखे हैं आपने?
1: मरवे का पौधा लगा रखे हैं, अंजीर का पौधा लगा रखा है, और ये पाम का पौधा लगा रखा है, चांदनी का, सदाबहार का, ये पौधे लगा रखे
0: अरे वाह,
1: हैं जी। केले का पौधा लगा रखा है।
0: केले का पौधा भी लगा रखा। तो मंडवे के जो अपने पौधे लगा रखे हैं उससे आपको कुछ मिल जाता है, मतलब कुछ उपज मिलती है घर में इस्तेमाल करने लायक?
1: जी, घर में उपाय करने लायक कुछ नहीं मिलता, बस सजावट के लिए। वैसे यह सुंदर लगते
0: अच्छा,
1: हैं।
0: इसलिए लगा रखे हैं। चलिए गुलजार जी, आपने कार्यक्रम में लोकमंजरी में फोन किया है, तो आप अपनी पसंद का कोई लोकगीत या रागिनी सुनना चाहते हैं?
1: हाँ, मैं कोई हरियाणवी लोकगीत सुनवा दीजिए दीदी।
0: हरियाणवी लोकगीत? चलिए ठीक है, तो हम आपके लिए कोई हरियाणवी लोकगीत जरूर बजाएंगे, और आपने कार्यक्रम में कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम।
0: तो गुलजार जी की फरमाइश पर प्रस्तुत है ये हरियाणवी लोकगीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
4: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
5: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
6: श्रोताओं, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अगले कॉलर।
7: हाँ जी मैडम, नमस्कार।
6: नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं?
7: मैडम मैं छुटमलपुर से बात कर रहा हूँ, जोगिंदर नाम है मेरा।
6: नमस्कार जोगिंदर जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या करते हैं आप?
7: मैडम धन्यवाद जी। मैडम देखिए, काम तो हमारा ऐसे ही है, किसान ही है हम तो ऐसे।
6: अच्छा, तो किस चीज की खेती करते हैं आप
7: जी? हमारा तो आम के बाग का काम है मैडम जी।
6: अच्छा,
7: आम के बाग, छोटे मोटे और भी काम है। हाँ जी, हाँ जी।
6: अच्छा, अब तो फल लगने लग रहा होगा आम के पेड़ों में आपके।
7: हाँ मतलब आप तो तैयार होने वाले हैं, हम मतलब इस महीने के आखिरी तक हो जाएंगे आम।
6: चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने लोकमंजरी कार्यक्रम के अंतर्गत फोन किया था, तो जोगिंदर जी ये बताइए आप कौन सा लोकगीत सुनना चाहते हैं?
7: कोई भी रागिनी सुना दीजिए। और
6: कोई भी रागिनी, ठीक है।
7: हाँ जी
6: चलिए ठीक है, आपने कार्यक्रम में फोन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
7: जी मैडम जी।
6: तो आइए लोकमंजरी में आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस रागिनी का।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोता, हम लोग बात कर रहे थे मंडुवे की खेती के बारे में। यदि खेती की बात करें तो मंडुवे की बुआई मानसून की शुरुआत के साथ जून से जुलाई के बीच हो जाती है। अच्छी तरह खेत और पर्याप्त जैविक खाद इसे बेहतर उत्पाद में सहायक होती है। यह फसल अधिक पानी की मांग नहीं करती और अपेक्षाकृत कम लागत में तैयार हो जाती है। साथ ही इसमें कीट और रोगों का प्रकोप भी कम देखने को मिलता है, जिससे किसानों का खर्चा कम हो जाता है। समय समय पर निराई गुड़ाई और खेत की उचित देखभाल करने पर लगभग 4 से 5 महीने में फसल तैयार हो जाती है। वर्तमान समय में सरकार भी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है और मंडुवे को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए एक फसल आय बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। तो श्रोताओं, यदि आप खेती में कम लागत और बेहतर लाभ वाले विकल्प तलाश रहे हैं तो मंडुवे की खेती निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। साथ ही यह हमारी पारंपरिक कृषि विरासत को भी सहेजने का एक सुंदर माध्यम है। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ने का समय हो गया है और आगे बढ़ते हुए आइए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से। नमस्कार सर, कौन बात कर रहे हैं?
3: रमेश बात कर रहा हूँ।
2: रमेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: मैं देहरादून से बात कर रहा हूँ।
2: देहरादून से कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रमेश जी, क्या करते हैं आप?
3: मैं अपने काम है मेरे यहाँ पे देहरादून में।
2: अच्छा, रमेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप देहरादून में रहते हैं, अभी आजकल मौसम बहुत बदल रहा है, दिन में गर्मी हो जाती है, शाम को सर्दी हो जाती है, तो अपनी सेहत के लिए कुछ करते हैं आप इस वक्त अपने आप को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए?
3: हाँ, हम व्यायाम करते हैं डेली, वॉक कर लिया, साइकिलिंग कर ली, एक्सरसाइज योगा कर लिया।
2: चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जब सेहत का अपना ध्यान रखते हैं तो क्या खान पान पे भी आप विशेष ध्यान रखते हैं?
3: पान में तो घरेलू खाना ही ज्यादा हम वो करते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते।
2: अच्छा, जैसे आजकल हमारी सरकार भी मंडुवे को, मोटे अनाज को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, तो जी, आपको क्या लगता है कि हाँ ये बात कितनी सही है, मोटा अनाज खाना हमारी सेहत लिए कितना अच्छा है?
3: बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो अब ये सरकार हमारा जो है मोटे अनाज को इतना प्रमोट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। कि हम तो पिछले कुछ समय में भूल चुके थे कि ये कुछ होता भी है।
2: बिल्कुल,
3: अब जब से ये आ रहा है हमारा, मतलब हम भी खाते हैं हफ्ते में 2-3 बार कभी मंडुवे की रोटी, आजकल तो मंडुवे के मोमो नूडल्स भी मिल रहे हैं, तो बच्चों को भी हम कोशिश करते हैं वो खिला दें।
2: ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली, क्योंकि आज की डेट में मंडुवा जो है वो काफी सेहत के लिए भी अच्छा है और इसको अलग अलग तरीके से मार्केट में लाया जा रहा है, जिससे कि बच्चे भी इसको खा सकें और अपनी सेहत को तंदुरुस्त रख सकें, है ना? तो आपने कार्यक्रम में कॉल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रमेश जी से भी हमने अभी बात करी मंडुवे के बारे में और उन्होंने बताया कि कैसे आज के बच्चे मंडुवे से बने खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो इसी के साथ आइए, प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत।

तो इसी के साथ श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारा आप सभी से विदा लेने का, पर जाते जाते हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, जो बताने के लिए आप हमें पत्र भेज सकते हैं। और पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र देहरादून 248001। आप हमें कॉल द्वारा भी अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके लिए हमारा फोन नंबर है 7088001382। हमें आपके पत्रों का, आपके सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ अपनी दोस्त शिप्रा को आज्ञा दें, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत FM 100.5 MHz पर या आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार उपदगण मी योगिता बिष्ट। पहली मुख्य समाचार। ग्राम्य विकास पंचायती राज मंत्री भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग में एक पेड़ गुरु के नाम अभियान का शुभारंभ करो। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्विदिनी भ्रमण पर मुंशारी पूजी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल कार्यालयों और विभागों में संबद्ध सभी शिक्षक कर्मियों संबद्धता समाप्त करने का निर्देश दी और औषधि निरीक्षक बागसुरल जिला चिकित्सालय बागसुरक औषधि भंडारक औचक निरीक्षण करो। अब समाचार विस्तारल। प्रदेशक ग्राम्य विकास पंचायती राज मंत्री भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयागक तल्ला नागपुर क्षेत्रक कुली गांव अपन गुरु पंडित पूर्णानंद पुरोहितक जन्मस्थली पर पुंजबेर एक पेड़ गुरु के नाम अभियानक शुभारंभ करो। यह मौके पर उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू है यह अभियान हर साल हरेला पर्वक समाप्ति तक संचालित करी जाल। अभियानक उद्देश्य केवल पौधरोपण तक सीमित नहीं बल्कि नई पीढ़ी के गुरुजनों के प्रति सम्मान कृतज्ञता और पर्यावरण संरक्षण प्रति जागरूक कर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी 196 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर है। यूं पदों के लिए 12 जून बटी ऑनलाइन आवेदन शुरू हाल। बोर्ड को और बटी जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार नर्सिंग अधिकारी कुल 196 पदों में अनुसूचित जाति 21, अनुसूचित जनजाति 4, अन्य पिछड़ा वर्ग 11, आर्थिक रूपल कमजोर वर्ग 7 और सामान्य वर्ग 153 पदों पर भर्ती है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 जुलाई निर्धारित करी जा रही। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शनिवार हते द्विदिनी भ्रमण पर मुंशारी पूजी। एक दौरान पुलिसक जवानों राज्यपाल के गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करो। द्विदिनी प्रवासक दौरान राज्यपाल विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्से लियाल और क्षेत्रक विकास और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा कराल। एक दगड़ स्थानीय जनप्रतिनिधियों अधिकारियों और जनता हते संवाद ले कराल।
2: मुझे अवसर मिला है मुंशियारी आने का। मैं पहले भी मुंशियारी में आया था और मुझे मुंशियारी पूरे उत्तराखंड में सबसे सुंदर लगता है। एक तो जगह बहुत सुंदर है, प्राकृतिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहाड़ों से, हरियाली से बहुत ही सुंदर है। और उसके अलावा जो मुंशियारी के हरेक जो आत्मा यहाँ पर है वो अपने आप से अलग है। उनकी मेहनत, कार्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं उसमें बिल्कुल अलग है। मैं जब भी यहाँ मुंशियारी के कोई भी IAS, IPS, लीगल जो अच्छा कर रहे हैं जब मैं उनको मिलता हूँ तो मुझे अत्यंत खुशी होती है। यहाँ पर कार्य करने का ढंग है वो मुंशियारी का बिल्कुल अलग है। यहाँ की जो महिलाएं नारी शक्ति है, यहाँ की बेटियाँ हैं, अपने आप से अलग है।
1: आनवल मानसून सीजन के देखते हुए संभावित आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों हेते प्रभावी ढंगल निपटना के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडाल महत्वपूर्ण पहल कर रहे। प्रदेशम चारधाम यात्रा के लिए संचालित हर हेली कंपनी बटी यूकाडा के 10-10 घंटक निःशुल्क फ्लाइंग आवर उपलब्ध कराई जा रही, जिन्हें उपयोग आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों में करी जा रो। वर्तमान में चारधाम यात्रा में संचालित 8 हेली कंपनियों द्वारा कुल 80 घंटक निःशुल्क फ्लाइंग आवर उपलब्ध कराई जा रही। इन घंटों का उपयोग मेडिकल इमरजेंसी, एयर रेस्क्यू और दुर्गम क्षेत्रों में राहत सामग्री पुजाणक लीजी करी जा रो। यूकाडा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहानल बता कि यह व्यवस्था आपदा प्रबंधनक दगड़ दगड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रभावी साबित हो रहे।
3: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल को कि शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों कार्यालयों और विभागों में संबंध सब शिक्षक कर्मियों के वापस अपन विद्यालयों में भेजी जाल। उन्होंने अधिकारियों के 30 जून तक सब प्रकारक संबंधता समाप्त करनक निर्देश दिरी। उन्होंने दूसर कार्यालयों में तैनात शिक्षणेतर कर्मचारियों के संबंधीकरण आदेश ले निरस्त करनक निर्देश दी। श्री रावतल विभागीय अधिकारियों की बैठक में अधिकारियों के शिक्षकों के संबंधता तत्काल समाप्त कर बेर उनके विद्यालयों में भेजना निर्देश दिरी। डॉक्टर रावतल को की अधिकांश संबद्धता केवल एक शैक्षणिक सत्र लीजी छी, लेकिन कई शिक्षक और कर्मचारी सालों बटी अपन मूल विद्यालयों बटी दूर कार्यरत छी। येल नंतिनों पढ़ाई प्रभावित हो रहे। शिक्षा मंत्री अधिकारियों के शिक्षणेतर कार्मिकों सब संबंधीकरण आदेश ले तत्काल प्रभावल निरस्त करनक निर्देश दी। विश्व पर्यावरण दिवसक मौके पर पिथौरगढ़ जिलक विभिन्न स्थानों पर वन विभाग और 130 इको टास्क फोर्सक संयुक्त तत्वाधान में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करी गई। यह मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में जिलाधिकारी आशीष भंडगायल को कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिनक विषय नहीं बल्कि हर नागरिकक सतत जिम्मेदारी छो। उन्होंने स्कूली नांतिनु हेते ज्यादा पौधरोपण जल संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण कम करण में सक्रिय भूमिका निभाणक आह्वान करो। कार्यक्रमक तहत पौधरोपण करबे हरित और स्वच्छ पर्यावरण संदेश दियो।
4: पर्यावरण दिवस पे जनपद के अंतर्गत कई जगहों पे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सभी से यही कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, साथ ही साथ प्लास्टिक से भी दूर रहना चाहिए, तो इसका भी संदेश है वो प्रसारित किया जा रहा है और सबको मिलकर काम किया जाना चाहिए, सब करना चाहिए और आसपास अपना जो एनवायरमेंट है उसमें स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, तो यही संदेश दिया जा रहा है। इसी के क्रम में जनपद मुख्यालय में भी कार्यक्रम जो है फॉरेस्ट के द्वारा, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा और इको टास्क फोर्स जो कार्यरत है पिथौरागढ़ में उनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें मेरे द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।
3: वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर नैनीताल प्राणी उद्यान में पौधरोपण भाषण और नृत्य नाटिका प्रतियोगिता का आयोजन करेगो। बक्सरम जन स्वास्थ्य और रोगी सुरक्षा के सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए औषधि निरीक्षक बक्सर पूजा रानील जिल चिकित्सालय बक्सरक औषधि भंडारक औचक निरीक्षण करो। निरीक्षण दौरान औषधियों का भंडारण संरक्षण और वितरण व्यवस्था गहन परीक्षण करेगो। निरीक्षण उन्होंने मन प्रभावी औषधियों के सुरक्षित रूपल तावबंद अलमारी में संग्रहित और अवसान अवधि पूर्ण कर चुकी औषधियों के अलग करबे सुरक्षित और तावबंद एक्सपायरी बॉक्स में रखना का निर्देश दी। यह कदगढ़ औषधि भंडार प्रभारी के औषधियों का सुरक्षित भंडारण और वितरण हेबे संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दी। भारतीय मौसम विभाग उत्तराखंड में तीन दिनों के लिए ड्यूक अलर्ट जारी कर रहा। मौसम विभाग देहरादून के मुताबिक 7 जून तक प्रदेशक पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में तेज द्यो है सकूं। मौसम विभाग के अनुसार यो दौरान 40-60 किलोमीटर प्रति घंटक रफ्तारल तेज पौन ले चल सकी।
5: 6 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा मिल सकती है। 7 तारीख से एक्टिविटी कम होने की संभावना है, तो 7-8-9 में जो है उत्तराखंड में रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड के विशेषकर उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली पिथौरागढ़ बागेश्वर यहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की और इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम वर्षा भी मिल सकती है। तो जैसे मेन एक्टिविटी आज है 5 तारीख, तो इसके लिए जो है चेतावनी भी जारी की गई है जिसमें जो उत्तराखंड के देहरादून टिहरी पौड़ी या नैनीताल

0: या फिर पिथौरागढ़ बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही इन जनपदों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है।
1: हल्द्वानी रामपुर रोड स्थित एक कंपनी के स्टोरूम भीषण आग लागनल स्टोरूम शे रही द्वि कर्मचारियों दम घुटनल और जलबेर मौत हो गई। देर रात तक मौके पर दमकल और पुलिस फोर्स तैनात रहे। जानकारी के अनुसार बे देर रात करीब 11:30 बजे स्टोरूम आग लग गई। सूचना पर दमकलक दगड़े एसपी सिटी दलबलक दगड़ मौके पर पहुंची और आग बुझाई गो। अंत में मुख्य समाचार एक बार आय सुनो। ग्राम्य विकास पंचायती राज मंत्री भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग में एक पेड़ गुरु के नाम अभियानक शुभारंभ करो। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्विदिनी भ्रमण पर मुंशारी पूजी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल कार्यालयों और विभागों में संबद्ध सभी शिक्षक कर्मियों को संबद्धता समाप्त करना निर्देश दी और औषधि निरीक्षक बाक्षरल जिला चिकित्सालय बाक्षरक औषधि भंडारक औचक निरीक्षण करो। यह तगड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो अंक समाप्त हो। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बातचीत।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
3: श्रोताओं नमस्कार। ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जशपुर जिले की सरडीह ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं श्री रामजी भगत, जो कि सरपंच हैं सरडीह ग्राम पंचायत के। भगत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
4: थैंक यू सर, धन्यवाद आपको।
3: भगत जी, राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक पुरस्कार मिला है, जिसकी उपलब्धि आपकी पंचायत को देश भर में एक अलग पहचान दिलाती है। तो जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी, तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
4: मैं तो सरपंच हूं, लेकिन मेरे ग्राम और जितने भी हमारे जन प्रतिनिधि हैं, वो भी खुशी के झूम उठे। और मेरे जनपद के अधिकारी, जिले के अधिकारी ने भी इस राष्ट्रीय लेवल का तृतीय स्थान, जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरडी विकासखंड बगीचा जिला जशपुर को मिला, उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे और ग्रामवासी भी और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस मुकाम पे पहुंचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खुचा है, आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले, उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुंच पाए, उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
3: सरपंच जी, जब आपने इस काम को करना शुरू किया, तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ थी, और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया? और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीकी स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
4: बहुत सारा कठिनाई था। कठिनाई को झेलते हुए, हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास, हमारे गांव में, और जंगल है, पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर, हम लोग का जन प्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए और उनका मैं सपोर्ट लिया। और हर मोहल्ला में लोककर सभा किए, बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है। और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्वर समूह को दिए, और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में 4 बार, और हम लोग पूरे गांव जनभागी के द्वारा सहयोग, पूरे गांव के हम लोग साफ सफाई करते हैं। और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमारे सपोर्ट में जन प्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए, इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
3: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर
4: मेरा सहयोग दिए।
3: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है, तो 100% सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौती आपके सामने थी?
4: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है, कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था, काहे कि हम लोग को आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं, पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं। और धीरे धीरे हम लोग लोककर सभा, जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक, हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से, अब हम लोग पंच के माध्यम से, अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था, तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है। उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए, लगन किए, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे।
3: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
4: जल संरक्षण के लिए केरड़ा विभाग मेरा सहयोग किए, और पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था, उस समय मैंने केरड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया, इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया, इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
3: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं, इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
4: सर, बहुत सारा चुनौती है, जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं, जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए, उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है, इसकी हम लोग पानी की बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए, और पिछले 5-10 साल टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप के माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है। और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सुक्ता गड्ढा जो बोलते हैं, अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं, 2.5 मीटर का, 2 मीटर का, 1 मीटर का। उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहे अभी वाला जो हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं, नहाते धोते हैं, उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के वजह बढ़ रहा है।
3: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
4: सर, मैं पहले माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, जल ग्रहण समय में माइक्रो वाटर शेड में काम किया। माइक्रो वाटर शेड का ही मतलब है कि तो वाटर पानी को इकट्ठा करना, और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब कि उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे, उसमें क्या है कि पानी का पर्कुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैडपंप है, उसमें पानी वही पानी आता है, बरसात का पानी।
3: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
4: सर, पहले हम लोग यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, क्या है कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं। हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है आने वाला पीढ़ी के लिए, हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए, और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
3: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है, मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
4: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय, हम लोग पहले भी जैसे माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था, उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए, उनमें से हमको जिला प्रशासन की सहयोग से पैसा दिए, और जनपद से भी कुछ पैसा, और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग वृक्षारोपण लगाए।
3: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
4: सर, आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए। अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे,
3: मतलब उसके लिए भी आपने कार्य योजना
4: तैयार कर रहे हैं।
3: और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
4: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, क्या उसको हम लोग बनाते नहीं है, उसको हम खुद नहीं बनाते हैं, तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग को इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए हैं। वहाँ हम लोग का मतलब कि गांव में कोई प्लास्टिक मुक्त तो है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
3: इस तरह की जो गतिविधियां, खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहाँ पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
4: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्वर सहायता समूह को, उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं, और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है,
3: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
4: और सप्ते में हम जैसे हम लोग पूरे गाँव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का

0: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
1: सर, केडा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केडा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहा है
0: जी
1: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी को भी
0: जी
1: तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहे हैं।
0: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए?
1: विगत आने वाला समय में और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता।
0: यानी प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ, इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं?
1: सर, उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
0: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती हैं, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
1: सर, हमारे पास बहुत सारा समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है, एकदम सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं
0: जी
1: और सारा समस्या का हल मैं इस्मिनार से उठता हूँ, बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, उसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है, तो मैं इस्मिनार से उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ। मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से चाहे जिला स्तर से उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
0: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
1: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी है जो लगता है सचिवालय।
2: श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम प्रकृति की बातचीत यहीं पर संपन्न हुई। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम RNU देहरादून की प्रस्तुति योजना संवाद।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी देहरादून के विशेष कार्यक्रम मोदी सरकार के 12 साल वाइब्रेंट विलेज योजना से समृद्ध होते उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सिंह
1: और मैं हूं जयवीर। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार की उस महत्वाकांक्षी पहल की जिसने देश के सीमावर्ती गांव में विकास की नई ऊर्जा का संचार किया है। ये पहल है वाइब्रेंट विलेज योजना।
0: बिल्कुल जयवीर, उत्तराखंड जो चीन और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा राज्य है, वहां के अनेक सीमांत गांव वर्षों तक दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, सीमित सुविधाओं और पलायन जैसी चुनौतियों से जूझते रहे, लेकिन अब इन गांव में विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है।
1: जी रविंद्र, वर्ष 2023 में शुरू की गई वाइब्रेंट विलेज योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना और वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। साथ ही ये योजना सीमांत क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है।
0: उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों के अनेक गांव इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चौमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गांवों की तस्वीर सवरने जा रही है।
3: हमारे गांव को जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है, इससे निश्चित है कि यहां का विकास होना चाहिए। जैसे
2: जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
4: इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी।
2: स्थानीय हस्तकला को यहां बढ़ावा मिलेगा, पर्यटक आएंगे तो

0: मदद की है। साथ ही पर्यटन गतिविधियों को नया विस्तार मिला है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर सृजित हुए हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार ने भी सीमांत गांवों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ रहे हैं, ग्रामीण डिजिटल सेवाओं का लाभ ले रहे हैं और स्थानीय उद्यमियों को अपने उत्पादों के लिए नए बाजार उपलब्ध हो रहे हैं। सही कहा रविंद्र, वाइब्रेंट विलेज योजना स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रही है। राजमा, मंडुआ, झंगोरा, चौलाई जैसे पारंपरिक उत्पादों के साथ साथ बागवानी और औषधीय पौधों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण और विपणन सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं। दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों को सशक्त बनाया जा रहा है, जबकि विद्यालयों में डिजिटल संसाधनों और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। रविंद्र जी, सीमांत गांव हमारी सांस्कृतिक विरासत के संवाहक हैं, इसलिए योजना के तहत स्थानीय संस्कृति, लोक कला, पारंपरिक ज्ञान और ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे स्थानीय पहचान मजबूत हो रही है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।
1: जयवीर, हमने वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के विभिन्न सीमावर्ती जिलों में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा की
0: जी।
1: अब बात करते हैं उत्तरकाशी जिले की, जहां इस योजना के सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: हर्षिल, मुखबा, धराली, बगोरी, जादुंग और नेलांग जैसे सीमांत गांव सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ सड़क संचार, पेयजल और पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों का जीवन आसान हुआ है। ग्राम प्रधान झाला अभिषेक रौतेला ने इस पर अपनी बात रखी है, वो भी अपने श्रोताओं को सुनाते हैं।
0: बिल्कुल,
2: वाइब्रेंट विलेज योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती गाँव में जो बुनियादी विकास है उसको गति देना है। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से सीमावर्ती गांवों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे कि सड़क, पानी, बिजली और पर्यटन से संबंधित जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनका तेजी से विकास हो रहा है, जिससे कि सीमावर्ती गांवों से पलायन रुकने में मदद मिल रही है और लोगों के जीवन स्तर में भी काफ़ी सुधार हो रहा है। केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले भविष्य में जो है ये जो वाइब्रेंट विलेज योजना है ये और अधिक प्रभावी सिद्ध होगी।
0: उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी अपने प्राकृतिक सौंदर्य, सेब उत्पादन और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत यहाँ पर्यटन और होम स्टे गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से ग्रामीणों की आय में वृद्धि हो रही है। साथ ही स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजारों से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को अपने गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इन्हीं सब पर बगोरी के पूर्व प्रधान भगवान सिंह राणा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
3: सर्वप्रथम मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने जादुंग गांव को बसाया जा रहा है बैडमिंटन विलेज के अंतर्गत और वहां पर सारे मूलभूत सुविधाएं दिया जा रहा है और हम चाहते हैं कि नीलम को भी बैडमिंटन विलेज के अंदर बसाया जाए और वहां भी विकास किया जाए और साथ में हमारे सीमांत गांव के जितने 8 गांव हैं यहां पर भी बैडमिंटन विलेज से कई कार्य चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हमें आशा है कि और अच्छा कार्य करेगा। मोदी सरकार के 12 साल होने पर उन्हें हमें बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद देना चाहते हैं।
1: विकास की इन पहलों से सीमांत गांव में पलायन की गति कम करने में भी मदद मिल रही है। जब गांव में बेहतर सुविधाएं और रोजगार उपलब्ध होंगे तो लोग अपने क्षेत्र में ही रहकर समृद्ध जीवन जी सकेंगे। आइए सुनते हैं इस विषय पर गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश चौहान क्या कहते हैं।
4: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और जो सोच है कि अंतिम छोर का व्यक्ति और जो हमारे अंतिम छोर का जो गांव है, वाइब्रेंट विलेज के द्वारा उनकी चिंता की गई वहां के विकास के लिए, वहां के स्वरोजगार के लिए, वहां के आजीविका के लिए, तो निरंतर माननीय मोदी जी ने देश के हर विषय को छुआ है और बहुत नजदीकी से देखा और कहीं ना कहीं चाहे वो रक्षा की बात हो, चाहे सीमाओं को अच्छा करने की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे रेल लाइन की बात हो, चाहे विदेश नीति है, और आज कहीं ना कहीं हमारे देश का लोहा पूरे विश्व में जो है डंका बज रहा है, तो ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। इस 12 साल में और

0: ऐतिहासिक काम है जिनको लोग कहते हैं कि हो ही नहीं सकता।
1: उत्तरकाशी सहित उत्तराखंड के अन्य सीमांत क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज योजना विकास, आत्मनिर्भरता और समृद्धि का नया अध्याय लिख रही है। यह केवल आधारभूत सुविधाओं का विस्तार नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सपनों को नई उड़ान देने का प्रयास भी है।
2: श्रोताओं, मोदी सरकार के 12 वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है। वाइब्रेंट विलेज योजना इसी संकल्प का सशक्त उदाहरण है, जिसके माध्यम से सीमांत गांवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।
1: उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में ये गांव विकास, रोजगार और समृद्धि के नए केंद्र बनकर उभरेंगे तथा विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
2: इन्हीं शब्दों के साथ आज के विशेष कार्यक्रम मोदी सरकार के 12 साल वाइब्रेंट विलेज योजना से समृद्ध होते उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव को यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए।
1: कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति योजना संवाद। FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

0: श्रोताओ, आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, मेरी ओर से भी आपको और कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को। रमेश चंद्र जी, आज किस प्रोग्राम में हम देख रहे हैं हमारे श्रोताओं के बहुत सारे हमें पत्र मिले हैं,
0: क्यों ना कल्पना जी उन पत्रों को पढ़ने का सिलसिला आप शुरू करें।
1: जी, गांव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, आप लिखते हैं शेर, साथ अगर दोगे तो निभाएंगे जरूर, साथ अगर दोगे तो निभाएंगे जरूर, प्यार अगर दोगे तो मुस्कराएंगे जरूर, राह में कितने भी कांटे क्यों ना हो, आवाज अगर दोगे तो आएंगे जरूर। और साथ में आप लिखते हैं कि कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी ओर से नमस्कार। लिखते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, सभी स्टाफ को, सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। हम आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। 30 मई के आपका पत्र मिला कार्यक्रम को हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। 2 जून को महिला जगत कार्यक्रम में चर्चा सुनी थी, रिश्तों की डोर ना हो कमजोर, पसंद आई। और इसी कार्यक्रम में हमने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानकारी सुनी, बहुत अच्छी लगी। और अनुभव कार्यक्रम में जितेंद्र कुमार जी से रमेश चंद्रा की बातचीत सुनी, अच्छी लगी। और लिखते हैं कि हमें जानकारी बहुत अच्छी लगती है आपके केंद्र से जो प्रसारित की जाती है। और लिखते हैं कि एक बातचीत और सुनी थी डॉक्टर ऋतु गुप्ता से महिला स्वास्थ्य के बारे में, ये जानकारी लाभप्रद लगी। और इसी तरह बहुत सारे कार्यक्रम भी बहुत अच्छे लगते हैं। आकाशवाणी देहरादून को हमारी ओर से धन्यवाद।
0: लाल मोहम्मद अंसारी जी, लालू मिस्त्री अंसारी जी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी जी और आपके परिवारिक जनों ने हमें एक मैसेज लिखा और इस मैसेज की शुरुआत आपने एक शेर से की, साथ अगर दोगे तो निभाएंगे जरूर। अगर हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी की और हमारे श्रोताओं के साथ
1: जी,
0: साथ की, रिश्ते की, तो ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है
1: जी
0: के कभी न टूटने वाला रिश्ता है ये। और आपने लिखा प्यार अगर दोगे तो मुस्कराएंगे जरूर। हमारे कार्यक्रम हमारे श्रोताओं के लिए होते हैं और हमारे श्रोताओं का प्यार हमारे कार्यक्रमों को निश्चय ही मिलता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। और आपने लिखा राहों में कितने कांटे क्यों ना हो, आवाज अगर दोगे तो आएंगे जरूर। तो निश्चय ही हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम हमारे श्रोताओं के लिए होते हैं और किसी भी तरह का मौसम हो, बादल बरस रहे हों, हवाएं चल रही हों, ओले पड़ रहे हों, लेकिन आकाशवाणी हमारी श्रोताओं की सेवा में निरंतर लगी रहती है, आवाज देती रहती है उनकी समस्याओं के बारे में, उनको जागरूक करने के लिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए और अन्य तमाम सूचनाएं। तो लाल मोहम्मद अंसारी जी, आकाशवाणी और हमारे श्रोताओं का रिश्ता तो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार है और प्यारा सा है। और हम आपसे यही चाहेंगे, सभी श्रोताओं से यही चाहेंगे कि ये रिश्ता इसी तरह से बरकरार बना रहे, युगों युगों तक चलता रहे। और आपने कार्यक्रम पेश करने वालों को नमस्कार भेजा है, तो हमारी तरफ से भी आप

0: को नमस्कार।
1: जी
0: और 90 वर्ष पूर्ण होने पर आपने लिखा है कि सभी स्टाफ को और श्रोताओं को आपकी तरफ से शुभकामनाएं। तो हमारे सभी श्रोताओं को और आपको भी आकाशवाणी के 90 वर्ष जो पूर्ण हो रहे हैं उस पर शुभकामनाएं। आपने लिखा है कि 30 मई को आपने आपका मित्र मेला कार्यक्रम सुना, अनीता जी और कल्पना जी ने प्रस्तुत किया, आपको अच्छा लगा। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आपने अन्य कार्यक्रमों को लेकर भी लिखा, अनुभव कार्यक्रम की बात की आपने, सेहत कार्यक्रम की बात की और अन्य कार्यक्रम की भी आपने चर्चा की कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। बहुत से कार्यक्रम देहरादून केंद्र से आप सुनते हैं और खूबसूरत कार्यक्रम पेश करने के लिए आकाशवाणी देहरादून को आपने धन्यवाद लिखा है। तो निश्चय ही हमारे श्रोताओं की ये दरियादिली है, उनका
1: जी
0: प्यार है कि हमारे कार्यक्रम जो हमारे उद्घोषक हैं, कंपेयर्स हैं और प्रस्तुत करने वाले लोग हैं, इतनी मेहनत से करते हैं और उनको पसंद आते हैं।
1: जी
0: और हम आगे यही चाहेंगे लाल मोहम्मद अंसारी जी और सभी श्रोताओं से कि वो इसी तरह से अपना प्यार, अपना सानिध्य आकाशवाणी देहरादून के साथ बनाए रखें।
1: जी
0: आपने एक प्यारा सा मैसेज लिखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, है ना कल्पना जी?
1: जी बिल्कुल। कार्यक्रम में अगला मैसेज जो है हमारे श्रोता लिखते हैं, विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से ही, दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्य से। आप लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम सुनते हैं, अच्छे लगते हैं। और लिखते हैं कि पिछले दिनों आपके यहाँ से व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा था, लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा था और इसलिए मुझे ये कार्यक्रम AIR पौड़ी से सुनना पड़ा।
0: जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार जी और आपके जो परिवारीजन हैं, इन्होंने एक मैसेज भेजा है और हमारे लिए ये मैसेज आपका प्यार प्रदर्शित कर रहा है।
1: जी
0: और क्योंकि लगता है इससे कि आप हमारे कार्यक्रमों को कितना ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि आपने लिखा है कि व्हाट्सएप फरमाइश जो कार्यक्रम था वो देहरादून केंद्र से आप नहीं सुन पा रहे थे, तो आपने आकाशवाणी पौड़ी को
1: जी
0: ट्यून किया
1: जी
0: जो कि आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रमों को रिले करते हैं, और आपने वहाँ से सुना। हम कोशिश करेंगे कि आगे से आपको इस तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम आप आकाशवाणी देहरादून केंद्र से ही सुन पाएं, ना कि उन केंद्रों से जो आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रमों को रिले कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहना चाहेंगे, हमारा जो ट्रांसमीटर लगा हुआ है आकाशवाणी देहरादून का मसूरी में, तो
1: जी
0: कभी कभी बरसात की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, तो वो ट्रांसमीटर हमें कभी कभी बंद करना पड़ता है कुछ समय के लिए,
1: जी
0: क्योंकि लाइटनिंग होती है, बिजली कड़क रही होती है, तो उससे ट्रांसमीटर में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं।
1: जी
0: ऐप पर हमारा कार्यक्रम उस समय भी चलता रहता है, लेकिन आकाशवाणी का पौड़ी केंद्र हमारे कार्यक्रमों को जब रिले करता है तो आप वहाँ से उन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं, आनंद ले
1: जी
0: सकते हैं।
1: जी जी
0: और भाई दिनेश काले जी, हम यही चाहेंगे कि भविष्य में भी आप इसी तरह से अपना प्यार, अपना सानिध्य हमारे साथ बनाए रखें और इसी तरह से अपने मैसेज हमें भेजते रहें। अपना आपने एक मैसेज लिखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी और इसी तरह का एक मैसेज हमें लिख भेजा है आप हैं गोकुल चौक अंगजला सहरसा बिहार से, राधे कुमार विद्यार्थी, सविता, राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार और साथ में इनके परिवारजन। और ये मैसेज हमें लिखते हैं अजमेर शरीफ राजस्थान से सैयद आलम हाशमी, और साथ ही मैसेज लिखते हैं व्हाइट फील्ड बंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति, पौरुष और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। आप सभी लिखते हैं कि मोबाइल ऐप के माध्यम से हमें देहरादून AIR सुनाई नहीं दे रहा था, इस वजह से हम कार्यक्रम सुन नहीं पाए। अगर हमें बाद में पता चला कि हम AIR पौड़ी से भी कार्यक्रम सुन सकते हैं, तो हमने वहां पर आपके कार्यक्रमों को सुना।
0: राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन और आपके परिवारीजनों ने गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से हमें मैसेज लिखाया है। इसके अलावा सैयद आलम हाशमी एवं आपके परिवारीजनों ने अजमेर शरीफ राजस्थान से मैसेज लिखा है, और भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, आपने व्हाइट फील्ड बंगलुरु से हमें मैसेज लिखा है कि आपको व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी पौड़ी से सुनने पड़े। हमारे अन्य श्रोताओं ने भी इस तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं।
1: जी
0: तो थोड़ी देर पहले जैसा कि हम बता रहे थे कि मसूरी में ट्रांसमीटर होने के कारण मसूरी काफ़ी ऊँचे स्थान पर है,
1: जी
0: तो ट्रांसमीटर भी काफ़ी ऊंचाई पर लगा हुआ है, तो जब बिजली कड़कती है तो
1: जी
0: कभी कभी उस ट्रांसमीटर को बंद कर दिया जाता है। और कभी कभी होता क्या है कि वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं बिजली कड़कने की वजह से। तो जब आकाशवाणी का पौड़ी केंद्र हमारे कार्यक्रमों को रिले कर रहा होता है तो वहां से हमारे श्रोताओं को कार्यक्रम सुनने पड़ते हैं, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे श्रोताओं को इस तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। और आप इतने मन लगा के इतने प्यार से हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, क्योंकि जब आकाशवाणी देहरादून से नहीं सुन पा रहे होते हैं, आप आकाशवाणी पौड़ी से सुनते हैं कार्यक्रमों को, तो निश्चय ही ये आपका प्यार आकाशवाणी देहरादून के प्रति प्रदर्शित करती हैं ये चीजें। और हम यही चाहेंगे अपने सभी श्रोताओं से किसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें।
1: ये अगला पत्र हमारे श्रोता लिखते हैं, गांव खंडिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर से अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश। आप लिखते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा नमस्कार। साथ ही लिखते हैं सभी प्रोग्राम आकाशवाणी देहरादून की सभी बहुत अच्छे लगते हैं।
0: अमरजीत, शिवम, सुखलाल जी और आपके जो परिवारी जन हैं, ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर से आपने लिखा है कि कार्यक्रम पेश करने वालों को नमस्कार, तो हमारी ओर से भी आपको नमस्कार। और आपने लिखा है कि सभी कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून के अच्छे लगते हैं, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन हम आगे से चाहेंगे कि आप थोड़ा विस्तार से पत्र लिखें और अन्य कार्यक्रमों के बारे में बताएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। दे रहे हैं, क्यों ना आप कार्यक्रम के समापन में हमारे श्रोताओं को पत्र और मैसेज भेजने का पता बता दीजिए।
1: उनका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून और पिन है 248001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज लिख सकते हैं। कार्यक्रम आपका पत्र मिला में व्हाट्सएप नंबर 7088000731 है।
0: और हमारे सभी श्रोताओं को आकाशवाणी के 90 वर्ष जो पूर्ण हो रहे हैं 8 जून को, उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी, इसी के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करने की कल्पना पंकज
0: और रमेश चंद्रा को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र मिला, यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सरकार के 12 साल।
3: This is Akashvani. In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants are Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator is Sonu Sood. Ye Akashvani hai. Prastut hai Vishesh Shrinkla. इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक। इसमें भाग ले रही हैं प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
4: In the 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has consistently said women empowerment is one of the key priorities of this government, and the government's dream of upgrading women's development to women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government, be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life. The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. हम आपसे जो आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है पिछले 12 वर्षों में एनडीए सरकार के इस कार्यकाल में, उसके ऊपर हम आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी, उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए। सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
5: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता, मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ। और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति। उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता। और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 है
4: जी।
5: उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है, जो दिखाई

0: देती है, मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके। और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थी, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया। और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
1: जी,
0: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी। तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61% लेटेस्ट डाटा इज इट्स मोर देन 61% वुमेन। सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी जनधन खातों की सफलता, लेकिन वो वही नहीं रुके, क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाए वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे। लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 3 करोड़ की पहले बात की थी लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं। मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया। देखिए पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे
1: जी।
0: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। और वो महिला बन जाए
1: जी।
0: तो लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है। और ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है। हुनर हाट की बात उन्होंने की है, और मुद्रा योजना, जो पीएम मुद्रा योजना है, उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी है। और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लड़की से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है, ये प्रारंभ है लखपति योजना। नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है। और इनमें जो आंकड़े हैं विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही है उन एमएसएमई को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे, लगभग वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही। और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी, क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं। हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर ऑल वर्क्स। तो वो काम भी हुए
1: जी,
0: जी। और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है। और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है और विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जेंडर बजटिंग तो चल ही रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है। शी मार्ट्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही मुश्किल था। महिला उद्यमी है इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना सामान लेकर कहाँ जाएं, तो शी मार्ट्स का कंसेप्ट लाए हैं। और अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं तो आप देखें कि महिलाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के, आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग खुले हैं। और हम ये मानते हैं वन हु कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। तो ये सशक्तिकरण मात्र
2: फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एंटरप्रेन्योरियल इंक्लूजन इन विच विमेन हैव बीन मेजर बेनिफिशियरीज एंड इंडिया लीडिंग इन इंक्रीजिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज 3 करोड़ प्लस विमेन लेड MSMEs are contributing to the country's progress and 45% of DPIIT recognized startups have female directors. How do you see this inclusion of women in a big way in the economic mainstream of the country?
1: See, I think what you just described is the result of policy framework and policy intent of the government under Prime Minister Narendra Modi, who has clearly said that women are one of the four pillars of Viksit Bharat. If the country has to attain the developed country status by 2047, it is imperative that women are given conditions and, you know, where women are handheld to achieve their true potential. So what we are seeing today is that driven by several life cycle based approaches through the policy framework of the government, we have schemes now that have targeted interventions through sectors like health, education, housing, there's digital access, sanitation, then you have financial inclusion. What I'm basically trying to say is women are today in a position through the policy framework to lead self-help groups, launch businesses. You know, they're breaking barriers in science, defense, and sports. We just saw JEE Advanced results come in and how women were leading over, you know, the girls were leading over boys in several of the top positions. So in STEM disciplines, Indian women are leading, not just in India, but across the world also. Right now, as we speak, fresh data has suggested that women and children, you know, they comprise 67.7% of India's population, the data that has come in just before the beginning of the new census. So empowering them is not just a requirement anymore. It is a strategic imperative. Because look at the percentage of women and children in the country, literally 70% right now. So that is the basis of the landscape that is being created. What you just mentioned, that you have women leaders across segments these days. And you rightly said that, you know, you have women in startup leadership roles, you have women across mudra loans, you have around 70% mudra loans that have gone to only women. So the gaps that existed in the policy framework to enable women to achieve their financial potential have now been filled through several schemes. And what we also need to remember, Sonu, is that for generations, Indian women have faced systemic barriers. You know, they've been limited access to education and healthcare, to employment, as well as decision making, especially if you look at the rural heartland of the country. But now what you see is you see a massive movement of around 90 lakh self-help groups. This is basically a rural economic phenomenon. And 10 crore women are already associated with these self-help groups. This is the backbone of the Lakhpati Didi program that the government is mentioning and is powering like never before. And they have also enhanced the targets under the scheme. I think the plan is now to have 6 crore, if I'm correct, women attain the Lakhpati Didi status. The idea is basically to help women make 1 lakh rupees annually as income through various programs that go on under the self-help group movement of the government of India. So there is focused intention to help women reach where they belong. And the larger point that we have to make is that women are now no longer seen as passive beneficiaries of government schemes. They are seen as empowered agents of change, you know, central to the growth story of the country. And if you look at the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, you will realize that the government has put in its policy intent also to ensure political empowerment of women, which is the ultimate empowerment.
2: You were saying, you know, that women are not just passive beneficiaries. Bank sakhis, krishi sakhis, pashu sakhis. These concepts, you know, really embody what you're saying, that empowerment of women by women.
1: Yeah, absolutely. You see, for a very long time, what had happened is, like, I think Sushma ji was mentioning very rightly, she was saying that it's never been that there has been lack of potential on the side of Indian women. You know, women in our country have a profound legacy of strength. Throughout centuries, if you look, they've led empires, they've driven social reforms. You know, they've even fought on the front against the colonial British rule. I mean, we have Rani Lakshmibai as an example, Rani Chennamma, Ahilya Bai Holkar. Among freedom fighters, we have Lakshmi Sehgal, Sarojini Naidu. So there are n number of examples of women enterprise in our country through different sectors and through different segments. What had happened is suddenly after independence, there was lack of policy intent to see women as drivers of change. So, you know, you were not looking at women as a segment that can drive the economy of the country. Now that entire policy focus has shifted. And like you said, that women have been brought into the financial mainstream of the country. And the first big step that helped lay down the landscape for that was the Jan Dhan accounts. Now, this sounds very simple. It sounds very mundane, but it's a very, very big, very consequential reform. Under the Jan Dhan accounts, the bank accounts that were opened, zero balance accounts, majority of the accounts are owned by women. I think, if not majority, at least 40% of these accounts are with women. And around 58 to 60 crore accounts have been opened in the country. So once you have the banking system in place, you have linked women beneficiaries through Aadhaar to these bank accounts. So all the benefits of government schemes, if a woman has been given Mudra loan, that's going into her bank account. There are several schemes of the government running on the health side. For instance, you know, there is Surakshit Matritva Yojana is there. Then there's Sukanya Smriddhi Yojana, which are basically meant to help, you know, improve the sex ratio in the country. So you're basically encouraging families to have girl children. So everything is going into their bank accounts. Through the Jam Trinity, which is the Jan Dhan account, Aadhaar and mobile, you are actually empowering women to become participants in the financial scheme of the country. And the sakhis that you mentioned, bank sakhis, you know, pashu sakhis, these are women within the self-help groups who are more trained than their peers. And then they help the peers understand what a particular government scheme is like. Because you see, what is the problem? The problem is lack of awareness. The problem is nothing else that you connect the women who have to benefit from government schemes to the government system. And you decode and demystify all the complex rules of the financial inclusion schemes. So that's where the sakhis fit in. And you have sakhis in different sectors, like you said, Pashu sakhis in the agricultural sector. So these women are helping peers, their other women colleagues, understand what are the benefits available and avail them. Yeah, so,
2: Sushma ji, Aditi ji ne life cycle targeted schemes ki baat kari, aur jo daughters hai, unke education, unke birth se hi unke liye aage ki unki jo future hai usko secure karna. Agar hum PM Sukanya Samriddhi Yojana ki baat kare, jiska zikr Aditi kar rahi thi, to usme jis tarah ka vikas hua hai, agar hum dekhe to financial year 2014-15 mein 4.2 lakh accounts the, aur financial year 2024-25 में ये संख्या बढ़कर 4 करोड़ 53 लाख अकाउंट हो गई है. टोटल डिपॉजिट्स 0.001 लाख करोड़ थे FY15 में, जो बढ़कर 3.33 लाख करोड़ रुपीस हो गए हैं FY25 में. सो ये फिगर्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो बात करी जाती है, उसको एक बहुत ही ऑन द ग्राउंड भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह की स्केलिंग हो रही है, ये आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है?
0: बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आदित्य जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लाइफ साइकिल अप्रोच हमको चाहिए थी, ये वही है. और आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय महिलाओं का लिंगानुपात, द जेंडर रेशियो वुमेन वाज प्रिकेरियस, इट हैड गोन डाउन टू बिलो 900, which has now, of course, become 929. And Beti Bachao, Beti Padhao was a product of that, or was because of that. Aur usse ye labh hua, ye linganupat to badha hi badha. Aap dekhenge ki mahila namankan shiksha ke kshetra mein, chahe vah schooli shiksha ho, चाहे वह उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा में भी महिला नामांकन 9.86 लाख से 34 लाख हो गया है, विच इज ए ह्यूज जंप. और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप जेईई देख लीजिए, आप सीबीएसई देख लीजिए, आप नीट देख लीजिए, आप बीए एमए पीएचडी यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड वुमेन आउट नंबरिंग मेन in almost all achievements. They've yet to outnumber them in total enrollment, but they're outnumbering in success. And the STEM special, which is a special effort from the government, that we don't limit them to arts and humanities, science, technology, engineering, mathematics, management, and women in boards, they have to be there. And for digital empowerment of women, which I think is will empower them much more in the given times, वहाँ भी सरकार ने प्रयास किया है कि digital marketing, cyber security और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए, कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए. और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है, उसके लिए भी
2: बिल्कुल.
0: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं, जहां से आरंभ किया जा रहा है. प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके हैं एलपीजी कनेक्शन, फिर जनौषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर वुमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ। फिर मातृवंदना योजना, जो पीएम मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़ वुमेन वर एक्सेस्ट। और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत, जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर।
2: For the universal immunization program, also a lot of efforts have been made, as you are referring, till March 2026.
0: Yes.
2: More

0: than 11.87 crore children and 3.96 crore pregnant women were registered, and 8.73 crore women were screened for cervical cancer. एक और जो आपने बात करी मातृत्व सपोर्ट दी जा रही है जी, सो मैटर्नल मोर्टैलिटी रेट्स बहुत नीचे आए हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट्स नीचे आए हैं, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 68% से बढ़कर 90% से अधिक हो गई है जी, 98 बिल्कुल 98%. तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
1: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है
0: जी,
1: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं
0: जी जी.
1: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी, फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%. सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से. सो ODF फ्री इंडिया, देन जो मातृ मृत्यु दर मोर्टैलिटी एज यू सेड which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
0: Yes.
1: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 36 weeks, 26 weeks. And I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together, which will surely lead to healthier generations in coming times.
0: And also when women are healthier and when, you know, they are freed from duties like fetching water from miles, you know, due to the Jal Jeevan Mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
1: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future. Yes. You can see the women have dreams about their children now, and especially the daughters. I have come across as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up. Aur Modi ji jo baar baar kehte hain, स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र के जन्मदाता है, और स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है. दिस इज द लिंकेज बिटवीन वुमेन्स हेल्थ एंड द एम्पावर्ड और विकसित भारत, एज वी से आत्मनिर्भर भारत भी उसी में मिला हुआ है.
0: एब्सोल्युटली आदित्य जी, कमिंग टू यू, अगर हम सेफ्टी की बात करें, एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, तो जो मिशन शक्ति एक मिशन वो रहा है मुहिम सरकार का, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव्स वो लाए हैं जिससे कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जिसमें अभी जो लेटेस्ट है शी बॉक्स पोर्टल, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स का वर्क प्लेस पे, उनको रजिस्टर करने का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि इसका विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है, ये सेफ्टी नेट का वुमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
2: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का जो इशू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं. जैसे हमें याद आता है RG कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ, ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया. निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए, लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं, और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है. और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए. मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती. हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का, जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है. जैसे हमने सदियों से देखा, जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया. मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए. सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी. एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे

0: प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है। समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है। और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स। जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा। इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो। पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में
1: जी
0: समाज का रोल आ
1: जी
0: जाता है।
1: बिल्कुल ही पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है। और जो भी व्यवस्था है, 15,000+ विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशंस हैं इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700+ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए है। लेकिन इन सब का भी इस्तेमाल, ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आए और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो। सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी।
0: बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती हैं, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती हैं, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है, तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सोनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए, जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है, बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था। आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है।
1: जी
0: अब
1: जी
0: अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड
1: बिल्कुल
0: होगी, और ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है, ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। सो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि
1: जी
0: महिलाओं के
1: बिल्कुल
0: साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है, और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
1: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई हैं, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक विमेन लेड एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड हैं और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन विमेन लेड एंटरप्राइजेस को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी।
2: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है, विच इज इजिएस्ट फॉर वुमेन स्पेशली, इफ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू कैन स्टिल एक्सेस मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, नथिंग बेटर देन दैट, दैट इज ऑलमोस्ट बेस्ट। बिकॉज अपने आप में मूवमेंट या आवागमन जिसको कहते हैं, वो महिलाओं का समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है, और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है. इसलिए डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग, ये टारगेट रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं. मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए. क्योंकि सरकार का उद्देश्य था, मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे. देयर कांट बी अ बेटर रेसिपी, बिकॉज इफ यू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट विच वीमेन नीड यूजुअली, एंड मे बी आफ्टर सम टाइम दे डोंट इवन नीड, दे मे हैव देयर ओन ग्रुप्स, दे मे हैव देयर ओन फाइनेंसर्स ऑल्सो, like they are coming up now, but with that you also need later skills because skills keep changing and the market needs different kinds of skills. At times they may be digital skills in coming time, and you see women are really very good at that because this is heart and hand both going together, and then if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques also I would say or fields, then they are ready for the world. और ये सरकार चाहती है विमेन लेड डेवलपमेंट कब होगा, वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो है ही, वो राजनीतिक सोच भी है जहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है. 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%, और यही 33% जब पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी. और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार हो.
1: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का, और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम तीनों महिलाएं हैं, 65% से अधिक है, जो पुरुषों से कुछ ऊपर है. और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं, जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका. एंड ये पाया गया है कि जब से विमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है. सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी.
2: बिल्कुल, आई विल से दैट, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज. I can say women administrators, women representatives, first timer maybe administration में तो first timer सभी होते हैं, so it really doesn't matter. They learn, and I've met administrators who say that we questioned our office when they say this can't be done. तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है? Why are we here? तो लिखे कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी? आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई उन तक पहुंचे. और जो महिला प्रशासक हैं, विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली इन ऑफ यंग वंस, दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा. और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी.
1: अदिति जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
0: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं. तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है. अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है. वो इसलिए संभव हुआ है सोनू, क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड एक्सपेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए, वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है। इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप

0: तैयार करते करते। तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा, जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा।
1: So as India moves towards the goal of Viksit Bharat by 2047, the role of women is increasingly becoming central to this journey. Across sectors, women are contributing as workers, entrepreneurs, farmers, innovators, and leaders. Sushma ji, Aditi ji, thank you so much for this insightful and inspiring discussion.
0: Thank you.
2: In this special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhla ke antargat abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12
3: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
5: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ए देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
4: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
6: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
4: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारको दुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारको दुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक

0: और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपुटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिक

0: साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता की एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नाम अंकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थी। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दे बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक, रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आज़ादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आज़ादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
0: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियां और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसे ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि

0: उतना ही वहां वहां होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो थोड़ी इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं दिल्ली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोबल टाइम्स विशेषकर उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहां मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहां दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवार संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी। तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीजों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ। ये बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
0: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी सची रानी गुड्डू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वाइट पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात होगी, बातचीत। यंग था वो मेरी जैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में सुनकर, तुम क्या करते हो? मैंने कहा लिखते कर। उसने कहा यार तुम लिख हमारे यहाँ दिखाओ, तुम क्या कहानी लिख, तो मैं देखूँ तुम्हारी कहानी। तो मैं डर के मारे मैंने कहा लिया, तो बड़ा बड़ा मैगजीन है, कौन छापेगा क्या करेगा। तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने दी, उसने कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बात पूछते। तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा कर देता हूँ। मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम आपके पत्र का हमें हमारे पाठकों के जिससे ऊपर किए हैं, तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गया और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था। तो फिर मुझे वहां से लेटर आया, मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा, पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अभी फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर मैं मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला। तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वानी लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी ये छापेंगे नहीं। जाते हुए बोले मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूं, लेकिन तुम जो है ना और कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है?
0: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती है। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं, क्योंकि आप अपने लेखन से आप उस चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है कुछ के साथ नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है ये आपको देख। तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं, तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को इसी को लेकर लिखना चाहते हैं, तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो

0: में या मेरी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
0: देखिए, कारण वही है, जब मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से, चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है, आपने सहा है तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली। तो मतलब एक लेखक के रूप और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखते हैं, औरों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका वही यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
0: ऐसा कुछ नहीं है, होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, वो नहीं चल सक रहा है, उसको चलने मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
0: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है उन्होंने ले लिए है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नैरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहते, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मकता जो लिखना है उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपनी चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। जी, इसका महत्व यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है। हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश।

0: साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
1: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर,
2: सर आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
1: सर, रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
2: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के। उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे। जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने
1: जी,
2: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
1: शब्द चित्र
2: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए, और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
1: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम्य भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
2: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है
1: जी।
2: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र
1: जी,
2: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो आकाशवाणी ने किया है
1: जी।
2: और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया
1: जी,
2: इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोरदा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है
1: जी, जी।
2: तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से
1: जी। अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
2: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात्य वर्ग की पहचान तो था ही
1: जी।
2: आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था, और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
1: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।

0: चिलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है, जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे ये साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदा जी बेहरा जी के माध्यम से कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया। उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है। लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया, और वो सब के सब आज चाहे वो शुभा मुद्गल हो, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हो, चाहे छन्नू मिश्रा जी हो, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूं, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊं। तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए, और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
2: सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी, सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन, वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसे ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने, काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया, मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया, नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी, नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवो

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनते हैं ऋषिकेश गांगुड़े जी का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुड़े।
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुड़े से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉक्टर विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने ITC संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सान्निध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: बॉर्न इन टू अ म्यूजिक लविंग फैमिली इन पुणे, ऋषिकेश वॉज इनिशिएटेड इन टू वोकल म्यूजिक एट द टेंडर एज ऑफ 5 बाय हिज फादर श्री पुरुषोत्तम गांगुड़े। He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy Scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
0: ऋषिकेश गांगुड़े आकाशवाणी के ए श्रेणी के गायक कलाकार हैं। उनकी गायकी में संगीत का सौंदर्य, भव्यता और माधुर्य झलकता है जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है और यही उनके गायकी की विशेषता है। गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
1: ऋषिकेश गांगुड़े इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडिली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट who tries to give expression to the beauty, grandeur and sweetness of music so as to touch the human heart, and this is the hallmark of his singing. Beyond his vocal prowess, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru Pandit Ullas Kashalkar in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapit Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुड़े जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना 3 ताल में निबद्ध है। बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे 3 ताल में ही 2 द्रुत बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री मकरंद खरवंडीकर। ऋषिकेश बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग बिहागड़ा। द विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू 3 ताल। दिस विल बी फॉलोड बाय द्रुत कॉम्पोजिशन इन 3 ताल।

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: दैट वॉज राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: दैट वॉज राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुलडे जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

0: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि

0: और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षो में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palm olein, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Suvendu Adhikari at Nabarna in Kolkata, Mr. Vaishnaw said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in the railway project for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit Bharat trains are currently in operation.
4: 60 new generation trains we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chengrighatta area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata.
3: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi this evening, Dr. Jaishankar said India and Nepal share a very special relationship. The External Affairs Minister said the bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development, cooperation, education, disaster response and culture. Mr. Khanal said India is Nepal's most important partner and Nepal has placed highest priority to India. He said Nepal and India are not merely two countries but stakeholders of a proud ancient civilization. He thanked India for fuel and fertilizer supply amid the West Asia crisis. Tensions across West Asia escalated sharply on Saturday after Iran launched ballistic missiles toward United States military facilities in Kuwait and Bahrain, prompting a coordinated air defense response by Gulf states and American forces. According to the U.S. Central Command, Iran fired 7 ballistic missiles following U.S. strikes on Iranian coastal surveillance and radar installations at Keshm Island and Goruk near the Strait of Hormuz. Initial assessments indicated that 6 missiles were intercepted while a 7th failed to reach its target. There were no immediate reports of casualties among U.S. personnel. In tennis, Russian eight-seeded Mira Andreeva won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maya Szwalanski of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. And that is the end of this news bulletin.
5: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी